0: रेडियो मॉरिशस
1: 800 किलोहर्ट्ज़ पर ये है रेडियो मॉरिशस।
0: रेडियो मॉरिशस,
1: रेडियो मॉरिशस,
2: वेलकम फ्रेंड्स टू द शो दैट नेवर एंड्स। आई हैव टेकन द चांस टू मेक यू डांस। यू विल मूव योर फीट एंड ग्रूव टू द बीट। सो देन व्हिच बीट वुड यू लाइक? दोस्तों कौन सा डांस पसंद करेंगे आप? Rumba?
3: No!
4: No!
2: Samba?
3: No!
4: No!
2: Rumba?
4: No!
2: Samba?
4: No!
2: Tequila?
4: No!
2: Tango?
4: No!
2: Charleston?
4: No!
2: Polka?
4: No!
2: No?
4: No!
2: To phir kya ho? One!
4: Round!

0: घड़ी मिला लीजिए, इस वक्त सुबह के ठीक 5 बजे हैं।
1: आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग MVC रेडियो

प्रभात आराधना हर सुबह 5 से 6 बजे तक भक्ति के मधुर सुरों में कीजिए ईश्वर की आराधना रेडियो मॉरिशस पर।

ईश्वर की आराधना के इन मधुर सुरों के साथ प्रभात आराधना का ये सफर यही समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे सुबह 5 बजे भक्ति के नए गीतों के साथ रेडियो मॉरिशस पर।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस।
1: संक्षिप्त समाचार सुनते हैं आपसे आदिति, नमस्कार आपको।
2: नमस्कार नीतूषा, श्रोताओं को भी नमस्कार। तटीय क्षेत्रों को इरोजन, प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन से बेहतर तरीके से किस प्रकार से बचाया जा सके, इस मुद्दे पर शनिवार को फ्लिकॉन्फ्लॉक में आयोजित सहभागी कार्यक्रम के दौरान विचार किया गया। शीर्षक रहा नुलाकुत नुलालवा, आम जनता, विशेषज्ञ और अधिकारीगण ब्लैक रिवर जिले के लिए एक पहली एकीकृत तटीय क्षेत्र प्रबंधन कार्य योजना के विकास में योगदान के लिए एकत्रित हुए। इसके अंतर्गत नागरिक परामर्श हुए, तटीय क्षेत्रों से जुड़ी चुनौतियों को लेकर जागरूकता बढ़ाया गया तथा समंदर तटों, प्रवाह रेखाओं, नदियों और तटीय समुदायों के बेहतर संरक्षण के लिए सुझाव एकत्रित किए गए। ये पहल हिंद महासागरीय आयोग की रेकोस नामक इलाकाई परियोजना का हिस्सा है, जिसका मकसद है इलाकाई देशों में तटीय इकोसिस्टम मजबूत करना। बीच अथॉरिटी का कहना है कि मॉरिशस के सार्वजनिक समंदर तटों पर हर हफ्ते 350 से 400 टन कूड़ा इकट्ठा किया जाता है। ब्लैक रिवर इलाके के लिए चलाई जा रही संरक्षण कार्य योजना को अगले अगस्त महीने तक अंतिम रूप दे दिया जाएगा और इसके बाद उसे संबद्ध अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। परियोजनाओं के सलाहकार और इंडियन ओशन आइलैंड्स फाउंडेशन के संस्थापक थियरी ले बॉयटन कहते हैं कि यह अभियान देश के कई अन्य क्षेत्रों तक भी बढ़ाया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में, म्यांमार के एक गांव में कल पेश आए एक भयानक धमाके में कम से कम 55 लोगों की मौत हुई है और दर्जनों अन्य घायल बताए गए। ये गांव चीन की सीमा से सटा एक विवादास्पद इलाका है। मरने वालों में 25 महिलाएं और 30 पुरुष शामिल हैं, जो ज़्यादातर खानों में काम करने वाले कर्मचारी हैं। आखिर में स्थानीय मौसम का हाल। आम हालत, हमारे इलाके पर हल्की हवाएं चल रही हैं, पूर्व से आ रहे कुछ बादल आज सुबह स्थानीय मौसम को प्रभावित करेंगे। अगले 24 घंटों के लिए अनुमान, आज सुबह बादल घिरे रह सकते हैं, पूर्वी और सेंट्रल प्लेटू वाले इलाकों पर रह रहकर बारिश होगी। आमतौर पर दिन के दौरान मौसम सुहाना रहेगा, रात के दौरान पूर्व से आ रहे बादल पूर्वी और सेंट्रल प्लेटू वाले इलाकों को प्रभावित करेंगे और बारिश होगी। हवा पूर्व उत्तर पूर्व की तरफ से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। प्रवाह रेखा के परे समंदर चंचल रहेगा, दक्षिण पश्चिमी समंदर में 2 मीटर तक की लहरें उठेंगी। तापमान सेंट्रल प्लेटू पर न्यूनतम 16 से 18, अधिकतम 23 से 26 डिग्री सेल्सियस, साहिल इलाकों पर न्यूनतम 20 से 22, अधिकतम 28 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। सुबह 6:38 पर सूर्योदय, शाम को 5:37 पर सूर्यास्त होगा। ये थी अब तक की खबरें, हम आपसे मुलाकात करेंगे 6:30 बजे मुख्य समाचार।

0: सुबह के 6:04 हुए हैं। नमस्कार श्रोताओं, MBC रेडियो पर आप सबका स्वागत है। आप लोग जुड़े हुए हैं रेडियो मॉरिशस के साथ। आज 1 जून है और सोमवार का दिन है 2026 और आप सुन रहे हैं सुबह का नजराना प्रोग्राम। और इस प्रोग्राम में साथ देने के लिए मैं उषा कौर यहाँ पर हर सोमवार की तरह। श्रोताओं, जब सुबह की पहली किरण जमीन पर पड़ती है तो वो हमें ये पैगाम देती है कि चाहे रात कितनी भी अंधेरी क्यों ना हो, रोशनी अपना रास्ता जरूर बना लेती है। ठीक इसी तरह जिंदगी में उम्मीद कभी मत छोड़िए, क्योंकि हर मुश्किल के बाद आसानी जरूर आती है। तो चलिए इस कार्यक्रम को हम शुरू करते हैं और सुनते हैं जागृति।
1: आइए सुनिए मॉरिशस आर्य रविवेद प्रचारिणी सभा द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम जागृति।
2: ओम यस्य सूर्यश्चक्षुश्चन्द्रमाश्च पुनरनवः अग्निं यश्चक्र आस्यं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। ओम शम। प्रिय श्रोतागण, इस शुभ प्रभात बेला में सत्यार्थ प्रकाश मास के उपलक्ष्य में इस जागृति कार्यक्रम में सभी आदरणीय श्रोताओं को पंडिता पुष्पलता कलुआ का सादर अभिवादन है। यह कार्यक्रम मॉरिशस आर्य रविवेद प्रचारिणी सभा के तत्वावधान में प्रस्तुत किया जा रहा है। आज का विषय है सत्यार्थ प्रकाश, वैदिक सत्य का आलोक। प्रिय श्रोतागण, भारतीय संस्कृति, दर्शन और अध्यात्म की विशाल परंपरा में अनेक ग्रंथ ऐसे हैं जिन्होंने मानव जीवन को दिशा देने का कार्य किया है। इन ग्रंथों में सत्यार्थ प्रकाश का स्थान अत्यंत विशिष्ट और महत्वपूर्ण है। यह केवल एक धार्मिक पुस्तक नहीं, बल्कि सत्य की खोज, तर्कशीलता, वैदिक पुनर्जागरण और सामाजिक सुधार का एक प्रखर घोष है। इसके रचयिता स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने अपने समय की विकृतियों को देखकर एक ऐसा ग्रंथ प्रस्तुत किया जो अज्ञान के अंधकार को दूर कर विवेक का दीप जलाता है। यह निबंध सत्यार्थ प्रकाश के स्वरूप, रचनाकाल, समुलासों की संरचना, दार्शनिक आधार, सामाजिक उपयोगिता, आधुनिक प्रासंगिकता और भविष्य में इसके महत्व का गहन विवेचन प्रस्तुत करता है। सत्यार्थ प्रकाश नाम अपने आप में एक संपूर्ण दर्शन समेटे हुए है। सत्यार्थ अर्थात सत्य का अर्थ या वास्तविकता, और प्रकाश अर्थात उसका उज्ज्वल उद्घाटन। यह ग्रंथ मनुष्य को यह सिखाता है कि सत्य को केवल मान लेना पर्याप्त नहीं, बल्कि उसे समझना, परखना और जीवन में उतारना आवश्यक है। प्रिय श्रोतागण, भारतीय परंपरा में सत्य को परम मूल्य माना गया है। सत्यमेव जयते केवल एक वाक्य नहीं, बल्कि जीवन का मूल सिद्धांत है। किंतु समय के साथ अनेक अंधविश्वास, कुरीतियाँ और अवैज्ञानिक धारणाएं समाज में फैल गई। ऐसे समय में सत्यार्थ प्रकाश ने यह स्पष्ट किया कि वास्तविक धर्म वह है जो तर्क, अनुभव और वेदों के अनुकूल हो। 19वीं शताब्दी का भारत सामाजिक और धार्मिक दृष्टि से अत्यंत जटिल स्थिति में था। एक ओर विदेशी शासन

का दबाव था तो दूसरी ओर समाज में व्याप्त अज्ञान, मूर्ति पूजा की विकृतियां, जातिगत भेदभाव, स्त्री अशिक्षा और उनके कुरीतियां समाज को कमजोर कर रही थी। ऐसे समय में स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने वेदों की ओर लौटने का आह्वान किया। उन्होंने यह प्रतिपादित किया कि वेद ही सच्चे ज्ञान का स्रोत है और समाज को उन्हीं के आधार पर पुनर्गठित किया जाना चाहिए। इसी उद्देश्य से उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश की रचना की। इस ग्रंथ का प्रारंभिक रूप पहले प्रकाशित हुआ, बाद में इसे संशोधित और विस्तारित किया गया। इसमें उनके विचारों की परिपक्वता और गहराई स्पष्ट दिखाई देती है। सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ को अध्यायों में विभाजित किया गया है, जिन्हें समुल्लास कहा जाता है। समुल्लास शब्द का अर्थ है आनंद पूर्वक प्रकाशित होने वाला ज्ञान। प्रत्येक समुल्लास किसी विशेष विषय पर प्रकाश डालता है। प्रारंभिक समुल्लासों में ईश्वर, वेद शिक्षा, जीवन के चार आश्रम, ब्रह्मचर्य और नैतिकता का वर्णन है। ये मनुष्य के व्यक्तिगत और आध्यात्मिक विकास के लिए मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। मध्य भाग में सामाजिक व्यवस्था, स्त्री पुरुष समानता, शिक्षा, विवाह, शासन व्यवस्था आदि का विवेचन है। यह समाज को सुधारने और व्यवस्थित करने का प्रयास दिखाई देता है। अंतिम समुल्लासों में विभिन्न मत मतांतरों की समीक्षा की गई है। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने बिना किसी पक्षपात के भी विभिन्न धर्मों और पंथों का विश्लेषण किया और सत्य की कसौटी पर उन्हें परखा। सत्यार्थ प्रकाश का मूल आधार वेद है। स्वामी दयानंद का विश्वास था कि वेद अपौरुषेय है और उनमें संपूर्ण ज्ञान निहित है। उन्होंने यह स्पष्ट किया कि वेद केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं बल्कि विज्ञान, नैतिकता और समाज व्यवस्था के भी आधार हैं। उन्होंने ईश्वर को निराकार, सर्वव्यापक, सर्वज्ञ और न्यायकारी बताया। यह ईश्वर किसी विशेष रूप या मूर्ति में सीमित नहीं है बल्कि संपूर्ण सृष्टि में व्याप्त है। प्रिय श्रोतागण, यह विचार महत्वपूर्ण है कि ईश्वर की उपासना केवल बाहरी आडंबर से नहीं बल्कि ज्ञान, ध्यान और सत्याचरण से होती है। यदि मनुष्य का आचरण शुद्ध नहीं है तो उसका धर्म भी अधूरा है। सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें तर्क और श्रद्धा का अद्भुत समन्वय है। स्वामी दयानंद जी ने अंधविश्वास का विरोध करते हुए यह कहा कि किसी भी बात को बिना समझे स्वीकार करना उचित नहीं है। उदाहरण के रूप में, यदि कोई व्यक्ति केवल परंपरा के नाम पर किसी कुरीति का पालन करता है तो वह धर्म नहीं बल्कि अज्ञान है। धर्म वही है जो मानवता, न्याय और सत्य के अनुकूल हो। यह दृष्टिकोण आधुनिक वैज्ञानिक सोच के अत्यंत निकट है, जहाँ हर बात को प्रमाण और तर्क के आधार पर परखा जाता है। सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ का एक महत्वपूर्ण पक्ष इसका सामाजिक सुधार का दृष्टिकोण है। स्वामी दयानंद जी ने अनेक कुरीतियों का विरोध किया और समाज को एक नई दिशा देने का प्रयास किया। उन्होंने स्त्री शिक्षा का समर्थन किया और कहा कि समाज की उन्नति तभी संभव है जब स्त्रियां शिक्षित और सशक्त हों। उन्होंने बाल विवाह और सती प्रथा जैसे कुरीतियों का विरोध किया। जाति व्यवस्था के विषय में उन्होंने स्पष्ट किया कि मनुष्य का मूल्य जन्म से नहीं बल्कि उसके कर्म और गुणों से निर्धारित होता है। यह विचार उस समय के लिए अत्यंत क्रांतिकारी था। सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ में शिक्षा को अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है।
यहाँ शिक्षा का अर्थ केवल ज्ञान

0: प्राप्त करना नहीं बल्कि चरित्र निर्माण भी है। स्वामी दयानंद जी का मानना था, यदि शिक्षा में नैतिकता का अभाव है तो वह अधूरी है। एक शिक्षित व्यक्ति वही है जो सत्य, अहिंसा, न्याय और करुणा के मार्ग पर चलता है। उदाहरण के रूप में, यदि कोई व्यक्ति उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद भी अनैतिक कार्य करता है तो उसकी शिक्षा समाज के लिए हानिकारक है। सत्यार्थ प्रकाश में विभिन्न धर्मों और पंथों की समीक्षा की गई है। स्वामी दयानंद जी ने यह कार्य किसी विरोध भावना से नहीं बल्कि सत्य की स्थापना के लिए किया। उन्होंने यह स्पष्ट किया कि किसी भी धर्म का मूल्यांकन उसके सिद्धांतों और आचरणों के आधार पर होना चाहिए। प्रिय श्रोतागण, सत्यार्थ प्रकाश का अध्ययन व्यक्ति के जीवन में अनेक सकारात्मक परिवर्तन लाता है। यह ग्रंथ मनुष्य को सोचने, समझने और सही निर्णय लेने की क्षमता प्रदान करता है। यह व्यक्ति को अंधविश्वास से मुक्त करता है और उसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाने के लिए प्रेरित करता है। इससे आत्मविश्वास, नैतिकता और कर्तव्य बोध का विकास होता है। यह ग्रंथ जीवन के प्रत्येक चरण के लिए मार्गदर्शन प्रदान करता है, जिससे व्यक्ति संतुलित और उद्देश्यपूर्ण जीवन जी सकता है। आज के युग में जहाँ तकनीकी विकास तेजी से हो रहा है, वही नैतिक और सामाजिक समस्याएं भी बढ़ रही हैं। ऐसे समय में सत्यार्थ प्रकाश की शिक्षाएं अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। यह ग्रंथ हमें यह सिखाता है कि केवल भौतिक प्रगति पर्याप्त नहीं है बल्कि नैतिक और आध्यात्मिक विकास भी आवश्यक है। यह वैज्ञानिक सोच को प्रोत्साहित करता है और साथ ही मानवीय मूल्यों को भी स्थापित करता है। यही संतुलन आधुनिक समाज के लिए आवश्यक है। यह ग्रंथ मानव को आत्मनिर्भर, विवेकशील और जिम्मेदार नागरिक बनने की प्रेरणा देता है। सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ केवल एक ग्रंथ नहीं बल्कि एक आंदोलन है। सत्य, ज्ञान और विवेक का आंदोलन है। हमें यह सिखाता है कि जीवन का उद्देश्य केवल जीना नहीं बल्कि सही तरीके से जीना है। स्वामी दयानंद सरस्वती जी का यह अमूल्य योगदान आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना उनके समय में था। यदि हम इसके सिद्धांतों को अपने जीवन में अपनाएं तो न केवल व्यक्तिगत जीवन में सुधार होगा बल्कि समाज और राष्ट्र का भी कल्याण होगा। तो प्रिय श्रोतागण, सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ एक ऐसा दीपक है जो युगों युगों तक मानवता को मार्गदर्शन देता रहेगा, सत्य की ओर, ज्ञान की ओर और एक उज्जवल भविष्य की ओर। सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ हमें वह दिव्य दृष्टि देता है जिससे हम अपने जीवन को धर्म, ज्ञान और मोक्ष के मार्ग पर अग्रसर कर सकें। तो आदरणीय श्रोतागंज, आज से सत्यार्थ प्रकाश मास शुरू हो रहा है। यह स्वामी सरस्वती दयानंद जी के वेद भाष्य का संदेश है। जब इस सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ में इतने विशेषताएं हैं तो इस सत्यार्थ प्रकाश मास के अंतर्गत क्यों न हम इस ग्रंथ का स्वाध्याय करें और जो अमूल्य रत्न इस ग्रंथ के अंदर समाहित है क्यों न हम इससे लाभ उठाएं। सत्यार्थ प्रकाश मास सभी को मंगलमय हो। इति ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद।
1: अभी आप सुन रहे थे मॉरिशस आर्य रविवेद प्रचारिणी सभा द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम जागृति।

0: चलिए, हंसते हंसते सफ़र कट जाएगा दोस्तों। और यहाँ पर सुनते हैं सत्यार प्रकाश पर विशेष कार्यक्रम। हमारी मुलाकात होगी समाचारों के बाद।
1: सत्यार्थ प्रकाश के संदर्भ में आइए सुनिए यह विशेष कार्यक्रम।

ओमिदं विष्णु विचक्रमे त्रेधा निदधे पदं समूढमस्य पां सुडे ओम शांति शांति शांति। मॉरिशस आर्य विवेक पचाने सभा की ओर से प्रस्तुत इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं को मेरा सप्रेम नमस्ते। जून महीने को सत्यात प्रकाश प्रसार मास घोषित किया गया है। 12 जून 1874 को काशी में महर्षि दयानंद जी ने सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ लिखवाना शुरू किया था। इस ग्रंथ के लिखने का मुख्य कारण सत्य अर्थ का प्रकाश करना था। इस ग्रंथ की महिमा अनेक लोगों ने मानी है, उनके अध्ययन से अनेक लोगों का जीवन बदल चुका है। ऐसे महान ग्रंथ के रचना के पीछे एक इतिहास है, एक कथा है। बात है 1874 की। स्वामी जी वेद प्रचारार्थ पूरे भारतवर्ष में जाते थे। उस समय अभी आर्य समाज की स्थापना नहीं हुई थी और न ही कोई संगठन विशेष बनाने का ऋषिवर का विचार था। उनकी मातृभाषा गुजराती थी, परंतु 1867 में हरिद्वार कुंभ के बाद स्वामी जी कई वर्षों तक मात्र संस्कृत में ही बोलते थे और प्रचार भी संस्कृत भाषा में ही करते थे। इन दो भाषाओं के अतिरिक्त वे और अन्य भाषा का प्रयोग नहीं किए। जब दिसंबर 1872 से अप्रैल 1873 तक स्वामी जी कोलकाता में रहे, तब उनको पता चला कि अन्य विद्वान लोग उनके संस्कृत भाषी होने का अनुचित लाभ उठा रहे हैं। स्वामी जी के व्याख्यान संस्कृत में होते थे। उनके व्याख्यानों का अनुवाद करने वाला कोई उनके साथ हमेशा रहता था। वे अनुवादक विद्वान स्वामी जी के व्याख्यानों का आश्रय जनता को उल्टा समझा देते थे। इस प्रकार स्वामी जी का विचार जनसाधारण तक नहीं पहुंच पाती थी। कोलकाता में ही 23 फरवरी 1873 को श्री गोराचंद दत्त जी के निवास स्थान पर स्वामी जी का प्रवचन ईश्वर और धर्म विषय पर चला। वहां महेशचंद्र न्यायरत्न ने बंगाल में अनुवाद अन्यथा ही कर दिया। संस्कृत के जानकार उस समय श्री महेशचंद्र जी ने गलत अनुवाद पर आपत्ति की। इन सब दृश्यों को देखकर श्री केशव चंद्र सेन जी ने स्वामी जी से बहुत ही विनम्र भाव से यह निवेदन किया कि जनसाधारण को जो भाषा समझ में आए स्वामी जी को उसी भाषा में व्याख्यान देनी चाहिए। सबके हित के लिए इस सुझाव पर स्वामी जी ने तुरंत अमल किया और 48 वर्ष की आयु में हिंदी बोलना सीखे। ये था सत्यार्थ प्रकाश की रचना में प्रथम प्रभाव। स्वामी जी ने जनता की भाषा हिंदी मानकर इस भाषा को अपनाया। सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ की रचना से जुड़ी हुई दूसरी घटना तब की है जब स्वामी जी प्रचार के लिए पांचवी बार के लिए काशी आए थे। उन दिनों मुरादाबाद के राजा जय कृष्णदास बहादुर वहां के डिप्टी कलेक्टर थे। वे स्वामी जी को पहले भी छलेसर में सुन चुके थे। राजा साहेब स्वामी जी के विचारों से बहुत ही प्रभावित थे। उन्होंने स्वामी जी से निवेदन किया कि उन्हें अपने विचारों को संकलित कराकर एक पुस्तक रूप देना अति लाभप्रद होगा, क्योंकि सभी लोगों को स्वामी जी की व्याख्या सुनने का सुअवसर प्राप्त नहीं होता था और उनके विचार उनके पुस्तक में चिरस्थायी हो जाएगी और भविष्य में भी इन अमूल्य विचारों से लाभ अनेक पीढ़ियां उठा पाएंगे। राजा जय कृष्णदास जी ने खुद इस ग्रंथ के लिखवाने की व्यवस्था करने और छपवाने का व्यय भार वहन करने का वचन दिया। स्वामी जी ने इस सुझाव को मानकर तुरंत ग्रंथ लिखने की स्वीकृति प्रदान कर दी।

12 जून 1874 शुक्रवार को काशी में सत्यार्थ प्रकाश लिखवाने का शुभारंभ किया। ग्रंथ लिखने के लिए महाराष्ट्र के पंडित चंद्रशेखर को चुना गया। स्वामी जी बोलते रहते थे और चंद्रशेखर जी लिखते जाते थे। इस ग्रंथ में वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद, दर्शन शास्त्र, स्मृति ग्रंथ, पुराण, सूत्र

0: के प्रमाण वाक्य आदि पाए जाते हैं। ग्रंथ लिखवाते समय स्वामी जी के पास कोई पुस्तकालय नहीं था और न ही कोई सहायक, मात्र अपने स्मृति के आधार पर लगभग 3.5 महीने में ही सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ लिखवा देना मानव मस्तिष्क का अद्भुत चमत्कार है। इस सत्यार्थ प्रकाश का प्रथम संस्करण सन 1874 में प्रकाशित हुआ। प्रथम संस्करण में 13वां एवं 14वां समुलास नहीं छपे थे। सत्यार्थ प्रकाश का संशोधित एवं परिवर्धित द्वितीय संस्करण उदयपुर में लिखा गया और 1884 में प्रकाशित हुआ। ध्यान के लिए धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति।
1: सत्यार्थ प्रकाश के संदर्भ में अभी आपने सुना यह विशेष कार्यक्रम।
2: 819 किलोहर्ट्ज ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
3: घड़ी मिलाई सुबह के ठीक 6:30 बज रहे हैं। नमस्कार, इस बुलेटिन में आपका स्वागत। शुरुआत आज की सुर्खियों के साथ। तटीय क्षेत्रों को इरोजन, प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन से बेहतर तरीके से किस प्रकार बचाया जा सके, इस मुद्दे पर शनिवार को फ्लिक ऑफ लाक में आयोजित सहभागी कार्यक्रम के दौरान विचार किया गया। 11 से 15 मई के बीच मालदीव में आयोजित इंडियन ओशन ट्यूना कमीशन की 30वीं बैठक के अंतर्गत मॉरिशस को 2027 के लिए येलोफिन ट्यूना की पकड़ के लिए निर्धारित कोटे में 500 टन की वृद्धि प्राप्त हुई है। ये मत्स्य उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है। भू राजनीतिक अनिश्चितताओं और वैश्विक सप्लाई चेन पर मंडरा रहे खतरों को ध्यान में रखते हुए हिंद महासागरीय आयोग सदस्य देशों की ऊर्जा सुरक्षा मजबूत करने के लिए नई रणनीतियों पर विचार कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर म्यांमार के एक गाँव में कल पेश आए एक भयानक धमाके में कम से कम 55 लोगों की मौत। नमस्कार, इस बुलेटिन में एक बार फिर आपका स्वागत। तटीय क्षेत्रों को इरोजन, प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन से बेहतर तरीके से किस प्रकार बचाया जा सके, इस मुद्दे पर शनिवार को फ्लिक ऑफ लाक में आयोजित सहभागी कार्यक्रम के दौरान विचार किया गया। शीर्षक रहा नूला को नूला लुआ, आम जनता, विशेषज्ञ और अधिकारीगण ब्लैक रिवर जिले के लिए इस पहली एकीकृत तटीय क्षेत्र प्रबंधन कार्य योजना के विकास में योगदान देने के लिए एकत्रित हुए। इसके अंतर्गत नागरिक परामर्श हुए, तटीय क्षेत्रों से जुड़ी चुनौतियों को लेकर जागरूकता बढ़ाया गया तथा समंदर तटों, प्रवाह रेखाओं, नदियों और तटीय समुदायों के बेहतर संरक्षण के लिए सुझाव एकत्र किए गए। ये पहल हिंद महासागरीय आयोग की रेकोस नामक इलाकाई परियोजना का हिस्सा है, जिसका मकसद है इलाकाई देशों में तटीय इकोसिस्टम मजबूत करना। शैली नियरबर्न, यशना मिश्रा।
4: प्रतिभागियों को बड़े नक्शे पर उन क्षेत्रों की पहचान करने के लिए आमंत्रित किया गया जो कटाव यानी इरोशन, प्रदूषण या फिर बुनियादी ढांचे और सार्वजनिक स्थानों की जरूरतों से प्रभावित हैं। इनमें से फ्लिक ऑफ लाक के ग्राम सलाहकार जेगा पायात को तटीय कटाव, रियल एस्टेट दबाव तथा लगून और भूजल भंडारों के प्रदूषण के जोखिमों को लेकर चिंता है। वे बताते हैं, एक ऐसी योजना तैयार करनी चाहिए जहां सभी को सुविधाएं मिले, जैसे बाथरूम, शौचालय, कैंपिंग एरिया आदि। स्कूल कॉलेज के बच्चे भी जानते हैं कि कूड़ेदान का प्रयोग करना चाहिए, लेकिन इसके लिए कूड़ेदान भी तो जगह जगह पर होने चाहिए। सप्ताह के दिन सफाई कर्मचारी भी ज्यादा होने चाहिए। कलाकार और फोटोग्राफर कॉल आनी याद दिलाते हैं कि पर्यावरण की रक्षा करना अर्थव्यवस्था की रक्षा करना भी है। हम पर्यटन क्षेत्र पर निर्भर करते हैं और पर्यटन पर्यावरण पर टिका हुआ है। यदि हमने पर्यावरण का संरक्षण नहीं किया तो हम इसके जरिए किसी को भी आकर्षित नहीं कर पाएंगे।

0: दूसरी ओर कचरा एकत्र करने में सक्रिय पत्रिक का इस सब बात पर जोर देते हैं कि कचरा लगातार जमा हो रहा है, भले ही कूड़ेदानों और उपयुक्त ढांचों की मौजूदगी है। शुक्रवार, शनिवार, रविवार के दिन कूड़े का ढेर जमा हो जाता है और ट्रक आता है तो वो भर जाता है। लोग कूड़ेदान में इसे नहीं फेंकते, बगल में ही डस्टबिन होता है, तब भी वे जहाँ पर खड़े हैं वहीं पर कूड़ा फेंक देते हैं, पर्यावरण की रक्षा ही नहीं करते। प्रकृति आधारित समाधानों को प्राथमिकता देना, जैसे कि रेत के तलों यानी ड्यून्स का पुनर्स्थापन, समुद्री घास के मैदानों और प्रवाह रेखा का संरक्षण, ये हिंद महासागर आयोग द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रमुख विकल्पों में से एक हैं। इसके संचार प्रमुख जिल रिबुए ने इस पर जोर दिया।
1: बीच अथॉरिटी का कहना है कि मॉरिशस के सार्वजनिक समंदर तटों पर हर हफ्ते 350 से 400 टन कूड़ा इकट्ठा किया जाता है। ब्लैक रिवर इलाके के लिए चलाई जा रही संरक्षण कार्य योजना को अगले अगस्त महीने तक अंतिम रूप दे दिया जाएगा और इसके बाद उसे संबद्ध अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। परियोजनाओं के सलाहकार और इंडियन ओशन आइलैंड्स फाउंडेशन के संस्थापक थियरी लेबोटों कहते हैं कि ये अभियान देश के कई अन्य क्षेत्रों तक बढ़ाया जाएगा। मॉरिशस को येलोफिन ट्यूना मछली के अतिरिक्त 500 टन का कोटा प्राप्त हुआ है। 11 से 15 मई के बीच मालदीव्स में आयोजित इंडियन ओशन ट्यूना कमीशन की 30वीं बैठक के अंतर्गत मॉरिशस को 2027 के लिए येलोफिन ट्यूना की पकड़ के लिए निर्धारित कोटे में 500 टन की वृद्धि प्राप्त हुई है। ये मत्स्य उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है, जिससे रोजगार सृजन, निर्यात, बंदरगाह गतिविधियों और ब्लू इकोनॉमी के विकास को लाभ पहुंचने की उम्मीद है। साथ ही इलाकाई स्तर पर मत्स्य गतिविधियों का संचालन करने वाली संस्थाओं के अंतर्गत मॉरिशस की स्थिति और मजबूत होगी। शबनी जुजिया, यशना मिश्रा।
0: हिंद महासागर में चूना मछलियों के लिए आयोग यानी कमीशन दे टों दे लुसियन इंडियन CTOI के 30वें सत्र में मॉरिशस के लिए कई महत्वपूर्ण परिणाम सामने आए हैं। देश को विशेष रूप से येलोफिन चूना के अपने कोटे में वृद्धि हासिल हुई है, जो 2027 में 10,490 टन से बढ़कर 10,990 टन की हो गई है, यानी 500 टन की अतिरिक्त मात्रा। यह निर्णय मॉरिशस, केन्या और तंजानिया द्वारा संयुक्त रूप से प्रस्तुत एक प्रस्ताव के बाद लिया गया और इससे मत्स्य पालन गतिविधियों, समुद्री उत्पादों के प्रसंस्करण, निर्यात, रोजगार तथा ब्लू इकोनॉमी के विकास को समर्थन मिलने की उम्मीद है। मॉरिशस ने स्किप जैक ट्यूना के आवंटन मानदंडों में संशोधन की भी वकालत की ताकि उसका कोटा 13,908 टन से बढ़ाकर 19,009 टन किया जा सके। हालांकि इस पर कोई सर्वसम्मति नहीं बन सकी है, लेकिन चर्चाओं को रचनात्मक माना गया और इस मुद्दे पर 2027 में पुनर्विचार किया जाएगा। यह पहल क्षेत्रीय मत्स्य प्रबंधन संस्थाओं में छोटे द्वीपीय विकासशील देशों के लिए अधिक न्यायसंगत व्यवहार सुनिश्चित करने के उद्देश्य से की गई है। 2025 में CTOI के उपायों के प्रति 87.3% अनुपालन दर के साथ देश ने क्षेत्रीय संगठनों में अपनी विश्वसनीयता को मजबूत किया है, अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा की है और मत्स्य क्षेत्र, खाद्य सुरक्षा तथा ब्लू इकोनॉमी के विकास संभावनाओं को और सुदृढ़ किया है।
1: भू राजनीतिक अनिश्चितताओं और वैश्विक सप्लाई चेन पर मंडरा रहे खतरों को ध्यान में रखते हुए हिंद महासागरीय आयोग सदस्य देशों की ऊर्जा सुरक्षा मजबूत करने के लिए नई रणनीतियों पर विचार कर रहा है। संभावित विकल्पों में से एक है इलाकाई द्वीपों की आवश्यकता वाले महत्वपूर्ण उत्पादों के लिए एक संयुक्त खरीद प्रणाली की स्थापना करना। साथ ही IOC रिन्यूएबल ऊर्जा की तरफ संक्रमण को गति देने के वास्ते जापानी विशेषज्ञता की मांग कर रहा है। मध्य पूर्व में तनाव और वैश्विक तेल परिवहन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हॉर्मुज जलमार्ग को लेकर चल रही चिंताओं के बीच इन विकल्पों पर विचार किया जा रहा है। पिछले शुक्रवार को कुदा और सेंटर में एक गोष्ठी का आयोजन किया गया। इसके तहत इलाकाई स्तर पर ईंधन की आपूर्ति के साधन मजबूत

0: वोट करने के मुद्दे पर चर्चा की गई। सिंचा मुतु राजमीला सीतामणि यशना मिश्रा।
1: हिंद महासागर आयोग के सदस्य देश न केवल टापू क्षेत्रों से जुड़े समान चुनौतियों का सामना करते हैं बल्कि वे फॉसिल फ्यूल पर भी निर्भर हैं। युद्ध और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के बंद होने से हमारे देशों की स्थिति नाजुक हो चुकी है। 47 दिनों के ईंधन भंडारण की क्षमता के साथ दीर्घकालिक समस्याओं का सामना करना मुश्किल है। इसलिए अब ऊर्जा ट्रांजिशन पर विशेष जोर दिया जा रहा है। ईंधन का आयात और मूल ढांचों की चुनौतियों के बावजूद भी मडागास्कर समुद्री संसाधनों के कारण टिकाऊ विकास और ऊर्जा ट्रांजिशन की क्षमता रखता है। हिंद महासागर आयोग के महासचिव इब्राहिम नोबियाशा और जापान के दूतावास की कार्यवाहक प्रमुख मायू यामाओ ने ऊर्जा आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में जापान की विशेषज्ञता पर प्रकाश डाला। गहरे सागर और जलवायु प्रकोपों को लेकर जापान खुद को ढालने में सक्षम है। रियूनियन और उसके साझेदारों के लिए समुद्र में टर्बाइन्स एक महत्वपूर्ण दीर्घकालिक परियोजना है। इस ऊर्जा परिवर्तन को केवल सहयोग और साझेदारी के माध्यम से ही सफल बनाया जा सकता है। हिंद महासागर में हम समावेशी खरीद पर ध्यान दे रहे हैं, मात्र आपात सामानों के लिए जैसे लिक्विफाइड गैस के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। एक देश आयात करके आसपास इसे वितरित कर सकता है। इस संगोष्ठी के दौरान कई प्रस्तुतियां दी गईं, खासकर फ्लोटिंग सोलर फार्म्स और अन्य समुद्री ऊर्जा प्रणालियां जो कि जापान की पहल हैं।
0: कोदा आर्ट सेंटर में आयोजित एक संगोष्ठी के दौरान 20 साल से ज्यादा की उम्र के विकलांग लोगों की देखभाल से जुड़ी डे केयर फैसिलिटीज की चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित किया गया। मौजूद हुए गैर सरकारी संगठनों, देखभाल करने वालों और अधिकारियों ने ज्यादा समावेशी, मानवीय और आत्मनिर्भरता उन्मुख समाज के हक में प्रस्ताव दिए। मकसद है दिव्यांग लोगों को समाज में बेहतर जगह दिलाना और उन्हें नौकरी की ज्यादा संभावनाएं उपलब्ध कराना। शबनी जुजिया, यशना मिश्रा।
1: यह किसने कहा कि कोई व्यक्ति जो विकलांगता की स्थिति में है 20 वर्ष की आयु के बाद कार्य जगत में अपनी जगह नहीं बना सकता। हाँ, कठिनाई होगी, लेकिन उन्हें भी बाकी सभी लोगों की तरह जीने, काम करने, आगे बढ़ने का अधिकार है। आज लगभग 50 गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों ने यह मजबूत संदेश दिया है। इनमें मारी फांस व्योलेट फॉये दुला ट्रिनिते की अध्यक्ष भी शामिल हैं, जो वर्षों से विकलांग व्यक्तियों के साथ काम कर रही हैं। हम 20 साल से ज्यादा उम्र वाले लोगों का स्वागत करते हैं जो स्पेशल नीड्स स्कूलों में नहीं जाते। उनके विकास प्रशिक्षण में भी हम मदद देते हैं ताकि जहां तक हो पाए वे नौकरी की दुनिया में प्रवेश कर
2: पाएं।
1: जॉ-मारी मालेपा फोंडेशन जॉर्ज शॉल के प्रबंधक एक भावनात्मक सच्चाई की ओर भी इशारा कर रही हैं। एक दिन ऐसा आ सकता है जब ये व्यक्ति अपने परिवार के सहारे से वंचित हो जाए। इसके लिए उन्हें आत्मनिर्भर, मजबूत और बिना डर के दुनिया का सामना करने के लिए तैयार करना जरूरी है। 20 साल का हो जाने पर विकलांगता से ग्रस्त व्यक्ति को यूं ही नहीं खुद के पैरों पर छोड़ सकते हैं, ये बिल्कुल जायज नहीं। उन्हें इस योग्य बनाना चाहिए कि वे भविष्य में अपना जीवन व्यतीत कर पाए। लेकिन आगे बढ़ने के लिए अधिक कर्मचारियों की भी आवश्यकता है, विशेषकर अधिक युवाओं की। सिंजी पामा क्यूपिप स्थित एसोसिएशन जन इनाडाप्टे से बताती हैं कि एक विकलांग व्यक्ति को अक्सर दैनिक जीवन में कई सहायकों की जरूरत होती है। हमारा काम ज्यादा है उनके साथ क्योंकि उन्हें ज्यादा मदद की जरूरत है, मार्गदर्शन की जरूरत है। कर्मचारियों की भारी कमी है, यदि इस कमी को पाटा जाए तो हमें मदद मिलेगी। और हर संघर्ष के पीछे एक सरल इच्छा होती है, गरिमा

0: पूर्ण जीवन जीना, काम करना समाज द्वारा स्वीकार किया जाना, क्योंकि अंत में असली विकलांगता वे नजरें और बाधाएं हैं जो समाज खुद खड़ी करता है।
1: यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी में पिछले हफ्ते स्टूडेंट एंटरप्रेन्योरशिप नेशनल स्टेटस प्रोग्राम का फाइनल लगा। ये पहल तृतीयक शिक्षा मंत्रालय की रही। मकसद रहा छात्रों में नवाचार और ठेकेदारी के प्रति दिलचस्पी प्रोत्साहित करना। बड़ी संख्या में छात्रों ने इस प्रथम संस्करण में भाग लिया। 3 बेहतरीन परियोजनाओं को पुरस्कृत किया गया। विधिमासी बोलन।
2: UTM में स्टूडेंट नेशनल एंटरप्रेन्योर एटीट्यूड कार्यक्रम का प्रथम पुरस्कार द्वितीय वर्ष के एक छात्र ने अपने बड़े पैमाने के एरोपोनिक्स प्रोजेक्ट जुलिकर के लिए जीता है। उसे 10,000 रुपए की पुरस्कार राशि मिली है, जिसे वो अपनी परियोजना में निवेश करने की योजना बना रहा है। उसने अपने इस प्रोजेक्ट को बेहद महत्वाकांक्षी बताया है, जिसके लिए बड़े दृढ़ संकल्प की आवश्यकता है। ये एक चुनौतीपूर्ण परियोजना थी, जिसमें काफी समय की मांग थी, काफी सहनशीलता की जरूरत थी ताकि सही फॉर्मूला मिल सके। इस परियोजना को शुरू करने के लिए बेहतरीन रास्ता ढूंढूंगा। UTM के निदेशक डॉक्टर दिनेश कुमार हरिराम ने उच्च शिक्षा विज्ञान और अनुसंधान मंत्रालय की इस पहल की सराहना की। उनके अनुसार ये कार्यक्रम छात्रों को अपने ठेकेदारी कौशल को विकसित करने, अपने विचारों को अभिनव परियोजनाओं में बदलने तथा व्यावसायिक दुनिया की चुनौतियों के लिए खुद को बेहतर ढंग से तैयार करने के लिए एक ठोस मंच प्रदान
3: करता है।
2: अक्सर छात्र काम ढूंढने के लिए पढ़ाई करते हैं। UTM चाहता है कि अगर केवल 5% छात्र ही एक ठेकेदार बने तो ये वे छात्र देश की संपत्ति में अधिक योगदान देंगे और वे अन्य लोगों की भर्ती करेंगे और इस तरह एक बेहतर मॉरिशस का निर्माण होगा। स्टूडेंट नेशनल एंटरप्रेन्योर एटीट्यूड कार्यक्रम में UTM की ये पहली भागीदारी युवाओं के बीच नवाचार, रचनात्मकता और ठेकेदारी को बढ़ावा देने के लिए विश्वविद्यालय की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।
1: बढ़ते अंतर्राष्ट्रीय खबरों की ओर। म्यांमार के एक गांव में कल पेश आए एक भयानक धमाके में कम से कम 55 लोगों की मौत हुई है और दर्जनों अन्य घायल बताए गए। ये गांव चीन की सीमा से सटा एक विवादास्पद इलाका है। मरने वालों में 25 महिलाएं और 30 पुरुष शामिल हैं, जो ज्यादातर खानों में काम करने वाले कर्मचारी हैं। चैंपियंस लीग के फाइनल्स में आर्सेनल के खिलाफ पेरिस सेंट जर्मेन की हुई जीत के बाद फ्रांस के कई इलाकों में हिंसा भड़की। 780 से ज्यादा लोगों को तोड़फोड़ मचाने के लिए गिरफ्तार किया गया और 220 से ज्यादा लोग घायल हुए। इस अस्थिरता के बीच राजधानी पेरिस में बस और रेल सेवाएं काफी हद तक बाधित हुई। आखिर में चले जाते हैं मौसम का हाल। आम हालत हमारे इलाके पर हल्की हवाएं चल रही हैं। उधर पूर्व से आ रहे बादल स्थानीय मौसम को प्रभावित करेंगे। अगले 24 घंटों के लिए अनुमान। आज सुबह खासकर पूर्व और सेंट्रल प्लेटू वाले इलाकों पर बादल घिरे रह सकते हैं और रह रहकर बारिश होगी। आमतौर पर दिन के दौरान मौसम सुहाना रहेगा। रात के दौरान पूर्वी ढलानों और ऊंचाइयों पर रह रहकर बारिश हो सकती है। हवा पूर्व उत्तर पूर्व की तरफ से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। प्रवाह रेखा के परे समंदर चंचल रहेगा। दक्षिण पश्चिमी समंदर में 2 मीटर तक की लहरें उठेंगी। तापमान सेंट्रल प्लेटू पर न्यूनतम 16 से 18, अधिकतम 23 से 26 डिग्री सेल्सियस। साहिली इलाकों पर न्यूनतम 20 से 22, अधिकतम 28 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। सुबह 6:38 पर सूर्योदय हुआ, शाम को 5:37 पर सूर्यास्त होगा।

समाचारों के आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। तटीय क्षेत्रों को इरोजन, प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन से बेहतर तरीके से किस प्रकार बचाया जा सके, इस मुद्दे पर शनिवार को फ्लिकॉन्फ्लाक में आयोजित सहभागी कार्यक्रम के दौरान विचार किया गया। 11 से 15 मई के बीच मालदीव में आयोजित इंडियन ओशन ट्यूना कमीशन की 30वीं बैठक के अंतर्गत मॉरिशस को 2027 के लिए येलो फिन ट्यूना की पकड़ के लिए निर्धारित कोटे में 500 टन की वृद्धि प्राप्त हुई।

0: राजनीति का अनिश्चितताओं और वैश्विक सप्लाई चेन पर मंडरा रही खतरों को ध्यान में रखते हुए हिंद महासागरीय आयोग सदस्य देशों की ऊर्जा सुरक्षा मजबूत करने के लिए नई रणनीतियों पर विचार कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में म्यांमार के एक गांव में कल पेश आए भयानक धमाके में कम से कम 55 लोगों की मौत। देश विदेश की नई खबरों के साथ ही मुख्य समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। इसको आप तक पहुंचाने में कादिया हमारे साथ रहे, जुड़े रहिए। थोड़ी देर में शोक समाचार।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBCRadio.tv, NBCRadio.tv.
0: शोक समाचार सुनिए। कमापू ओरिएटा वाकुआमी, कमापू ओरिएटा वाकुआमी 73 साल की 73 years old की मिसेज बीबी नाजमा गेंदू, मिसेज बीबी नाजमा गेंदू पैदाशी नाम हुसैन बकस, इंतकाल कर गई हैं। इनका जनाजा दिन के 12:30 बजे, इनका जनाजा दिन के 12:30 बजे इनके भाई जनाब नूरानी हुसैन बकस के मकान कमापू और ये तावाकुआ से उठाकर दफनाने की पहले नमाज जनाजा के लिए इलाके की मस्जिद ले जाया जाएगा, फिर दफनाने के लिए थवामा महल का कब्रिस्तान। फ्यूनरल टुडे एट 12:30 PM। फ्रांस में 78 साल के 78 ईयर्स ओल्ड श्री हरिदत्त खुशी, श्री हरिदत्त खुशी जो पहले हनुमान रोड रिश्मोफ्ला के रहते थे, इनकी मृत्यु हो गई है। वे विजय नाम के ज़्यादा जाने जाते थे। इनका अंतिम संस्कार कल दिन के 10:15 बजे, इनका अंतिम संस्कार कल दिन के 10:15 बजे फ्रांस में ही किया जाएगा। लावेंडर हिल लेन कुवन लोहत क्योपेप में, लावेंडर हिल लेन कुवन लोहत क्योपेप में 77 साल की 77 ईयर्स ओल्ड बीबी नाजमुन कोदाबकस, बीबी नाजमुन कोदाबकस जो पैदाशी नाम महमूद हुसैन इंतकाल कर गई हैं। इनका जनाजा दिन के 1:30 बजे, इनका जनाजा दिन के 1:30 बजे के मकान लावेंडर हिल लेन को वो लोहत के पिप से उठाकर दफनाने के लिए बिगाहा का कब्रिस्तान ले जाया जाएगा। फ्यूनरल टुडे एट 1:30 PM। निकोलसन रोड वाकुआ में, निकोलसन रोड वाकुआ में 62 साल की 62 ईयर्स ओल्ड श्रीमती इंदुमती रामचंद, श्रीमती इंदुमती रामचंद पैदाशी नाम बहुरा जो छाया नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, इनकी मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी आज दिन के 2 बजे, इनकी अर्थी आज दिन के 2 बजे इनके बेटे श्री पवन रामचंद के मकान निकोलसन रोड वाकुआ से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सोल्फेहिनो नंबर 5 की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे 2 PM। नंबर 29 मामलों वे वाले पीटों में, नंबर 29 मामलों वे वाले पीटों में 97 साल की 97 ईयर्स ओल्ड बीबी ताहिरा बुली, बीबी ताहिरा बुली पैदाशी नाम हुसैन बख्श जो ताहिरा नाम से ज़्यादा जानी जाती थी इंतकाल कर गई हैं। इनका जनाजा आज दिन के 12:30 बजे, इनका जनाजा आज दिन के 12:30 बजे इनके बेटे बाई हमीन बुली के मकान नंबर 29 मामलों वे वाले पीतों से उठाकर पहले नमाज जनाजा के लिए वाले पीतों की अलवादी मस्जिद ले जाया जाएगा, फिर दफनाने के लिए रिश्ते का कब्रस्तान। फ्यूनरल टुडे एट 12:30 PM। माथिया स्ट्रीट क्लेमेंसिया में, माथिया स्ट्रीट क्लेमेंसिया में 85 साल की 85 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती सोनमत रामोंधर, श्रीमती सोनमत रामोंधर पैदाशी नाम बेबिन जो जसमत नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, इनकी मृत्यु हो गई हैं। इनकी अर्थी आज दिन के 2 बजे, इनकी अर्थी आज दिन के 2 बजे इनके बेटे श्री कृष्णा अशोक रामोंधर के मकान माचिया स्ट्रीट क्लेमेंसिया से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए वहीं की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे 2 PM। नंबर 25 पुस गली थोंगबा पोर्ट लुइस में, नंबर 25 पुस गली थोंगबा पोर्ट लुइस में 80 साल की 80 ईयर्स ओल्ड श्रीमती प्रेमानंदी जोगू, श्रीमती माफ कीजिए श्रीमती प्रेमानंदी जोगू पैदाशी नाम हरकुन की मृत्यु हो गई हैं। की अर्थी आज दिन के 1 बजे, की अर्थी आज दिन के 1 बजे के मकान नंबर 25 पुस गली थोंगबा पोर्ट लुइस से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए थोंगबा की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे 8

0: 1 p.m. Riverside Condomas Pavime, Riverside Condomas Pavime, 45 साल के, 45 years old, श्री सत्यकाम्बिकाय. श्री सत्यकाम्बिकाय, जो राम नाम से ज्यादा जाने जाते थे, इनकी मृत्यु हो गई है. इनके अर्थियाज दिन के 2 बजे, इनके पिता श्री विजय बिकाय के मकान रिवरसाइड कोंदोमास पावे से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बोवालों कोंदोमास की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी. क्रीमेशन टुडे 2 p.m. बेल्टियर रोड हाईलैंड्स फेनिक्स में 82 साल के, 82 ईयर्स ओल्ड, श्री बालकरण दीपचंद, जो प्रेमदत्त नाम से ज़्यादा जाने जाते थे और पहले रोजिल ट्रांसपोर्ट में शेफ दुगौ थे, इनकी मृत्यु हो गई है. इनके अर्थियाज दिन के दो बजे इनके बेटे श्री भूषण दीपचंद के मकान बेल्टियर रोड हाईलैंड्स फेनिक्स से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए फेनिक्स की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी. क्रिमेशन टू डी 2 p.m. गांधी रोड एन एस लॉ में 52 साल के, 52 ईयर्स ओल्ड, श्रीमती देवयानी लक्ष्मण, पिताश्री नाम जहाजिया, जो देवयानी नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, इनकी मृत्यु हो गई है. इनकी अर्थी गुरुवार 4 जून को इनके मकान गांधी रोड एन एस लॉ से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बुशों की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी. समय सूचित नहीं किया गया है. सैरेमी सॉन्ट डे फ्लैक में 61 साल के, 61 ईयर्स ओल्ड, श्री रामसामी चनिगादू, जो मनोज नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, इनकी मृत्यु हो गई है. इनकी अर्थी आज दिन के 11 बजे इनके मकान सैरेमी सॉन्ट डे फ्लैक से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मेजिन कॉन्डोमास की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी. क्रिमेशन टुडे एट 11 AM. नंबर B15 NHDC रामजीत लेन बालीसों रोजबेल में 90 साल की, 90 ईयर्स ओल्ड, श्रीमती अंजलि नारायण स्वामी रेड्डी, जो माइली नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, इनकी मृत्यु हो गई है. इनकी अर्थियाज दिन के एक बजे इनकी बेटी श्रीमती वेदिता उमगम के मकान नंबर B15 NHDC रामजीत लेन बालीसों रोजबेल से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए प्रेम मानियों की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी. क्रिमिशन टू डेट 1 p.m. रॉयल रोड प्लान दीपापाई में 71 साल के, 71 ईयर्स ओल्ड, श्रीमती ओमिला बिसुन, पैदाशी नाम मिहदीदीन, इनकी मृत्यु हो गई है. इनके अर्थी आज दिन के 11 बजे इनके पति श्री रमेश बिसुन के मकान रॉयल रोड प्लान दीपापाई से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए तेमिनी स्त्रीयोली की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी. क्रिमिशन टूडे एट 11 a.m. स्कूल लेन लावनिया सैंपियामी 72 साल की, 72 ईयर्स ओल्ड, श्रीमती देवंती धनवा, जो माला नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, इनकी मृत्यु हो गई है. इनके अर्थियाज दिन के 11 बजे इनके मकान स्कूल लेन लावनिया सैंपिया से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सिया कौन सैंपिया की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी. क्रिमिशन टूडे एट 11 a.m. बालगोबिन रोड मालेगा सैंपिया में 89 साल के 89 ईयर्स ओल्ड, श्री पूरन नकचेदी, जो प्रेम नाम से ज़्यादा जाने जाते थे और अली भैया रोड वाकवा रहते थे, इनकी मृत्यु हो गई है. इनकी अर्थी आज सुबह साढ़े दस बजे इनके बेटे श्री विशाल नकचेदी के मकान बालगोबिन रोड मालेगा सैंपिया से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए अली भैया कस्तल की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी. क्रिमेशन टू डेट 10:30 a.m. शोक में डूबे परिवारों के साथ हमारी गहरी संवेदना है.
1: सभी सुनने वालों को अरविंद का प्यार नमस्कार. स्पोर्ट्स बुलेटिन में आप सभी लोगों का स्वागत है. ये तो जानते ही हैं कि

Paris Saint-Germain Champions League dit gea or disrat Champions League dit a Paris Saint-Germain mais aussi din aussi rat Paris mein hinsa ghatna ghati ab ye sab bhulkar European Champions League trophy liye kal Paris Saint-Germain ki team wapas Paris aayi shandar ranga rang swagat kiya gaya लगभग 80,000 फैंस के साथ परेड और पार्क डी प्रिंस तक सेलिब्रेशन रहे। एलिजे में प्रेसिडेंट इमैनुएल मैक्रों ने उनका स्वागत किया और ये कहा कि फ्रांस के लिए बहुत बड़ा सम्मान है, इमेंस फियरते पुर ला फ्रांस। इमैनुएल मैक्रों ने आगे कहा कि फ्रांस के लिए ब्लू की तरह पेरिस सेंट जर्मेन के पास दो सितारे हैं। आशा है फ्रांस की फुटबॉल टीम तीसरा वर्ल्ड कप तीसरा वर्ल्ड टाइटल लेकर आए। वैसे इस चैंपियंस लीग सीजन के लिए पेरिस सेंट जर्मेन से ही विच्चा वारात्स्केलिया को बेस्ट प्लेयर चुना गया, वो जोजा का है पर जोजा वर्ल्ड कप में नहीं है, तो इस प्रकार वारात्स्केलिया को वर्ल्ड कप में खेलते हुए नहीं देखेंगे। लिवरपूल नए मैनेजर के लिए अंदोनी इराओला से बातचीत शुरू कर रहा है, फॉर्मल टॉक्स शुरू कर रहा है। बोर्नमुथ का एक्स मैनेजर इराओला एनफील्ड रोड का नया बॉस बनने के लिए फेवरेट है। कुछ और नाम सामने आए हैं जैसे स्टुटगार्ट से सेबास्टियन हुएनेस और लॉन्स का पियर साज, पर उम्मीद है इराओला बेहतर ऑप्शन है। प्रीमियर लीग से परिचित हैं, अनुभव हैं और बोर्नमुथ को यूरोपा लीग तक लाने में उस का बहुत बड़ा अचीवमेंट बहुत बड़ा योगदान रहा है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। लिवरपूल को चाहिए एक फ्रंट फुट अग्रेसिव और अर्जेंट स्टाइल का फुटबॉल जो इराओला में है। लिवरपूल के स्पोर्टिंग डायरेक्टर रिचर्ड ह्यूज ने ही इराओला को बोर्नमुथ के लिए साइन किया था। इधर कोनाते को दुख है कि उसे लिवरपूल छोड़ना पड़ रहा है, सैडनेस ओवर लिवरपूल एग्जिट। इस बात की दुख है कि सही तरीके से लिवरपूल के फैंस को अलविदा नहीं कर पाया जैसे रॉबर्टसन और साला का हुआ। उसके कॉन्ट्रैक्ट को आगे ले जाने की बात हो रही थी पर डील नहीं हो पाई। उसके वैल्यू और वेजेस को लेकर खिलाड़ियों की सैलरी के मामले में लिवरपूल थोड़ा कंजूस है। आर्सेनल का प्रीमियर लीग ट्रॉफी परेड कल लगा। चैंपियंस लीग में हार की निराशा छोड़ते हुए कई हजार फैंस टीम को सल्यूट करने आए थे। एफए कप में मैनचेस्टर सिटी का डबल, सबसे पहले पेप ग्वार्डियोला की टीम ने एफए कप जीता। कल महिला टीम की बारी थी, मैनचेस्टर यूनाइटेड की वुमेन टीम ने ब्राइटन को 4-0 से हराया। इधर मैनचेस्टर यूनाइटेड का युवा खिलाड़ी टाइलर फ्लेचर जो फर्स्ट टीम के साथ केवल दो बार 17 मिनट में खेल पाया था, इस स्कॉटलैंड के साथ वर्ल्ड कप में खेलेगा। डारेन फ्लेचर का सुपुत्र टाइलर अपने फैमिली के साथ फैंस बनकर वर्ल्ड कप देखने जाता पर अब स्कॉटलैंड के स्क्वाड में होगा। उसने कहा कि ये उसके लिए बहुत बड़ी बात है, मेहनत का फल है। वर्ल्ड कप की तैयारी के रूप में काफी फ्रेंडली मैच भी खेले गए। कल इक्वाडोर ने सऊदी अरेबिया को 2-1 से हराया, साउथ कोरिया 5 त्रिनिदाद 0, मेक्सिको 1 ऑस्ट्रेलिया 0, जापान 1 आइसलैंड 0, स्विट्जरलैंड 4 जॉर्डन 1, चेक रिपब्लिक 2 कोसोवो 1, केप वर्दे ने 3-0 से सर्बिया को हराया, पोलैंड को हराया यूक्रेन ने 2-0 से, जर्मनी की आसान जीत 4-0 से फिनलैंड पर। इसमें उंदव का डबल रहा, वर्ड्स का एक गोल, मुसियाला ने भी एक गोल स्कोर किया। यूएस से 3 सेनेगल 2, सेनेगल के लिए साजियो माने का डबल, और ब्राजील ने 6-2 से पनामा को पछाड़ा। इसमें विनिसियस जूनियर, काजेमीरो, रायन, लुकास पकेटा, इगो चागो और दानिलो के गोल रहे। मार्चुस कुन्हा का एक ऑन गोल रहा। वर्ल्ड कप के लिए यूरुग्वे की टीम में मैनचेस्टर यूनाइटेड का मिडफील्डर मैनुएल उगाते हैं पर वेटरन स्ट्राइकर लुइस सुआरेज नहीं चुना गया, डार्विन नुनेज टीम में है। इधर इंग्लैंड की टीम में 21 खिलाड़ी आज फ्लोरिडा पहुंचे प्री टूर्नामेंट कैंप के लिए और दो वार्म अप मैच के लिए। 2026 वर्ल्ड कप में खिलाड़ियों को अपने कोच से बात करने के लिए रोका जाएगा, खासकर जब गोलकीपर टाइम आउट हो, घायल हो। फीफा रेफरी चीफ पियरलुइगी कोलिना ने कहा कि ये रूल अब लागू होगा, वार प्रोटोकॉल को लेकर भी नयापन लाए जाएंगे। टेनिस फ्रेंच

ओपन ने मैं नोवाक जोकोविच को गिराने वाला युवाओ फोनसेका साबित कर रहा है कि वो एक प्रबल दावेदार है, टाइटल चैलेंजर है। इसने उसने फाइनलिस्ट दो बार फाइनलिस्ट कास्पर रूड को एलिमिनेट किया और क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई हुआ। अन्य मैचों में ईगा श्वातेक की हार हुई, कोस्ट्रिक ने उसे हराया, वितोलिना ने बेंसिच को हराया, वेरेज की जीत दे योंग पर सेस्टिया, फिर जुडा अंद्रीवा मेंसिच भी जीत पाए। आज अनेक मैच हैं, इनमें अरीना सबालेंका खेलेगी ओसाका के खिलाफ, फिर कोबोली वाजदा वारिंस्का पारी ओग आलियासी में तबीला और अरीना सबालेंका ओसाका, ये कुछ मेन मैच हैं। क्रिकेट आईपीएल 2026 में फिर से चैंपियन बनी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम, लगातार दूसरा टाइटल रॉयल चैलेंजर्स ने जीता। फाइनल में 5 विकेट से आरसीबी ने गुजरात टाइटंस को हराया। फिर से विराट कोहली की शानदार बैटिंग रही, डैजलिंग बैटिंग पर आरसीबी चैंपियन बनी इसके साथ 25 बॉल हाफ सेंचुरी, फिर 77 नॉट आउट, टारगेट केवल 152 था। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की बॉलिंग भी घातक रही गुजरात टाइटंस के लिए। गुजरात टाइटंस के कागिसो रबादा को पर्पल कप यानी सबसे ज्यादा विकेट लेने वाला अवार्ड मिला। इस आईपीएल सीजन का सुपरस्टार वैभव सूर्यवंशी के नाम 5 अवार्ड और इनाम के रूप में लगभग 70 लाख रुपये मिले सब अवार्ड को लेकर। ऑरेंज कप जीता सबसे ज्यादा रन स्कोर करने वाला, ऑरेंज कप उसे मिलता है और ये सम्मान जीतने वाला वो आईपीएल में सबसे जवान खिलाड़ी बना, यंगेस्ट प्लेयर टू विन ऑरेंज कप। इसके अलावा वैभव को इमर्जिंग प्लेयर अवार्ड भी दिया गया, एक ही सीजन में दोनों अवार्ड जीतने वाला वो पहला खिलाड़ी बना। इतना ही नहीं, वो उसको दिया गया सुपर स्ट्राइकर ऑफ द सीजन अवार्ड और आईपीएल में रिकॉर्ड सिक्सर जो बनाया और मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर जिया हो बिहार के लाला वैभव सूर्यवंशी। वैभव सूर्यवंशी जैसे जवान, निडर, जाबाज, मेहनती और विनम्र खिलाड़ी के लिए द स्काई इज नॉट द लिमिट। सो वर्ल्ड कप 2026 के लिए काउंटडाउन जारी है, बचे हैं केवल 10 दिन। वर्ल्ड कप स्पेशल में आज आपको लेटेस्ट वर्ल्ड कप न्यूज के साथ मैच ऑफिशियल्स पर फोकस करेंगे 8:30 RN2 पर। तब तक हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार, आप सभी लोगों को अरविंद की ओर से शुभ दिन।

ये सुनिए, सीबी की ओर से एक विज्ञप्ति। ओकुले के आसपास के इलाके फेजिनो स्ट्रीट, लापेरू स्ट्रीट और कांगुयाओ के रहने वालों को ये सूचित किया जाता है कि आज सोमवार 1 जून 2026 सुबह के 9 बजे से शाम के 4 बजे तक बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। मरम्मत कार्य पूरा होते ही बिना पूर्व सूचना दिए बिजली की सप्लाई फिर से चालू कर दी जाएगी। सीबी अपने ग्राहकों के प्रति क्षमा प्रार्थी है।

7:08 हुए हैं। नमस्कार श्रोताओं, MBC रेडियो पर आप सबका स्वागत है एक बार फिर से। जी हाँ, आप लोग जुड़े हुए हैं रेडियो मॉरिशस के साथ और इस महीने का पहला दिन है 1 जून। जी हाँ, आज सोमवार का दिन है और मैं उषा कौर आपके साथ इस दिन को शुरू करने के लिए। जी हाँ, और इस महीने का आखिरी का पहला प्रोग्राम और उम्मीद है कि आप लोग साथ देंगे। दोस्तों, आज की ये खूबसूरत सुबह आपके जीवन में खुशियों की बहार लाए, आपके

0: हर सपने को नई उड़ान दे और आपके दिल को सुकून से भर दे, और हर कदम पर सफलता आपका इंतज़ार करे और हर लम्हा आपके चेहरे पर मुस्कान लाए। हम यही कामना करते हैं हमेशा आप लोगों के लिए। ठंडी का मौसम है और जैसे कि आपने सुना कि गला थोड़ा ख़राब है, लेकिन फिर भी आप लोगों की सेवा में लगे हुए हैं और हम बस यही उम्मीद करते हैं कि जो भी गाने, जो भी विचार आप लोगों के साथ हम शेयर करेंगे आपको पसंद आएगा। तो यहाँ पर सुनते हैं चिंतन डॉक्टर महावीर जी से।
1: सदाचार और आत्मिक संतुलन का संगम चिंतन, जहां विचारों में मिठास और मन में शांति। आइए सुनते हैं आज का चिंतन।
2: ईश्वर पर भरोसा इतना रखिए कि जब आपकी इच्छा से काम न हो तो समझ लीजिए ये उसकी इच्छा है, और जब आपकी इच्छा से काम हो तो समझ लीजिए उसकी कृपा है।

0: अकल के दुश्मन छोड़ जिद को नहीं जात कोई चाहत की
1: नहीं जात कोई चाहत की
0: हर यहाँ अमीरी बने फकीरी अजब है दुनिया उल्फत की
1: अजब है दुनिया उल्फत की
0: प्यार में हम तुम सभी

7:18 हुए हैं दोस्तों। जी हाँ, मुकेश साहब की आवाज़ सरस्वती चंद्र फिल्म से लिया गया। आप सुन रहे थे ये प्यारा गाना 1968 में रिलीज़ हुई फिल्म। कहते हैं ना दोस्तों, ज़िंदगी बहुत छोटी है, नफ़रत में गुजारने के लिए जितना हो सके प्यार बांटते चलो, क्योंकि प्यार वो दौलत है जो बांटने से कम होती है। और हर दिन को मोहब्बत की ज़रूरत होती है, इसलिए मुस्कुराहट बांटते चलो, प्यार बांटते चलो और अपनी अच्छाई से दुनिया को थोड़ा और खूबसूरत बनाते चलो। यहाँ पर एक बहुत ही प्यारा गाना है, दिल एक मंदिर फिल्म से लिया गया। जी हाँ, लता जी की प्यारी आवाज़ में चलिए सुनते हैं।

होता है। ये लाइन कितनी अच्छी है दोस्तों, और ये गाना भी कितना बहुत ही खूबसूरत गाना है तलत महमूद साहब की आवाज़ में। चलिए तकदीर पर एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ आपको। एक गांव में दो दोस्त रहते थे, दोनों रोज़ मेहनत करते, लेकिन एक हमेशा शिकायत करता, मेरी तकदीर ही ख़राब है। दूसरा मुस्कुरा कर कहता, तकदीर भी उन्हीं के साथ देती हैं जो कोशिश करते रहते हैं। एक दिन दोनों को रास्ते में एक पुरानी पोटली मिली। पहले दोस्त ने कहा, मेरी तकदीर में कुछ अच्छा नहीं हो सकता, और बिना देखे आगे बढ़ गया। दूसरे ने पोटली खोली तो उसमें कुछ सोने के सिक्के निकले। ये देखकर पहला दोस्त उदास हो गया और बोला, देखा कि तकदीर अच्छी है, तेरी तकदीर अच्छी है और मेरी बुरी। और जो दूसरा दोस्त मुस्कुराया और बोला, तकदीर ने दोनों को एक ही मौका दिया, फ़र्क सिर्फ इतना था कि मैंने उस मौके को पहचाना और तुमने उसे नज़र

नज़रअंदाज कर दिया। जो श्रोताओं, इस कहानी से यही सीख मिलती है कि तकदीर दरवाजे ज़रूर खोलती है, लेकिन उन दरवाज़ों से गुजरना हमारी हिम्मत और कोशिश पर निर्भर करता है। 7:30 बजने को है, चलिए रफ़ी साहब की आवाज़ में हत्यारा फिल्म से लिया गया।

जी हाँ दोस्त, हमेशा हम कहते हैं आपको धन्यवाद क्योंकि आप समय निकाल कर हमें फ़ोन करते हैं, मैसेजेस भेजते हैं, तो इसके लिए हम आपको कहते हैं तहे दिल से धन्यवाद प्यार दिखाने के लिए। और यहाँ पर गाने जो हैं बहुत ही सुंदर, बहुत ही लाजवाब है, चुन चुन कर हम लेकर आए हैं ऐसे गाने, क्योंकि कहते हैं ना ज़िंदगी के सफ़र में बहुत से लोग मिलते हैं, बहुत से मोर आते हैं और बहुत सी बातें वक्त के साथ धुंधली पड़ जाती है, लेकिन पुराने गीत ऐसे हम सफ़र होते हैं जो कभी साथ नहीं छोड़ते। जब भी उनका सिलसिला शुरू होता है दिल अपने आप उन राहों पर निकल पड़ता है जहाँ बचपन की मासूमियत, जवानी के ख्वाब, अपनों की मुस्कुराहट और गुजरे हुए लम्हों की महक बसी होती है।

7:45 हुए हैं दोस्तों। वक्त के साथ बहुत से पुराने बॉलीवुड कलाकार और गायक इस दुनिया से रुखसत हो गए, लेकिन उनकी आवाज़ और उनकी कला आज भी हमारे दिलों में ज़िंदा है। कुछ लोग अपनी ज़िंदगी जीते हैं और कुछ अपनी कला के ज़रिए हमेशा के लिए अमर हो जाते हैं। पुराने कलाकार उन्हीं लोगों में से थे जिन्होंने अपनी आवाज़, अपनी अदाकारी और अपने जज्बात से करोड़ों दिलों में जगह बनाई। आज जब उनके गाए हुए गीत सुनाई देते हैं ना, तो लगता है जैसे वो कहीं गए नहीं बल्कि हमारे साथ ही हैं। उनकी हवा आवाज़ जो है ना, हवाओं में घुली हुई है और रेडियो की धुनों में बसी हुई है और यादों के हर कोने में महफूज है। लता जी, किशोरदार, रफ़ी साहब, तलत महमूद साहब, हेमंत कुमार साहब, कितने सारे लोग हैं, उन्होंने सिर्फ गीत नहीं गाए बल्कि ज़िंदगी के हर एहसास को सुरों में फिरो दिया। मोहब्बत, जुदाई, खुशी, इंतज़ार और

जी हाँ, उनके गाने हमेशा यादगार रहेगा। 7:50 हुए हैं। दोस्तों, इंसान पूरी ज़िंदगी कल को बेहतर बनाने की कोशिश में लगा रहता है, लेकिन ज़िंदगी का असली सुकून तब मिलता है जब हम आज के लम्हों की कदर करना सीख लेते और कल की चिंता और गुजरे हुए कल का अफसोस दोनों मिलकर आज की मुस्कुराहट छीन लेते हैं। इसीलिए कल की चिंता छोड़ दो और आज पर फोकस करो, आज क्या होने वाला है। और हमें ये सोचना चाहिए कि जो होगा अच्छे के लिए ही होगा। तो चलिए, वक्त का ये खूबसूरत गाना, चंद खूबसूरत गाने आप लोगों के नाम हम करते हैं। और भूलिएगा नहीं, 8:00 भोजपुरी समाचार, और समाचारों के बाद हमारी मुलाकात होगी।

0: अपन घर ही मिला जा फजीर के 8 बजे तक। नमस्ते पेशवा भोजपुरी के समाचार। तटीय क्षेत्र के इरोजन, प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन जैसन समस्या से जस्ती अच्छा तरीका से कौन प्रकार से बचावल जा सकी मुद्दा परी समी के फ्ली कॉन्फ्राक में आयोजित सहभागी कार्यक्रम के दौरान विचार करल गल। शीर्षक रहल नू लाकुत नू लालवा। आम जनता, विशेषज्ञ लोग और अधिकारी लोग ब्लैक रिवर जिला खातिर ई पहला एकीकृत तटीय क्षेत्र प्रबंधन कार्य योजना के विकास में योगदान देवे खातिर एकत्रित होलन जा। एक अंतर्गत नागरिक परामर्श होल, तटीय क्षेत्र से जुड़ल चुनौती के लेके जागरूकता बढ़ावल गल आर समंदर तट प्रवाह रेखा नदी आर तटीय समुदाय लोग के बेहतर संरक्षण खातिर सुझाव एकत्र करल गल। ई पहल हिंद महासागरीय आयोग के रिकोस नामक इलाकाई परियोजना के हिस्सा है जगर मकसद है इलाकाई देश में तटीय इकोसिस्टम जस्ती मजबूत करे के। बीच अथॉरिटी के अनुसार मॉरिशस के सार्वजनिक समंदर तट पर ही हर हफ्ता के 350 से 400 टन कूड़ा इकट्ठा करल जाला। ब्लैक रिवर इलाका खातिर चलावल जाए होला संरक्षण कार्य योजना के आवत अगस्त महीना लिए अंतिम रूप देवल जाए और एक बाद ओकरा संबद्ध अधिकारी लोग के समक्ष प्रस्तुत करल जाए। परियोजना के सलाहकार आर इंडियन ओशन आइलैंड्स फाउंडेशन के संस्थापक चेरी ले बोयतों बोलेलन कि ई अभियान देश के आर कई गो क्षेत्र लिए बढ़ावल जाए। मॉरिशस के येलो फिन ट्यूना मच्छी के अतिरिक्त 500 टन की कोटा मिलल बाटे। 11 से 15 मई के बीच मालदीव्स में आयोजित इंडियन ओशन ट्यूना कमीशन के 30वां बैठक के अंतर्गत मॉरिशस के 2027 खातिर येलो फिन ट्यूना की पकड़ खातिर निर्धारित कोटा में 500 टन की वृद्धि मिलल बा। ई मछली उद्योग खातिर एगो महत्वपूर्ण उपलब्धि मानल जाता जेकर से रोजगार सृजन, निर्यात, बंदरगाह गतिविधि और ब्लू इकोनॉमी के विकास के लाभ पहुँचे की उम्मीद है। एक संगे ही इलाकाई स्तर पर ही मत्स्य गतिविधि के संचालन करे होला सब संस्था के अंतर्गत मॉरिशस की स्थिति आर मजबूत होई। भू राजनीतिक अनिश्चितता आर वैश्विक सप्लाई चेन पर ही मंडरावे होला खतरा के ध्यान में रख के हिंद महासागरीय आयोग सदस्य देश लोग के ऊर्जा सुरक्षा मजबूत करे खातिर नवा रणनीति पर ही विचार करता। संभावित विकल्प में से एगो है इलाकाई द्वीप सब द्वीप के आवश्यकता होला महत्वपूर्ण पैदावार खातिर एगो संयुक्त खरीद प्रणाली स्थापित करे के। एकर संगे ही आईओसी रिन्यूएबल ऊर्जा के देने संक्रमण के गति देवे खातिर जापानी विशेषज्ञता की मांग करता। मध्य पूर्व में तनाव आर वैश्विक तेल परिवहन की महत्वपूर्ण भूमिका निभावे होला हॉर्मुज जल मार्ग के लेके चलल चिंता के बीच ई विकल्प पर ही विचार करल जाता। गल सुख के कोदाव आउट सेंटर में एगो गोष्ठी के आयोजन करल गल। एक अंतर्गत इलाकाई स्तर पर ही ईंधन के आपूर्ति के साधन मजबूत करे के मुद्दा पर ही चर्चा करल गल। और दूसर देश के खबर में म्यांमार के एगो गांव में काल पेश आल एगो भयानक धमाका में कम से कम 55 जना की मौत होल बाटे और दर्जनों अन्य घायल होल हवन जा। ई गांव चीन के सीमा से सटल एगो विवादास्पद इलाका में बाटे। मरे होला लोग में 25 गो महिला लोग और 30 गो पुरुष लोग शामिल हवन जा। ई लोग खान में काम कर रहे होला कर्मचारी हवन जा। तय रहल भोजपुरी के समाचार। थोड़ा घड़ी में मनी की खबर सुनत जा।
1: Your news on NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.

मनी की खबर सुना जा। फ्रांस में 78 बरिस के 78 के श्री हरिदत्त खुशी जे विजय नाम से जसी जान जात रहलन और पहले हनुमान रोड ग्रीष्म फ्लाक रहत रहलन गुजर गल हवन। उनकर अंतिम संस्कार काल फजर के 10:30 फ्रांस में ही करल जाए। कमापू अंगीता वाकवा में 73 बरिस के 73 के मिसेस बीबी नाजमा गेंदू पैदाशी नाम हुसैन बकस उनका इंतकाल हो गलवा। उनका जनाजा दिन के बारह बज के आधा उनकर भाई जनाब नूरानी हुसैन बकस के घर कौमापू अंगियता वाकवा से उठा के पहले नमाजी जनाजा खातिर इलाका के मस्जिद ले जाल जाए फिर दफनाए खातिर थवा मामेल के कब्रस्तान। रॉयल रोड रेन्यूमोरल गुडलैंड्स में 74 बरिस के 74 जौके श्री इंदर देव नाथू जे राकेश नाम से जस्ती जान जात रहलन गुजर गल हवन। उनकर माटी आज दिन के 1 बजे उनकर पत्नी श्रीमती किसनावती नाथू के घरे रॉयल रोड रेन्यूमोरल गुडलैंड से उठा के अंतिम संस्कार खातिर बेलमो गुडलैंड की श्मशान भूमि ले जाल जाए। लवेंडर हिल लेन कुवंत लोरेट क्योपिप में 77 बरिस के 77 के बीबी नाजमुन खुदाबकस पैदाशी नाम महमूद हुसैन उनका इंतकाल हो गल बा। उनका जनाजा दिन के एक बज के आधा उनकर घरे लवेंडर लेन कुवंत लोरेट क्योपिप से उठा के दफना खातिर बिगा के कब्रस्ताने जाल जाए। निकोलसन रोड वाकवा में 62 बरिस के 72 के श्रीमती इंदुमती रामचंद पैदाशी नाम बहुरा जे छाया नाम से जस्ती जान जात रहलन गुजर गल हवन। उनकर माटी आज दिन के दो बजे उनकर बेटा पवन रामचंद के घरे निकोलसन रोड वाकवा से उठा के अंतिम संस्कार खातिर सिर्फ 9 नंबर 5 के श्मशान भूमि ले जाल जाए। 39 मामलों व्यय वाले पिटो में 97 बरिस के 97 के बीबी तहरा बोली पैदाशी नाम हुसैन बक्स जे तहरा नाम से जस्ती जान जात रलन उनका इंतकाल हो गलबा। उनका जनाजा आज दिन के बारह बज के आधा उनका बेटा जनाब बाई अमीन बली के घरे 39 मामलों व्यय वाले पितो से उठा के पहले नमाज से जनाजा खातिर वाले पितो के अलवादी मस्जिद दे जाल जाए फिर दफना खातिर रिश्ते के कब्रस्तान। माचिया स्ट्रीट क्लेमेंसिया में 85 बरिस के 85 के श्रीमती सुनमत रामोंधर जे पैदाशी नाम बेबीन जे जसमत रामोंदर नाम से जस्ती जान जात रहलन गुजर गल हवन। उनकर माटी आज दिन के दो बजे उनकर बेटा श्री कृष्णा अशोक रामोंदर के घरे माचिया स्ट्रीट क्लेमेंसिया से उठा के अंतिम संस्कार खातिर हुए के श्मशान भूमि ले जाल जाए। 25 पुस गली थोंगबा पोर्ट लुइस में 25 पुस गली थोंगबा पोर्ट लुइस में 80 बरिस के 80 के श्रीमती प्रेमानंदी जोगू जे पैदाशी नाम हरकू गुजर गल हमन। उनकर माटी आज दिन के एक बजे उनकर घरे 25 पुस गली थोंगबा पोर्ट लुई से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए थोंगबा की श्मशान भूमि ले जा जाएगी। रिवरसाइड कौंदमास पावे में 45 बरिस के 55 के श्री सत्यकाम बिकाय जे राम नाम से जसी जान जात रहलन गुजर गल हवन। उनकर माटी आज दिन के दो बजे उनकर पिता

0: विजय बिकाय के घरे रिवरसाइड कौंदेमास पावे से उठा के अंतिम संस्कार खातिर बोवालों कौंदेमास की शमशान भूमि ले जाल जाए। बेल्टेयर रोड हाईलैंड्स फिनिक्स में 82 बरिस के कथों में दोजों के श्री बालकरणदीप चंद, श्री बालकरणदीप चंद पैदा जे प्रेमदत्त नाम से जैसी जान जात रहा पहले रोजिल ट्रांसपोर्ट में शब्दगौ रहलन गुजर गल हवन उनकर माटी आज दिन के 2 बजे उनकर माटी आज दिन के 2 बजे उनकर बेटा श्री भूषण दीप चंद के घरे बेल्टेयर रोड हाईलैंड्स फिनिक्स से उठा के अंतिम संस्कार खातिर फिनिक्स के शमशान भूमि ले जाल जाए। सैगेमी सौंदोफ्लाक में 61 बरिस के 61 के श्री रामसामी चेनिगादू, श्री रामसामी चेनिगादू जे मनोज नाम से जैसी जान जात रहलन गुजर गल हवन उनकर माटी आज दिन के 11 बजे उनकर माटी आज दिन के 11 बजे उनकर घरे सैगेमी सौंदोफ्लाक से उठा के अंतिम संस्कार खातिर में जिन कौंदेमास की शमशान भूमि जार जार। नंबर 15 नाश्ते से रामजीत लेन बारिशों रोजबेल में 90 बरिस के कथवें जीजों के श्रीमती अंजलि नारायण स्वामी रेड्डी, श्रीमती अंजलि नारायण स्वामी रेड्डी जे माइली नाम से जसी जान जात रहलन गुजर गल हवन उनकर माटी आज दिन के 1 बजे उनकर माटी आज दिन के 1 बजे उनकर बेटी श्रीमती वेदिता उमगम के घरे एनाश दे से रामजीत लेन बालिसों रोजबेल से उठा के अंतिम संस्कार खातिर प्लान मानियों की शमशान भूमि ले जा जाए। रल रोड प्लान दे पापाए में 71 बरिस के 71 के श्रीमती ओमिला बिसुन, श्रीमती ओमिला बिसुन पैदाशी नाम मिदीदीन गुजर गल हवन उनकर माटी आज दिन के 11 बजे उनकर माटी आज दिन के 11 बजे उनकर पति श्री रमेश बिसुन के घरे रॉयल रोड प्लैंडी पापा से उठा के अंतिम संस्कार खातिर तेमिनिस्तोले की शमशान भूमि ले जाल जाए। स्कूल लेन लाविनियस सैंपिया में 72 बरिस की 72 के श्रीमती देवंती धनवा, श्रीमती देवंती धनवा जे माला नाम से जसी जाल जात रहलन गुजर गल हवन उनकर माटी आज दिन के 11 बजे उनकर माटी आज दिन के 11 बजे उनकर घर स्कूल लेन लाविनियस सैंपिया से उठा के अंतिम संस्कार खातिर सैंपिया की शमशान भूमि ले जाल जाए। बालगोबिन रोड मालेगा सैंपिया में 89 बरिस के 99 के श्री पूरन नक्चेदी, श्री पूरन नक्चेदी जे प्रेम नाम से जस्सी जाल जात रहलन आर पहले आली भुइयों रोड वाकवा रहत रहलन गुजर गल हवन उनकर माटी आज दिन के 10 बज के आधा उनकर माटी आज फजर के 10 बज के आधा उनकर बेटा श्री विशाल नक्चेदी के घरे बालगोबिन रोड मालेगा सैंपिया से उठा के अंतिम संस्कार खातिर आले भुइयों का स्थल के शमशान भूमि ले जाल जाए। गांधी रोड एन एस लॉ में 52 बरिस के 52 के श्रीमती देवयानी लक्ष्मण, श्रीमती देवयानी लक्ष्मण पिदाशी नाम जहाजिया जे देवयानी नाम से जस्सी जाल जात रहलन गुजर गल हवन उनकर माटी बीफे के उनकर माटी बीफे के 4 जून के उनकर घरे गांधी रोड यानी फ्लॉ से उठा के अंतिम संस्कार खातिर बोशों के शमशान भूमि ले जाल जाए। अभी बखत सूचित न करल गल है। शोक में डूबल इस सब परिवार लोग के संगे हमने के संवेदना है।
1: KHz ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
2: खवातीन और हजरात, आज की शाम इस महफिल में आपके पसंदीदा कव्वाल जनाब चुलबुले असरानी साहब को बुलाया गया था, मगर अचानक तबीयत खराब हो जाने की वजह से वो चुलबुले गुलगुले होकर बुलबुले हो चुके हैं और इसलिए यहां नहीं आ सके। उनके न आने की मैं जनाब कर्नल टिप्सी से माफी चाहता हूं, इस गुजारिश के साथ कि उनकी ये हसीन महफिल साज और आवाज के जादू से महरूम नहीं रहेगी। अगर मेरे सीने में दिल है और उस दिल में तड़प, तो उसका असर लाजमी है। अपनी आवाज से सब दिलों को जीतने का वादा तो नहीं कर सकता, मगर हुजूर ये नाचीज अगर एक रात में एक दिल भी जीत सका तो मेरी किस्मत चमक उठेगी।

0: 8:20 हुए हैं दोस्तों। जी हाँ, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। आप लोग जुड़े हुए हैं रेडियो मॉरिशस के साथ। जी हाँ, इस कार्यक्रम सुबह का नजराना कार्यक्रम आप सुन रहे हैं और दूसरे भाग हम आ गए हैं और यहाँ पर अब हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जी हाँ, सुनाने जा रहे हैं आपको आपका साप्ताहिक राशिफल। तो चलिए साथ दीजिए।
1: आपकी राशि रेडियो मॉरिशस, रेडियो मॉरिशस। एरीज, मेष राशि।
0: ये सप्ताह आपके लिए ऊर्जा और उत्साह से भरा रहेगा। जो काम काफी समय से रुक रहे थे उनमें प्रगति देखने को मिल सकती है। कार्य क्षेत्र में आपके प्रयासों की सराहना होगी। उच्च अधिकारी या वरिष्ठ व्यक्ति आपसे प्रसन्न रहेंगे। प्रेम संबंधों में मधुरता बनी रहेगी और स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन अधिक गुस्सा और तनाव से बचना उचित रहेगा। लकी नंबर है 9, लकी कलर है लाल रंग।
1: टॉरस, वृषभ राशि।
0: ये सप्ताह धैर्य और विवेक से काम लेने का है। जल्दबाजी में लिए गए निर्णय नुकसान पहुंचा सकते हैं। कार्य क्षेत्र में स्थिरता बनी रहेगी और धीरे धीरे प्रगति मिलेगी। प्रेम और दाम्पत्य जीवन में परिवार के किसी सदस्य की उपलब्धि से खुशी मिलेगी। स्वास्थ्य के प्रति सतर्क रहें। भोजन और नींद का विशेष ध्यान रखें। लकी नंबर है 2, लकी कलर है हरा रंग।
1: जेमिनी, मिथुन राशि।
0: यह सप्ताह संपर्क और संचार के माध्यम से सफलता दिलाने वाला है। नए लोगों से जान पहचान बढ़ेगी और भविष्य में इसका लाभ मिल सकता है। कामकाज में रचनात्मक विचारों से की प्रशंसा होगी। प्रेम जीवन में नए अनुभव मिल सकते हैं। अविवाहित लोगों के लिए अच्छे प्रस्ताव आ सकते हैं। लकी नंबर है 5, लकी कलर है पीला रंग।
1: कैंसर, कर्क राशि।
0: कर्क राशि, भावनाओं को संतुलित रखने की आवश्यकता होगी। पारिवारिक मामलों में समझदारी से निर्णय लें। घर के किसी महत्वपूर्ण कार्य में व्यस्त रह सकते हैं। आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी। बचत बढ़ाने पर ध्यान देना उचित होगा। प्रेम और दाम्पत्य जीवन में परस्पर विश्वास बढ़ेगा। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और लकी नंबर है 2, लकी कलर है सफेद रंग।
1: लेव, सिंह राशि।
0: आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता में वृद्धि होगी। कार्य क्षेत्र में महत्वपूर्ण सफलता मिल सकती है। वरिष्ठ व्यक्तियों का सहयोग प्राप्त होगा। प्रेम संबंधों में मधुरता रहेगी और जीवन साथी का पूरा सहयोग मिलेगा। स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही ना करें और नियमित दिनचर्या अपनाएं। लकी नंबर है 10, लकी कलर है नारंगी।

0: वर्गो कन्या राशि,
1: कार्य क्षेत्र में आपकी प्रतिभा उभर कर सामने आएगी। आर्थिक मामलों में लाभ के योग है, पुरानी निवेश से अच्छा फल मिल सकता है। प्रेम जीवन में स्थिरता बनी रहेगी, परिवार के साथ यादगार समय बीत सकता है और स्वास्थ्य पहले से बेहतर रहेगा। नियमित व्यायाम लाभदायक होगा। लकी नंबर है 8, लकी कलर है हरा रंग।
0: लिब्रा तुला राशि,
1: ये सप्ताह संतुलन और सामंजस्य का रहेगा। कार्य क्षेत्र में आपके विचारों को महत्व दिया जाएगा। सामाजिक मान सम्मान में वृद्धि के योग है। आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा। नए साझेदारी संबंध लाभ पहुंचा सकते हैं। प्रेम और विवाहित जीवन में मधुरता बनी रहेगी। किसी प्रिय व्यक्ति के साथ अधिक समय बिताने का अवसर मिलेगा। लकी नंबर है 15, लकी कलर है गुलाबी रंग।
0: स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि,
1: ये सप्ताह रहस्यमय और प्रभावशाली ऊर्जा लेकर आएगा। महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए समय अनुकूल है। कार्य क्षेत्र में आपकी मेहनत का उचित सम्मान मिलेगा। प्रेम संबंधों में गहराई बढ़ेगी। जीवन साथी के साथ संबंध और मजबूत होंगे। लकी नंबर है 9, लकी कलर है गहरा रंग।
0: सजिटेरियस धनु राशि,
1: यात्रा ज्ञान और प्रगति का सप्ताह रहेगा। नए अवसर मिल सकते हैं। उच्च शिक्षा और अध्ययन से जुड़े लोगों के लिए समय शुभ है। आर्थिक मामलों में लाभ के योग है। व्यवसाय में प्रगति संभव है। प्रेम जीवन में खुशियों का वातावरण रहेगा। मित्रों और परिवार के साथ सुखद समय बिता सकते हैं। लकी नंबर है 3, लकी कलर है पीला रंग।
0: कैप्रिकॉर्न मकर राशि,
1: मकर राशि अनुशासन और कठिन परिश्रम आपकी सबसे बड़ी ताकत रहेंगे। कार्य क्षेत्र में आपको महत्वपूर्ण सफलता मिल सकती है। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। बचत और धन संग्रह में वृद्धि संभव है। पारिवारिक जीवन सुखद रहेगा। बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद प्राप्त होगा। लकी नंबर है 17, लकी कलर है नीला रंग।
0: एक्वेरियस कुंभ राशि,
1: नई सोच और नवचार के माध्यम से आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। कार्य क्षेत्र में आपकी अलग पहचान बनेगी। आर्थिक रूप से समय लाभदायक है। नए आय के स्रोत खुल सकते हैं। प्रेम और मित्रता के संबंधों में मजबूती आएगी। सामाजिक गतिविधियों में भाग लेने का अवसर मिलेगा। लकी नंबर है 4, लकी कलर है नीला रंग।
0: पाइसेस मीन राशि,
1: मीन राशि वालों के लिए ये सप्ताह आध्यात्मिक उन्नति और मानसिक शांति लेकर आ सकता है। अंतर्दृष्टि मजबूत रहेगी और सही निर्णय लेने में सहायक होगी। कार्य क्षेत्र में धीरे धीरे प्रगति होगी। आर्थिक मामलों में परिणाम मिलेंगे। प्रेम संबंधों में अपनापन बढ़ेगा और पारिवारिक वातावरण सुखद रहेगा। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा। ध्यान और प्रार्थना से मन को शांति मिलेगी। लकी नंबर है 16, लकी कलर है हल्का पीला रंग।
0: ये थी आपकी राशि रेडियो मशीन। रेडियो मशीन पर
1: सारे 8 बजने को है दोस्तों, और आपने सुना आपका साप्ताहिक राशिफल। और हमेशा की तरह हम यही प्रार्थना करते हैं कि ये जो सप्ताह है आपके लिए खुश मंगल हो और हमेशा आप खुश रहें। जहाँ पर भी जाएं बस प्रगति प्राप्त करें।

0: और फिर क्या होगा?
1: पार्टियां, दावतें,

आज बजकर 41 मिनट हुए हैं दोस्तों, और आप सुन रहे हैं 80s के चंद खूबसूरत और पॉपुलर गाने। अभी जो हम गाना चलाने जा रहे हैं वो है राम बलराम फिल्म, जहाँ एक मशहूर बॉलीवुड फिल्म है जो 1980 में रिलीज़ हुई थी। और इस फिल्म में नज़र आए रेखा और जीना तमान, और साथ में हम देख सकते हैं कि अमिताभ बच्चन साहब भी है। ये फिल्म दोस्ती, भाईचारे, बदले और न्याय की कहानी का मनोरंजक अंदाज में पेश करती है। तो चलिए इसी फिल्म का ये खूबसूरत गाना रफ़ी साहब और किशोरदा की आवाज़ों में।

0: राहु पे रहने वाला।
1: जी हाँ दोस्तों, हम यही प्रार्थना करते हैं कि आप जहाँ पर भी जाए हमेशा खुश रहें। 8:52 हुए हैं, तो चलिए अब हम सुनते हैं हमारी धरोहर कार्यक्रम किरण जानकी के साथ।

0: हमारी धरोहर किरण जानकी के साथ। हमारी धरोहर।
1: नमस्ते, हमारी धरोहर में आपके स्वागत बा। हर पहला जून के विश्व दूध दिवस मनावल जाला। इस दिन पर हमने के जीवन में दूध के महत्व और डेयरी प्रोडक्ट्स यानी दूध से बनल पैदावार के महत्व के बारे में जागरूकता फैलावे खातिर एगो मौका है। इस दिन की स्थापना 2001 में संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन कर ले रहा। इस बरिस जब हमने अलग अलग देश में युद्ध के सामना करत है जा तो देखत है जा कि हमने के जलवायु परिवर्तन भी कितना असर छोड़ता दूध के पैदावार में और ई जोन उद्योग बा ओकर में। पर्यावरण के बहुत बड़ा एगो भूमिका है दूध के पैदावार में और देखत है जा कि ग्रीन हाउस एमिशन के कमती करे के अलावा जोन वेस्ट मैनेजमेंट बा ओके बेहतर बनावे पर भी जोर देवल जाता ताकि दूध के पैदावार नियमित रूप से ई दुनिया में होते रही। दूध के जो मूल्यवान पोषक तत्व बा हाई न्यूट्रिटिव वैल्यू ओकर पर ध्यान देवल जाला काहे कि ई स्वास्थ्य खातिर बहुत लाभदायक है। दूध खाली लड़का लोग ही नहीं बल्कि हर आदमी के लोग एकर सेवन करेलन सा, हर उम्र के लोग ई दूध के सेवन करेलन सा और हमनी के दैनिक जीवन के एगो बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा मॉरिशस में दूध गाय से मिलेला और लेकिन दूसरा देश में भैंस बकरी और ऊंट के भी दूध बेचाला और एकर सेवन होवेला। आजकल गाय के असली ताज़ा दूध के जगह पाउडर दूध या डिब्बा में जो दूध उपलब्ध बा ओकर से होवेला। आजकल तो जे लोग वेगन हवन जा वो लोग डेयरी प्रोडक्ट्स के इस्तेमाल नहीं करेलन सा, कितने कोई डेयरी प्रोडक्ट से एलर्जी भी उ लोग के होवेला। तो ऐसन में ये सब व्यक्ति दूध के सेवन करेलन सा लेकिन वो सब दूध जो सोय मिल्क से पैदा होवेला, आलमंड से पैदा होवेला या फिर नारियल से, ऐसन कितने पैदावार बा जेकर से सकबा दूध के

पैदावार करे तो एकर पर भी बहुत ध्यान देवे के शुरू हो गल बा ई दुनिया भर में। और देखा थे जा कि दूध खाली पिए के चीज नहीं है, दूध से कितने अन्य ऐसन व्यंजन जुड़ल बा, ऐसन गसत जुड़ल बा जेकर बिना जहाँ दूध नहीं रही तो वह गसत नहीं चली। अब दूध से जन सीधा रूप से जन जन पैदावार बा वह घीव, छाछ, दही, मक्खन, मिठाई, फेनुस, खोखोरनी, ये सब दूध से निकलेला जब दूध के उबल बा तब। और देखा थे जा कि धीरे धीरे दूध के ओकर रूप भी बदलता, ओकर पैदावार भी अलग अलग किस्म के पैदावार से होता, खाली गाय और प्राणी पर निर्भर नहीं बा दूध। तो चाहे हमने के हमेशा ये बात के ख्याल रखे के कि जे आप चाहबा कि आपके जीवन में ये बहुत ही पौष्टिक तत्व जारी रही, तो हमने के चाहे अपन ई पृथ्वी, अपन ई पर्यावरण, ई वातावरण के भी सुरक्षा करेंगे, कहे कि ओकरे से जुड़ल बा दूध के पैदावार। कार्यक्रम के ध्यान से सुनला बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलब जा। नमस्ते।

चलो श्रोताओ, 8:57 हुए हैं कृषि के गावल गीत और इसी गीत के साथ हम भरेंगे 9 के संक्षिप्त समाचारों की ओर. और भूलिएगा नहीं, समाचारों के बाद आप सुन पाएंगे आज की चर्चा कार्यक्रम नीतुषा के साथ.

0: सुबह के 9 बजे हैं। संक्षिप्त समाचार आपसे अदिति, नमस्कार आपको।
1: नमस्कार श्रोताओं को भी नमस्कार। तटीय क्षेत्रों को इरोजन, प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन से बेहतर तरीके से किस प्रकार से बचाया जा सके, इस मुद्दे पर शनिवार को फ्लिकॉन्फ्लाक में आयोजित सहभागी कार्यक्रम के दौरान विचार किया गया। शीर्षक रहा नुलाकोत नुलालवा, आम जनता, विशेषज्ञ और अधिकारीगण ब्लैक रिवर जिले के लिए इस पहली एकीकृत तटीय क्षेत्र प्रबंधन कार्य योजना के विकास में योगदान देने के लिए एकत्रित हुए। इसके अंतर्गत नागरिक परामर्श, तटीय क्षेत्रों से जुड़ी चुनौतियों को लेकर जागरूकता बढ़ाया गया तथा साथ ही समंदर तटों, प्रवाह रेखाओं, नदियों और तटीय समंदरों और समुदायों के बेहतर संरक्षण के लिए सुझाव एकत्र किए गए। ये पहल हिंद महासागरीय आयोग की रिकोस नामक परियोजना का हिस्सा है। इसका मकसद है इलाकाई देशों में तटीय इकोसिस्टम मजबूत करना। मॉरिशस को येलो फिन ट्यूना मछली के अतिरिक्त 500 टन का कोटा प्राप्त हुआ है। 11 से 15 मई के बीच मालदीव्स में आयोजित इंडियन ओशन ट्यूना कमीशन की 30वीं बैठक के अंतर्गत मॉरिशस को 2027 के लिए येलो फिन ट्यूना की पकड़ के वास्ते निर्धारित कोटे में 500 टन की वृद्धि प्राप्त हुई है। ये मत्स्य उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है, जिसे रोजगार सृजन, निर्यात, बंदरगाह गतिविधियों और ब्लू इकोनॉमी के विकास को लाभ पहुंचने की उम्मीद है। साथ ही इलाकाई स्तर पर मत्स्य गतिविधियों का संचालन करने वाली संस्थाओं के अंतर्गत मॉरिशस की स्थिति और मजबूत होगी। भू राजनीतिक अनिश्चितताओं और वैश्विक सप्लाई चेन पर मंडरा रहे खतरों को ध्यान में रखते हुए हिंद महासागरीय आयोग सदस्य देशों की ऊर्जा सुरक्षा मजबूत करने के लिए नई रणनीतियों पर विचार कर रहा है। संभावित विकल्पों में से एक है इलाकाई द्वीपों की आवश्यकता वाले महत्वपूर्ण उत्पादों के लिए एक संयुक्त खरीद प्रणाली की स्थापना करना। साथ ही IOC रिन्यूएबल ऊर्जा की तरफ संक्रमण को गति देने के वास्ते जापानी विशेषज्ञता की मांग कर रहा है। मध्य पूर्व में तनाव और वैश्विक तेल परिवहन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हॉर्मुज जलमार्ग को लेकर चल रही चिंताओं के बीच इन विकल्पों पर विचार किया जा रहा है। पिछले शुक्रवार को कोदा और सेंटर में एक गोष्ठी का आयोजन किया गया। इसके तहत इलाकाई स्तर पर ईंधन की आपूर्ति के साधन मजबूत करने के मुद्दे पर गौर किया गया। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में चैंपियंस लीग के फाइनल्स में आर्सेनल के खिलाफ पेरिस सेंट जर्मेन की हुई जीत के बाद फ्रांस के कई इलाकों में हिंसा भड़की। 780 से ज़्यादा लोगों को तोड़फोड़ मचाने के लिए गिरफ्तार किया गया और 220 से ज़्यादा लोग घायल हुए। इस अस्थिरता के बीच राजधानी पेरिस में बस और रेल सेवा काफ़ी हद तक बाधित हुई। इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुआ। आगे आ दीजिए, नमस्कार।
2: Your news on NBC Play, NBC Play, NBCRadio.tv, NBCRadio.tv.
3: आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग

0: आज की चर्चा।
1: तो आज की चर्चा कार्यक्रम देखे होला सुने होला सब कोई के प्रणाम नमस्ते। हमने आशा करे थे ऐसा कि आप लोग बिल्कुल स्वस्थ हुआ जा, अच्छा हुआ जा, कुशल मंगल हुआ जा। तलंडी के दिन हा और आजों के दिन हमने तनि सुन अपन खेती बाड़ी के बारे में बतियाब जा। जे हमने के हर लंदी के सुनेला कबू कबू प्रताप जी आवेलन। आजकल तो हमने के श्रीमान संजय शंभू आवत हवन फागे दाने से और हमने जुन जुन टॉपिक पर बतियाएल आसा तोहरे सुविधा खातिर आप लोगन जितना खेतिहर हवन जा कितना कोसू माते हमने सब इमें जुड़ जाए ला जा और ढेर चीज ऐसन ऐसन टॉपिक पर हमने बताए ला जा जिनसे तोहर फायदा होवेला सब कोई के फायदा होवेला। जे यार बा गल हला हमने बात करत रही जब बायो फार्मिंग तो बायो फार्मिंग पर बात करते करते एगो ऐसा टेम के बारे में संजय भाई बोले रलन उ रहल जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग। एकर बारे में जो सुभाष पालेकर साहब जो रहल उ डेवलपे कर ली रहल तो आज यही पर तमनी हमनी जस्ती बतियाब जा एकर पर और हमनी के मेहमान हवन फिरों से श्रीमान संजय शंभू। तो चलो फागदाने से हमनी के जो अधिकारी हवन

0: तुम्हारा स्वागत बाटे, प्रणाम।
1: नमस्ते नितुषा,
0: बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज जब बोले हवा हमने यही टॉपिकवा पर जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग पर बतियाब जा, और जैसे हमने सुनते आल है जा कि ये जो तेमुआ है जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, श्रीमान सुभाष पालेकर ओकरा डेवलपे कर लेला हर, तो काहे उ तेमुआ लग रखलन जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, लंबा बातें काहे नहीं जीरो पेस्टिसाइड या कुछ और।
1: सबसे पहले जैसे बोला जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग जो बात है वो तो जो बोला सा बायो फार्मिंग ओके संगे जुड़ल बात है, ये कारण दू गो जो शब्द बात है पीछे में नेचुरल फार्मिंग बात है। अब आगे में बात जीरो बजट,
0: सच्चे की जीरो बजट हुए है।
1: हाँ, जीरो बजट हुए है क्योंकि उपदेश कौन सी है, और उपदेश है एगो किसान जन बाते ओके स्वतंत्र करे के स्वतंत्रता कैसे इंडिपेंडेंस पे
0: देश के ना, लेकिन
1: अपन गोर पर खड़ा रहे के बाहर के जो ऐथों बा जो एग्रीकल्चरल इनपुट ओकर पर निर्भर नहीं करे के। तो जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग में कौन चीज होला, सुभाष पालेकर जी ऐसा ऐसा योजना अनले हुआ जेकर से एगो किसान सकी अपने ही खेत में या अपने ही देश में जो चीज मिला था साधारण चीज, जैसे जैसे कि गाय के गोबर बात
0: हमने बताया कौन कौन कंपोस्ट आए में,
1: हाँ में हाई सब प्रयोग करके तब एक आध गो मिक्सचर्स पे पानी करेला, तब उसकी अपन जाके अपन खेत में प्रयोग करे। तो इस प्रकार से आज देखब तो वो बाहर के जितना मन चीज बा ओकर पर निर्भर नहीं करलक
0: जी।
1: अब एगो खेती बाड़ी करवा तो मुफ्त में तो नहीं रहेला ना, कम तो डिपेंस रहेला, कम करवा के तब ओके तो ओके चाहना तनख्वाह दे के दूसरा चीज शायद पर ही खरीदे के, लेकिन क्योंकि अपन से जो ऐतो बातें किसान से कि अपन से ओकर योजना करे ऊ खातिर के डालवा जीरो बजट, क्योंकि इस सब चीज पर किसान के नहीं पड़ेला खर्चा करेगी
0: जी। अच्छा, माने कि इस सच्चे में नो बजट नो एक्सपेंसेस।
1: हाँ, जहाँ तक ये सब ऐथों के सवाल बाते तो ओकर पर तो खर्चा नहीं करी ना, क्योंकि वो ही तो तैयारी करे था। दूसरा चीज पर रही हमने बताया नहीं रही कैसे सकेला कम करवा पर सकेला रहे ओकर लगे सकेला एक आध प्रकार के बीज ने बाते तो हो बीज पर ही खरीदे के, लेकिन आज अपने से बीज आज निकाली था वो ने पड़ी ओकर पर खर्चा करे के। तो इस प्रकार से जीरो बजट ओकर नाम डाल बा।
0: तो जितना जना हमने के देखत होवन सुनत होवन कुछ हो पूछे के बाते लाइन खुलल बाते 402-84-85-4028-08-5 पर हमने के फोन करिया। हमने के मेहमान होवन श्रीमान संजय शंभू, और तोहर जवाब दियन यानी कि सवाल के जवाब दियन। तो भाई संजय, हमने के बताओ जिन महाशय हवन हविलेख हवन सुभाष पालेकर, वो कौन चीज से प्रेरित होके ये जो जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग के डेवलपे करल, और एक ओरिजिन कहा ओकर बारे में तेनु सुन बताओ के हवन।
1: लगभग सबसे पहले तो भारत के गो
0: जी खेतिहर हवन सियाची हवन
1: एगो सियाची हवन।
0: अच्छा,
1: वो का करलन की सन 1980 से लेके सन 1990 तक एगो जांच करलन, ऐसा एगो सोच में पड़लन कि कैसा केला जब जंगल के उदाहरण लेलन एगो जब जंगल देखेला तो ऐसा ऐसा विचार अनलक तो जंगल में कौन मनुष्य जाके खाद डालता वहाँ पर ही उस जंगल के पेड़ पौधा जो बाते ओके बड़ा करे खातिर कोई तो नहीं जला
0: जी।
1: जंगल में के जाके रुपाई करता जंगल के जंगल रखे खातिन कोई तो नहीं करता। ऐसे ही अनेक प्रकार के प्रश्न रखलन कि कैसे सकेला एगो जंगल अपने आप पर
0: निर्भर
1: हो और अपने आप के अपने के देखे देख रेख करे, और एक ऐसा नहीं कोई संतुलन रहला। कभी देख ले हुआ एगो एगो आदमी के जाके जंगल में वहाँ पर ही पेस्टिसाइड के स्प्रेइंग करे के, क्योंकि वहाँ पर ही सब चीज जो मैं संतुलन रहेला सब चीज कंट्रोले बाते। तो एक में जैसे बोला सा मनुष्य के इंटरफेरेंस ने बातें ना जंगल के ऐसे रखे के सुरक्षित रखे के निमन से रखे के। तो जब भाई सब प्रश्न आगे अनलन तो गैलन जांच करे तो कौन चीज होता ये हमने के प्रकृति में जंगल में कौन सा चीज होता जिसके

0: जंगल अपने आप इसे खड़ा रहे
1: जी।
0: तब जाके हुआ से एक आध गो मॉडल निकलन कैसे कि खाद के बोलने
1: जी।
0: देखो जंगल में कितना पत्ता गिरते रहेला, कितना गौछी मरते रहेला, कितना पशु मरते रहेला, सब गिर के कुंच होला जंगल में। नीचे गिर के गते गते सरेलन
1: सा
0: माटी में चल जान सा, तब माटी के बरियार कर देवे सा। हाँ कि नहीं, अजय भाई जंगल कैसे हमने के देश में चाहला सा गुलाब दुगुलाब सिंह थुरे, तब जब प्लेन चौपाए के वहाँ पर जंगल में जेबा जब चलब तो नीचे कुंच में चले ला
1: पत्ता और जो
0: रहेला ना एगो एगो एगो लिपिसिया के तेरे तो लिपोस के तेरे लाभ ज्यादा चला तो अकड़ में तो हवे गते गते मर के सर के तो हवे फिमिया हो जला हवे माचे ऑर्गेनिक माटी में चला रहता तो हवे माटी के उपजाऊ रखा था
1: जी।
0: हाँ अब एगो दूसरा चीज जंगल में तू देख ले हो, एगो जंगल में एक एगो चीज रोपाई होला, एक रोपाई ना एक एगो चीज रहेला, एक एगो एक एगो पेड़ नहीं
1: वाहिते
0: रहेगा ना। तो हाइयो एगो सीखा कि हमने के जन खेती बाड़ी कैला सा तो हुआ पर ही चाहला नहीं चाहला एगो मनुखी चीज रह के चाहला अनेक प्रकार के चीज के रोपाई करे के ताकि एगो संतुलन बायोडायवर्सिटी रही ताकि मारू पिलवा या बीमारी
1: माने कि सब कुछ जिन बातें वो ऑनोस्मोस जैसे हमने बोली ला सा।
0: हाँ तो ऐसे ऐसे इस चल ले जाए ऐसे देख ले जाए तो पानी के लिए ला कोई जला जंगल में सिंचाई करे
1: नहीं
0: तो खड़ा रहेला ना। हाँ जब लासेस गैस मारेला बहुत महीना तक मारेला तब बुझाला जंगल भी सूखा था
1: जी।
0: लेकिन एकर अलावा जंगल तो हरियाली हरियाली रहेला और जब लासेस गैस हो रहेला उस अकेला अनेक महीना के लास्ट इसके मार दे तब बुझाला होता नहीं सुन सूखा था। नहीं तो ऐसे तो कारो में आ जाए दो दिन गला सिंचाई नहीं कर लेता कारो सूखे लगे। हाँ तो यहाँ पर एगो सीख भी मिलेगा तो कैसे सकेला जंगल अपने आप
1: के अपन के सपोर्ट करे। हाँ
0: तो देख बता जंगल में एगो पेड़ छोटा रहेला एगो बड़ा रहेला ऐसे अपने आप के गला हाँ सुरक्षित रखेला सा। फिर जैसे बोली नीचे में जितना जो छो सर के जब गिर जब पत्ता गिरल बा सरता वगैरह वगैरह तो एगो प्याज नेचुरल कर दे ला
1: जी।
0: तो प्याज से और जितना है जितना ऊंचाई के पौधा पेड़ बाते तो सूर्य की किरण भी उतना नहीं मारेला प्याज से लिमी जीते वही जब चले ला जंगल में था जब महक मिलेगा झलाली में जीते बाते तो नीचे में हौली में जीते सब प्रिजर्वे होता
1: कैसे सा, एक कौन टेम सकब सा बोले ऑटो कैसे सकब सा बोले वो लोग तो अपन ऑटो
0: सपोर्ट सेल्फ केयर कर लेंस सबसे। हाँ शायद हाँ ये सब अच्छा रहे सेल्फ केयर एक जंगल अपन सेल्फ केयर करेला
1: जी।
0: हाँ तो जब हाई सब प्रेरणा मिलल तब जाके वहाँ से जंगल में से अब कैसे सकला है जंगल में से जो सीख मिलल बा अब जाके खेती बाड़ी में चाला ऐसा कब से अडाप्टी करी। तब हाई से तब हमने की तब हर तीन महीना हर महीना हर चार महीना जो सचिद रुपये के वगैरह जंगल की तक खड़ा हुई नहीं मानो आज एगो व्यजी रहता हो लेकिन सब्जी की तक कठिन बात है। तो ये प्रकार से मनुकिलचे के चला तुरे के अनेक प्रकार के चीज रुपये के अनेक प्रकार के चीज चला संगे रुपये के जैसे कि हर एगो चीज हर एगो जो रुपाई बा दूसरे रुपाई की देख रेख अपन से करी माचे ऑर्गेनिक जो मेला सब फीमिया के चाहला खूब प्रयोग करे के सुभाष पालेकर जी। और एगो चीज बोले हुआ कि जब एगो माटी में खूब माचे ऑर्गेनिक रही तो कैसे बोला सा मित्यो एम्बे से पासे करेला तब बोला जैसे ह्यूमिडिटी इतना रही रिलेटिव ह्यूमिडिटी 80% रही कहानी कितना रही तो सुभाष पालेकर जी बोलन जब माचे ऑर्गेनिक तो हर माटी में ढेर रही तो अगर वो कैपेसिटी है जो लिमिजिते हो बामे तो कि आप सोबे करके लिमिजिते माटी में आके स्टोके कर देवेला।
1: अच्छा
0: ये भी है एगो सीख है तो इस प्रकार से तब माचे ऑर्गेनिक बातें मनुखिलचे के चला तुरे के हर एगो पेड़ पौधा अपन अपन संगतिया के देख रेख करी। अब लेकिन हमने जब रोपाई का इलासा कैसे बोलनी हर एक महीना हर तीन महीना दूसरा चीज आवता तब माटी में तो जन खागी बात हिंच देवेला ना
1: जी।
0: हाँ तब अब ओके कैसे सकेला उपजाऊ रखते रहे तो एक बात है माचे ऑर्गेनिक लेकिन दूसर बात है ओकर अपन से जो योजना बने ले बा टेक्निक बने ले बा जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग के कैसे गाय के

0: ओकर गोबर जोन बाटे ओकर जोन यूरिन बाटे ओकर प्रयोग करे के और फिर जंगल में तो सेल्फ के है ना आए पिलुआ बीमारी वगैरह के तो ये भी जोन गाय बाटे ओकर में से जोन गोबर बाटे जोन यूरिन बाटे और फिर एक आध प्रकार के जोन पत्ता बाटे सकल में मिला के वगैरह फिर मोहते करके तब ओकर प्रयोग करे तो पिलुआ जोन बा बीमारी बा ओकर से भी लिपटे।
1: तो जैसे बोले थे भाई संजय कि जोन गाय के जोन काउडंग बाटे ओकर ढेर इस्तेमाल होला खाली वही धरला जोन जब हमने बात करा था ऐसा जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग जो काउडंग नहीं रही तो
0: नहीं चली
1: कहीं
0: ओकर एगो खासियत बात है जन सुभाष सुभाष पालेकर जी करले होन ओकर जांच अनुसार और ये सब पूवे बा साइंटिफिक में तो जन देसी गाय बाते हम बताए देसी गाय ये सब हम यूरोपियन होलस्टीन फ्रिजन वगैरह ये सब हम बात नहीं बताए जैसे वो सब नहीं बोलते हैं जन देसी गाय बाते भारत में ओकर एगो खासियत बाते क्योंकि ओकर में उतना क्वाजमो नहीं हो पा ब्रीडिंग नहीं हो पाते तो ओकर सिस्टम जोन आलिमेंटे बाटे डिजेस्टिव बाटे जोन ओकर लिस्टोमा बाटे जोन खा के तुरेला वगैरह वगैरह तो वो अभी लेकर ना सकब जा बोले साधारण रूप से सकब बोले थोड़ा प्रिमिटिव बाटे तो वो कारण ओकर अंदर में एक आध गो निमन बैक्टेरिया बाटे जोन ओकर सहायता करेला हो खान जोन जोन जोन घास वगैरह खाता तो ओके तुरे जोन यूरोप यूरोप से जोन जोन स्पीसीज बाटे जोन गाय वगैरह बाटे तो वो लोग इतना ले ख्वासमा हो रहा था वो लोग गला कैसे गला वैसे सुफाकिड्स तो हयो जानवर के सकब सब बोले ओके सब सुविधा मिलल बाते तो हाउ सब जन अंदर के जन खासियत बाते वो गला बिलागल नहीं वो बिला दे ले बा देसी गाय में ओकर में बाते तो ओकर में एक आध क्वेश्चन बैक्टेरिया बा जैसे बा बैसिलस सुबटिलिस बैसिलस सुबटिलिस ओकर में आवेला तो बैसिलस सुबटिलिस जब गोबर वा के प्रयोग करब तो ओकर में तो बैक्टेरिया आए ना एक दूसर बात स्वेडोमोनास वो ओकर में रहला तो ऊ सकी ओकर में मिलावटवा में आए तो जब मिलावटवा में आना तो कैसे अब बीज रोपतव तो ओकर जोन जड़ी बातें तो ओके सुरक्षित रखी मारू बीमारी जैसे बोला सोल बोन पाथोजन जोन बीमारी माटी में रहला तो ओकर से बचावेला बाद में आज प्रिपरेशन करब पत्ता वगैरह मिला के तो एक कैसे बोला नहीं सा धतूरा बाते नीम बाते वो तो काम हुआ है ना लेकिन ये जोन बैसिलस बाते सुबटिलिस कैसे स्यूडोमोनास बाते तो ओकर में भी मिल जाला तो जब स्प्रे करवा तो ऊपर से भी काम करेला बीमारी सब के भगाए खाते हैं और जब पतवन जन रहला नीम धतूरा वगैरह वो तो कहला आई पिलुआ के जितने खाते काम सकी संगे चला
1: चला हमने संगे जुड़ल हुआ कुछ पूछे के बाद 402 85 85 एगो छोटा सन म्यूजिकल ब्रेक के बाद वापस आएला जा

0: आज की चर्चा।
1: तो फिर से आप सब लोगों के स्वागत बाटे, बहुत बहुत धन्यवाद हमने संगे जुड़ल हुआ आज की चर्चा कार्यक्रम में। और आज हमने जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग पर बतियात है जा देखला कितना जो अभी कहानी नहीं है, लेकिन हाँ सच्ची बात है कि जो सुभाष पालेकर साहब हवन एकर बारे में हमने की जो जंगल बाटे ओकर से इंस्पायर प्रेरित होकर वो जो जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग है जितना खेती हर हवन जा लोग के मदद करे खातिर जमे उ लोग अपन गोर पर थरा हुए जा और वो अपन बिजे करियन जा कोनो प्रॉब्लम नहीं हो। प्रॉब्लम तो सकरो होला पर प्रॉब्लम के सोल्यूशन है सकल साय ढूंढे। तो हमने संगे जुड़ा हुआ बहुत बहुत धन्यवाद हमने के खास मेहमान हवन श्रीमान संजय शंभू फागेदाने से। भाई संजय हबी बोला देसी गाय जो भारत में बाटे तो तेने सुन हमने के बताओ भारत में जब देसी गाय के बोलते हुआ कितना प्रकार मानी कि कितना स्पीशीज बाटी।
2: हाँ भारत में हमारे देखे में 55 यानी कि सकनसाइक स्पेस बाटे देसी गाय के। हाँ तो हुआ पर ये वो समस्या बाटे
1: जी
2: क्योंकि देसी गाय जिस भागत होता
1: अच्छा
2: लेकिन एकाध गो ऐसा इनिशिएटिव योजना बाटे जो उठत बाटे खासकर एनजीओ द्वारा जहाँ पर ओकर महत्व समझा तो ना तो ओके प्रिजर्वे करे खातिन ओके फिर से शुरू करतवन सा ओकर देख रेख करे के पोषे खातिन जैसे कि आउट ऑफ लिविंग के लिए लिप्सा बेंगलोर में ओकर इंटरनेशनल सेंटर बाटे तो वहाँ के आश्रम में 19 प्रकार के देसी गाय के ओकर पोषण होता
1: उनको प्रिजर्व करल जात बाटे।
2: हाँ नहीं बस की जिस पागे तो अंसा
1: अच्छा तो मोरिस में जब हमने देसी गाय की बात कर रहे थे सब मोरिस में वही बा देसी गाय
2: एगो कठिन प्रश्न बा हमारे खातिन हमारे देखे में एगो इनिशिएटिव रहल एगो 10 बरिस आगे 2006 या लगभग पता नहीं शायद एक दो गो अनाल रहल तब वहाँ के हाईकोम रहल श्री गोबर्धन जी
1: जी
2: जैसे हमने चाहते हैं अनाल रहल कि नहीं लेकिन आज अनाल भी हुई तो एक गो या दो गो हुई ओकर जस्ती नहीं तो वो तक कुछ एक दो गो तक कुछ नहीं करी ना
1: तो हर देखे में फिरो

0: से चाहेला है जो इनिशिएटिव वा फिर से उठाए के जमी जो देसी गाय के बोलत हुआ अरे धरला मोरिस में हमने लगे देसी गाय जैसे बोलत हुआ नहीं भी बाटी तो जो विदेश से आने गल बातें कैसे
1: हाँ विदेश से आने बातें तो जो स्पेस ख्वाजे बातें वो बातें ना लेकिन जो संकेत करते हो अच्छा बातें हमने

0: बातें
1: जी
0: कि हो देसी गाय जन बातें ओकर में से एक आध गो बैक्टेरिया बा जन हमने खाते बहुत बेनिफिक बातें एगो ऐसा खेती बाड़ी करके जन जन में रासायनिक पदार्थ के प्रयोग नहीं होता तो एक में पीछे साइंटिफिक एविडेंस बातें तो आज साइंटिफिक एविडेंस बातें तो हमने के चाहे आगे चले के हमार अपन ख्याल से हमने के चाहे ऐसा ऐसा
1: योजना
0: दिमाग करके कि हम जो सकब सा
1: हाँ
0: फायदा उठाए देसी गाय के आने यहाँ पर ही क्योंकि वो लोग में से हमने क्या बैक्टेरिया मिली ना
1: अच्छा एगो जना हवन उनका से बतियाला जा हेलो
2: हाँ मैं वाकवा से बोल रही हूँ
1: नमस्ते जी
2: सब लोग के
1: नमस्ते प्रणाम हाँ
2: यहाँ ना एगो सुसु के गांची प्लांट ले रहनी फिर फर मिले ला तो बरका बरका ले जावे या मुटे मुटे सुन हो गए हवन सर सब सुसु खालन सर सुसु के फर जैसे फरे ला छोटा छोटा
0: कितना मोटा हुआ है चाची
2: हाँ
0: इलेज़ावे कितना मोटा हुआ है सर
2: आयुक्त कहाँ से आवट हुआ है सर
0: पिता पिता पिता पिता इलेज़ावे वहाँ नहीं है मोटा
2: सॉरी
0: पिता इलेज़ावे वहाँ है कि मोटा बाहेला
2: पित को बा मोटा वो बा मोटा भी बा
0: अच्छा
2: और पीमा के गांचे प्लांट बात है उनमें भुजा था लसा नंग बोले हुए ला खूब फूला जा रहा तब
0: अच्छा अच्छा
1: अच्छा सुनो भाई जी कुछ बोलिए
0: जन जन पीमा के समस्या बोला वो हम थोड़ा बोलती ब्यूरो वाकवा हमने के कोई दफ्तर बातें
1: बाजार के बाजार के
0: बाजू में वहाँ जाके लेंदी बुध शुक्र के एक बजे से चार बजे दफ्तर खुला रहेगा वहाँ जाके कुछ जाके हमने के जन ऑफिशियल लोग बा लोग के जनया और लोग थोड़ा बोली कुछ चला करे के जोन हम मोटका ले जाओ वे बातें वो एगो स्पेस मोगिस के नहीं है छोटकावा जोन बातें एगो पीती सुन रहे ओकर में एक आध गो चिपुआ रूज एने रहेगा वो मोगिस के है ओकर में प्रॉब्लम नहीं बातें न बड़कावा जोन आज तुहरा लगे कोनो हानि पहुँचा होता तो हम तुहरा बोलती यहाँ पर रेजुई में कृषि मंत्रालय के एगो विभाग बातें नाम है नेशनल पार्क्स एंड कंजर्वेशन सर्विस
1: जी
0: तो ये लोग हमने के स्पेस एंडिजन लोकल एंडेमिक के प्रोटेजे के लंस और मैम तो जन एक्जोटिक बा
1: जी
0: तो करो समाधान निकाल लंस तो हम बोलती वो लोग के देखे के नेशनल पार्क एंड कंजर्वेशन सर्विस
1: जन मुका मोटका बा वो कितना मोटका बा कितना लंबा बा
0: बड़ा होला इतना लंबा हो जाला
1: इतना लंबा है
0: हां बट्टे सुन जाला
1: गेको एगो एगो के बोलिए ये नहीं
0: है नहीं वो एगो गेको है लेकिन बड़ा है बोले लंस मडागास्कर से हाल बात है
1: अच्छा तो चाची हमने आशा करे था जा निमन से सुन ला जन पीमा खातिर उस सकें जाए जन वाकवा के सब ऑफिस बाटे बाजार के जन बाजू में बाटे और उहाई जन मोटका लिसो जैसे बोला था वन चाहिला जाए के रिजवी
0: हाँ नेशनल पार्क्स कंजर्वेशन सर्विस
1: तो चला कोनो चीज बा बताए के पूछे के 402-8085 और हमने बात करे थे जो आज जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग तो भाई शंभू हमने के बतावा जैसे अभी बोला गौ मूत्र के भी इस्तेमाल होला हाँ। जन गोबर इस्तेमाल होला हाँ। नीम ढेर चीज बा इस्तेमाल होला तो जन गाय जन गौमूत्र हमने सब पूजा के इस्तेमाल उ सब करी ला सा एक कुल नेपोता सही में
0: यूँ परी कैसे बोले गाय के गोबर के प्रयोग होता साइंटिफिक एविडेंस के आधार पर
1: जी
0: गौमूत्र के भी ओकर प्रयोग होए होता साइंटिफिक एविडेंस के आधार पर गौमूत्र में भी जन बैक्टेरी बोलनी हवो मिलेला ओकर में अनेक प्रकार के एंजाइम्स वगैरह सब आवेला
1: जी
0: और ओकर में वो नाइट्रोजन रिच है
1: अच्छा
0: हाँ नाइट्रोजन रिच है तो कुल मिला के जब गौमूत्र के ओकर प्रयोग करबा देसी गाय के तो एगो तो ओकर में जन बेनिफिशियल माइक्रोब्स बाते वो मिला था खेती बाड़ी खातिर दूसरा ओकर नाइट्रोजन कंटेंट जन बाते कैसे हमने जला सा खेती बाड़ी में खाद के प्रयोग करी तो ओकर में एगो चीज है बोला सा यूरे या आजोत नाइट्रोजन बेस या अमोनिया बोला जा तो तोरा ओकरे में मिल जाए
1: नेचुरल
0: हाँ तो ओकरे में तोरा मिला था तीसरा चीज एक में एक गो और ऐसा मिक्रोब लोग बातें एक्टिनोमाइसिस कॉम्प्लिके बाहर से बोले के लेकिन एक में और मिक्रोब बातें एक में कि जो जब माटी में जाला तो गनला कैसे माटी में हमने के माटी खासकर मॉरिशस में माटी में बहुत फुसफात बातें
1: जी
0: लेकिन उ जो फुसफाट बाटे वो माटी में बंधल रहेला लॉक्ड बा
1: जी।

0: तो ओकरा खोले खातिर
1: हां तो के खोले खातिर हम निकुन छिकेला से जाके एकाद गो फौजी खरीदा खरीदला से ओके बोला सके से फॉस्फेट सोल्युबिलाइजिंग कंपाउंड्स एगो फौजी बाग खरीदा से तो करने को बाग देगी बातें तो वो फॉस्फेट के सोल्युबिलाइज के यानी के खोल ले तो यहां पर तो के हो तोरा हो गौमूत्र में ओकरे में मिला ताइसन ऐसन बैक्टीरिया मिक्रोब जन सकी है कमवा करे
0: जी
1: तो देखला एक कोते बीमारी के कोते खाई के मिलता एक कोते जन जन जमीन में जन फॉस्फेट या और दूसरा चीज बा जन लॉक बाते मिनरल वो भी गला मिलता बस एक और गौमूत्र में और ऐसा ऐसा ऐसा छोटा छोटा जन बोला सा माइक्रो एलिमेंट्स वो भी मिलेगा
0: जी और साइंटिफिकली प्रूव्ड हो गया
1: इस
0: सब में एक अलावा हमने देख लीजिए गुड़ बेसन जन बाते जागरी जन जागरी जन बाते गुड़ बेसन बाते और बाते ये सब जन चीज वा बाते काहे यही चीज के इस्तेमाल होला
1: ता जब जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग में ये सब मिक्रोब के प्रयोग हुए गाय के ओकर गोबर या ओकर मूत्र द्वारा तो जब अब ओके फेमाते करके ओके मिलाजे करके या तो फिर माटी में डाला तो वगैरह वगैरह तो हो सब मिक्रोबा के चला जिए के ना
0: जी
1: अब फेमाते हुए करा तो रख दिले हुआ कहूँ परी तो वहाँ परी चला वो लोग के पिपले कराई के
0: माने कि ये जो फेमाता शोवा बात है ये जरूरी स्टेप है
1: हाँ तो वो लोग के पिपले कराई बा
0: जी
1: हर ग्राम जो निकाला तो कैसे हर किलो हर ग्राम जो गाय के ओकर गोबर बाते वगैरह ओकर में तो दिजा बाते मिक्रोब लेकिन अब हमने के कारों में डाले के बाद तनिशुन से तनिशुन के लेके तनिशुन पानी में डाल के तो हमने गला बिघा के अब कारों में डाल अब जाना तब जिलिए कर अब सा पन्या के ना तब डाल अब सा तो मिक्रोबन के पेपले का दिखाते हैं ओके चला खाए के देखे है सुविधा चला दे के तो जन जागरी बाते जन बेसन बाते हवे वो के गला एगो पहला पहला स्टार्स में हाँ एज ए फर्स्ट स्टेप वो लोग के हो खाना रही तो हो मिक्रोबन वो लोग मेरे पिपले है खयन सा जियन सा पिपले हुए सा ऐसे हमने के जन मेलाज में मिलियों मिलियों के ऐसा मिक्रोबन रही तब जब जिलिए करके डालब से ऐसी सकता सगरू डाल दे
0: जी तब भाई शंभू हजा परी हम देखत है जन को प्रिंसिपल्स है जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग के जैसे हमने बात करी राजा बीजामृत जन सीड ट्रीटमेंट बाटे जीवामृत माइक्रोबियल कल्चर जन मल्चिंग बाटे अच्छा दाना और वापस आई जन शब्द बाटे बहुत ही टेक्निकल है और सॉइल एरेशन के बारे में और हमने देखा था जन कोबुजा बाटे माटी खातिर जन पत्ता खातिर प्लांट खातिर तनी सुनी के बारे में बताओ
1: हाय में चले नाम पर उतना ने चला जाके उलझे के वो लॉजिक चला समझे के पहला लॉजिक बातें कैसे माटी के उपजाऊ रखे के कैसे माटी में जो बीमारी वगैरह बातें कैसे जब बीज डाला तो या छोटा पौधा ट्रांसप्लांटी कर तो एक आध को बीमारी आवेला या फिर जब बड़ा होता पौधा तब माटी में से बीमारी आवेला तो कैसे ये सब बीज के पौधा के बचाए के
0: जी
1: तो एक उपाय प्रकाशो है गौमूत्र और गोबर के प्रयोग करके मिलाजे करके तो जैसे बोला बीज अमृत वगैरह तो वो सब डाल जा माटी में पौधा के सुरक्षित रखे खाते हैं बीज के सुरक्षित खाते हैं ओके खाते हैं एक दूसर बात है ऐसी माटी में वही माटी में जब डालब जाता कैसे बोली अनेक प्रकार के मिक्रोबा बेनिफिशियल माइक्रोब एक आध गो बाद जो डिकम्पोजिशन एक्सीलरेट करेला तो जब माटी में किसी पायास बातें सरत आते वगैरह वगैरह माटी के अंदर में भी हुई तो जब भाई मिक्रोबन पड़ेला तो जब खा लन से ना उन लोग के चला पिपले हुए के तब तो डिकम्पोज करके ओके कोपोस कहते हो जला तब ह्यूमस कहते हो जला तब बेनिफिशियल रहेगा तब अब दूसर ओर जब देखब जा देखो दूसर कैटेगोरी बा जो पत्ता पर डालब जा तो हाइए जो प्रिपरेशन बात है सकब जा पत्ता पर डाले जिलवे करके लेकिन है तो बस क्योंकि मैं हो मिक्रोबन बाना वैसे बोले बासिलस सुबचिलिस बीमारी के खिलाफ काम आवेला आपसे ल्यूमिनस बातें वगैरह लेकिन अब ओकर में कौन चीज करब जा खासकर पिलुआ से लिपटे खातिन तब ओकर में अनेक प्रकार के जो पत्ता बाते उ सकब सा ओकर में जोड़ दे
0: जी।
1: अब हमने तो भारत में नहीं है जहाँ भारत में अनेक प्रकार के जूसर कहते

0: पेड़ पौधा हम मिलेगा जे कैसे पत्ता प्रयोग सकब सकरे हम नहीं लगे बातें हम यू लगे नीम बातें जैसे पता लीला पेयस बातें सकब सकर प्रयोग करे धतुरा बातें जहाँ जहाँ दिखिला जा जहाँ जहाँ खेत के से छोड़ल बातें सी ते कोई दूसरा पौधा उगेला उसका नाम कास्टो वो भी सकल कर प्रयोग करे तो सकल कर रुपाई करे जमे ओकर पत्ता मिले ना कोकलुश बातें तो हम यू लगे अनेक प्रकार के ऐसा ऐसा चीज बातें जो सकब सक करे अब जैसे बोली गौमूत्र में एंजाइम्स भी मिलेला तो दूसरे फासों से पौधा लोग के एदे कहला तो ये भी सकब सा दूसरा चीज प्रिपरेशन बातें जैसे कि जन हमने के सब्जी के छिलका वगैरह बातें या जो सब्जी नहीं प्रयोग करते हैं वो भी सकब सा में मिला के फिर मौते कर दी हयो पॉसिबिलिटी बातें
1: माने कि ढेर पॉसिबिलिटी बा जब हमने जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग पर माने कि सकब सा बोले जो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर हो उकरा प्रमोट करे था
0: हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि एक में एक चीज रासायनिक के प्रयोग नहीं होता अगर जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग के जन जन प्रिपरेशन के नाम जैसे बोला तो एक आध गो प्रिपरेशन के नाम देखो अस्त्र से समाप्त होला अस्त्र
1: जी
0: तो अस्त्र यानी कि वेपन मारे खातिन तो वही जब में पत्ता सब डाल देला तो पिलवा के मारे तो अस्त्र
1: जी जी सच्ची बात है तो 402-8085 पर सक बजे हमने के फोन करे अभी जितना चीज हमने सुन ली जा लाभताज जब ले है जो जीरो नेचुरल जो जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग के आगमन होल बाटे कोनो चैलेंजेस सामना करत हवन जा जन खेतीहर हुआ कई जना ये जन टेक्निकवा से वो लोग सैटिस्फाई हवन जा कोनो क्रिटिक्स मिलल बाटे कैसे
0: पहला देखिला सा जन किसान कैसे सैटिस्फाई बाटे हम हाल ही में हम उत्तरी इलाका में रेजो मोतालों के ऑफिसर इंचार्ज रही हमारे इलाका में दो जना ऐसा बा जो खेती बाड़ी करे लंजा और गाय के पोषण भी करे लंजा तो वो लोग जीवन मित्रम वगैरह वगैरह सब बनावे लंजा और प्रयोग करे लंजा खेत में और वो लोग के खेत जैसे बोला सा ऑर्गेनिक बीयू है तो अपन अपन बाहर के रासायनिक पदार्थ बिल्कुल प्रयोग नहीं करना चाहिए पर ही थोड़ा बोलते हैं कि हमारे क्षेत्र में जनरली तो प्रयोग होता है और खूबी से
1: जी
0: और लोग के जन खेती बाड़ी बा बढ़िया रहेला जन लोग की फसल रहेला बढ़िया रहेला
1: जब फसल की बात करें तो वक्त खाली जो सब्जी पर बातें जो फल फूल बातें एक इस्तेमाल होला एक में सीरियस कैसे कहाँ पर हो
0: सब चीज में सभ्यता प्रयोग करे किसी बोलने का लॉजिक बात है ना माटी के बढ़िया रखे के बाद मिखोब के से पोते से करे के बाद तब माटी में डलबा
1: जी
0: तब पत्ता सब वगैरह मिला के तब सब पेड़ पौधा पर डाले तब पिलुआ से लिपटे भी या बीमारी से भी लिपटे भी तो क्या सब्जी हो या सब्जी के पौधा हो या फल के पौधा हो या फूल के फर्क नहीं पड़ी
1: जी
0: दूसरा बात चैलेंज
1: जी
0: कठिनाई तो कठिनाई बातें काहे कि देखा है दो उदाहरण में जो बोली दोनों जना के वो लोग के अपन गाय बातें
1: जी
0: एक वो कठिनाई गाय जो बातें उतर देसी गाय नहीं है लेकिन फिर भी छोटा मात्रा में सब रहेला बिखो वगैरह तो काम चलावा तंचा आज देसी गाय मिला तो शायद और जस्टिस मन से काम करत आई एगो दूसरा चैलेंज बात है कि ई दू गो उदाहरण में और एक बार ये लोग की अपन गाय बातें अब हमने के देश में कितना किसान लोग बातें वो लोग लगे तो गाय ने बातें
1: कितना किसान जो पालक
0: पोषण किसान लगे तो गाय ने मानो तो ऐसा स्थिति में हम बोलती हमने के किसान भाई बहन लोग जो एक में कोनो प्रकार से खुद जन सा योजना आने के अपन अपन खेती बाड़ी में तो सेकेंड जहाँ हमने के लाइफ स्टॉक एक्सटेंशन के ऑफिसर लोग के वो लोग से संपर्क रखे तो वो लोग सेकेंड जहाँ बोले कहाँ कहाँ पर ही गाय के इलवाज बातें पशुपालन होता गाय के तो सकतन जाके वो लोग से भेंट करे तब वहाँ से गौमूत्र और गोबर मंगाए है एगो वापियोले में ऐसा ने गो छोटा सुन संस्था भादे का नाम ने बोला लेकिन वो प्रिपरेशन करके बेचेला भी
1: अच्छा
0: हाँ बेचेला भी गालों में डाल के बेचेला दूसरा चीज बोलती

0: देखा किसान अनेक प्रकार के बा कोनो बा कैसे बोला स्मॉल होल्डर सकेला तनी सुन माटी हुई कर सकेला आधा बीघा भर करत हुए अपन खेती बाड़ी सकेला एक बीघा में करत हुए लेकिन एक आध गो ऐसा किसान बाते जो सकेला पाँच बीघा छः बीघा वहाँ पर का मात्रा में और सकेला ये सब इतना ले माटी बाते अभी तक जाने ला कम करवा के भी प्रॉब्लम बाते तो सकेला पाँच बीघा हुई तो पाँच बीघा के ओकर देख रेख नहीं करत हुए अंजा सकेला तीन बीघा के रोपाई करते अंजा तो हम बोलती है एगो लोकाजों बाते एगो अपॉर्चुनिटी बाते तो ये लोग सकतन जा हवे एक बीघा में गाय के पोषण करे तब हवे एक बीघा वा जो बाते ओकर में जो फुगास बाते ओकर भी रोपाई करे तो हुए पर ही मिल जाए फुगास गाय में बाती गाय भी रही तो हर खेत में माचे उगाने भी मिली फिमिया द्वारा सक बजा गाय के गोबर और यूरिन के प्रयोग भी करे जिसको बजा नेचुरल फार्मिंग में
1: जी।
0: अब बात रही फोमाशों के तो फागे तो यहाँ पर ही बातें तो जे भी खुद अमल करे के जीव बजट नेचुरल फार्मिंग में तो सकन जा हमने के ऑफिसर से भेंट करे ये ट्रेनिंग के वो मांग करे तो हमने एक ऑर्गेनाइजे कर अब सा
1: तू तेरे पर रहेला जैसे बोला था अभी दुगो जना हवन वो ये जन नेचुरल बजट जीरो फार्मिंग करा था वन जा तो ढेर जना आवेलन पूछेलन पूछताछ करेलन कि ये कौन सी है जे लोग नहीं जानेलन हाँ मन बातें ढेर जना आवेलन
0: ढेर जना नहीं हम सच सच सच ऐसे रखा था ढेर जना नहीं क्योंकि ये जो जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग बा ढेर कोई जन भी नहीं करेला
1: जी
0: ढेर कोई जन भी नहीं करेगा बा तो और दूसर चीज बाकी जैसे बोलनी जितना किसान लोग बातें किसी हमारे जो क्षेत्र रहा दू जना बातें
1: जी
0: गाय रहल हमारे जो क्षेत्र बातें रहल हम ट्रांसफर करें हम इन्फॉर्मेशन यूनिट में है तो वहाँ के क्षेत्र में हमार लगभग 1200 किसान रहल
1: जी।
0: अब 1200 किसान में दो किसान लगे गाय रहल जो लोग करत वंजा दू गो गना हजार किसान में आज करब ओकर प्रतिशत तो कितना होला
1: ढेर हो जाना
0: नहीं दू गो एक हजार में
1: तो दू
0: सौ हो नहीं
1: जी हाँ
0: हाँ 10% के तो हो चाहे 200 रहे के तो 1% के चाहे 20 रहे के तो दू बाया पर जीरो जीरो बहुत कमती बात है तो वो खातिन ये एगो तोरा एगो एंजिकाशो देवेला कि 1200 किसान में दू गो खाली ओका लगे गाय बात है तो 1000 से ज़्यादा जो किसान बातें ओका लगे गाय ही नहीं बात तो कैसे कर में कैसे अमल करी कैसे कर में रुचि लाए तो नहीं करी ना पूजा तो ओका लगे नहीं बात है अब कहाँ से आनी तो हाई सब चैलेंज है तो लेकिन हमने के चला सोच बदले के कैसे आप एमबीसी द्वारा यहाँ पर बात के थे जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग पर जो किसान लगे गाय नहीं हुई तो सखियन जा जन जे ओकर इलवाज करा था ओकर से संपर्क रखे
1: तो जन जब जन सानू जो लाके खुल जा सी सब होला तो एकर बारे में बता ले
0: हां इस सब चैलेंज सब हां उठल रहल तो एकर समाधान खातिर अनेक योजना भी अभी तैयारी होता
1: जी
0: अभी सकेला एगो एक महीना में शायद अनेक प्रकार के फोमाशों भी शुरू हुई
1: अच्छा।
0: ट्रेनिंग शुरू हुई जरूर बजट नेचुरल फार्मिंग पर
1: जी इधर बढ़िया बात है
0: उत्साह बढ़ाए खाते
1: ये तो चाहेला हुई कि अच्छा हमने की बतावा शंभू जी हमने अभी 2026 में है जा हमने टेक्नोलॉजी संगे चलत है जा आगे अभी जितना जन कंपोजर बातें ग्रेजा बातें जो अभी जो जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग के ये जो टेक्निकवा बातें तोहर देखे में वो बदला था कि जितना चीज हबी लेके इस्तेमाल होते आवा था जो नैग्रेजा बातें वो ही इस्तेमाल करते जाइन जा
0: नहीं
1: चाहेला बदले के कैसे
0: बदले के देखा जैसे बोलनी जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग एविडेंस बेस्ड था
1: जी
0: साइंटिफिक एविडेंस बातें कि हो देसी गाय खासकर देसी गाय के ओकर गोबर में या फिर ओकर मूत्र में तो अनेक प्रकार के बेनिफिशियल बैक्टीरिया बाते तो ओके लेके सकब जा प्रयोग करे मिलावट वगैरह बनाए तब खेत में प्रयोग करब जा जब टेक्नोलॉजी के बात करा तो कुछ करे तो जा आजकल कैसे जो हो बैसिलस सुबचिलिस बोलनी
1: जी
0: तो आजकल बैसिलस सुबचिलिस के लैबोरेटरी में पिपले करके पैकेजिंग करके बेचा जाता बिचाला मॉरिशस में बिचाता
1: मैंने कि कोमेशालिजे
0: होता स्वेडोमोनास जनबा

0: bicata. John Tarabo ni kasi phosphate solubilizing bacteria bate, microbe bate, ubi bicata.
1: Ji.
0: Jesse gomut me nitrogen ke matra bada bate, ta khet me kama wela fertilization katin, ta udhar ta khad bate bicata, lamunyak wagera. Ta John chij zero budget natural farming me bate, bicata, John Gobar batit shayad compost bhi banila ta bichala. Lekin, shuru mein jaise bolni ja, zero budget natural farming mein hao namwa jural ba, zero budget. U kisan log mein ego swatantrata anilan ja, ki kisan John bate, bahar ke John aitan bate, ukar par nirbhar nahi padi kareke, kharidari nahi padeke. करके खरीदारी नहीं पड़ी करके ही पड़ी ओकर फर्क बा ना बड़का फर्क बाते एक गोबा ऐसा चीज के प्रयोग करा जो नेचुरल बाते दूसर बा प्रयोग करा अपन से खर्चा बचाओ
1: जी
0: नहीं पड़ी खर्चा करके तो टेक्नोलॉजी आज आई आज जुड़ा सा बाते जैसे बोला था एक बार टेक्नोलॉजी बाते लेकिन फिर से कुछ हो तो किसान के लोग के बोला जा देखा टेक्नोलॉजी है सब बातें जा खरीद के प्रयोग करा
1: सकल जाकरे
0: जेकर लगे एक को दूसर तरह के समाधान ने बातें गाय शायद दूर में बातें ओके पता था ढेर गाड़ी लेकर साउथ से नॉर्थ जाके पता नहीं ऐसे ऐसे कुछ होए कठिनाई होए तो उस तरीके से टेक्नोलॉजी के ओर जाए ऐसा जो पदार्थ के प्रयोग करे लेकिन एक और दूसर डिपेंडेंस में ढुकता ना जहाँ से कि डिपेंडेंट रहे तो हवे मांग कर रहता है कि जहाँ तक हो सके कितना हमने के कारो जन खेत बाते देखा तो ऐसे छोड़ल बाते हाँ घास से भरल बाते तो वो गाय डाल देता छाने रहत तक गाय डाल देता फिमिया मिला वगैरह सब मिला जीरो बजट करे खाते दूध भी मिल जात हाई भी करे तो हाई सब चला सोच विचार करे कि तब देखे कि आज कोई खोजी सच्चे के स्वतंत्र हो के कुछ पर निर्भर नहीं करे के तो जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग उ मार्ग
1: जी तो हमने के जाए के भगत लगभग हो गल बातें तोर से एक प्रश्न पूछती जब ई जो जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग है जो टेक्निक बात है जो पोजवा तैयार कर दे हव गौमूत्र और जो गोबर बाते जो नीम बाते जो बेसन ये सब बाते जब थला आज तैयार कर ले हव ये कितना दिन सकबा रखे
0: सही सकल जला रखे सबसे बेस्ट है सबसे अच्छा है आज जब तैयारी हो गल समय लगेगा जब तैयारी हो गल लेकिन आज सकबा जितना जल्दी हो सके तो सकबा प्रयोग करे तो अच्छा बात है क्योंकि सब चीज़ फ्रेश बात है ना लेकिन फैमौते है
1: हाँ।
0: तो फैमौते यानी सकबा रखे लेकिन रखे खातिन भुला के नहीं चलना कि चलना कर में हो खाना डाले के जब मैं बैक्टेरी जो बातें जो मिखोब बातें हाँ पिपले होते जाए क्योंकि आज है नहीं करबा तब पिपले नहीं हुई
1: कोई फायदा नहीं
0: हुई फायदा नहीं हुई तो एक आध वैसा किसान बातें हम जान ला या पता नहीं अभी लेकर रहता कि नहीं लेकिन रिपाय में वो किसान रहल जो नु बना के रखा था तब पिपले करता हाँ पिपले करता खाए भी सबके मैं डाली जब पिपले करी तो हवे लेके प्रयोग करी हवे लेके फिर से पिपले करी ऐसे करता हल
1: अच्छा तो चला हाजा परी ढेर चीज हमने जान ली जा जो जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग के बारे में तो जे तू हूँ चाहत हो अपन माटी के बरियाए बनाए खातिर तुहर जो प्लौताशों बातें तुहर जो खेती बाड़ी तू करे ला आजकल हमने सब कुछ देखा था जहाँ हमने पेस्टिसाइड जीरो पेस्टिसाइड पर बतलाई ली जा कि कैसे बिना रासायनिक पदार्थ इस्तेमाल करे तू सकबा जा अपन पैदावार अपन प्लौताशों के बरियाए बनाए खातिर काके जितना चीज प्लौतल जाला हमने खाला सा सब कोई खालन सा और जे हमने स्वस्थ रह जा हमने के देश स्वस्थ रही तो हमने आगे बढ़ब जा तो जाय से आगे जितना जना हबी तोहरा देखत हुवन सुनत हुवन तनी तनी समझल न जा जे कुछ फोन नंबर बाटे कहाँ पर फोन करे की बात जे कुछ जाने की बात
0: हमने के कोनो जन क्रॉप एक्सटेंशन के सब ऑफिस बा 16 गो दफ्तर बा मॉरिशस मॉरिशस में कोनो एक दफ्तर में जाया जा या फिर हमने लगे हेड ऑफिस में हेड ऑफिस नहीं यहाँ सेंट पियर के दफ्तर बा वहाँ पर ही सकबा जा वहाँ पर ही आए और वहाँ पर ही ज़्यादा जानकारी दे सा और एक चीज और एक में हम जोड़ देला कि जब जाने ला हबी जो समस्या चला था वेस्टर्न एशिया में इन्हें चला भुलाए कि हमने कितना निर्भर कहला सा बाहर के जो खाद बातें बाहर के जो पेस्टिसाइड बातें वगैरह वगैरह हमने के कितना डेवीज जो बातें एक में जाला और ई कारण से जब डेवीज

0: ला ता वही एक इन्फ्लेशन आने ला हमने के जो रुपया बाते डिवाल्यूए हो ला
1: जी
0: खाली यही से नहीं और चीज बात लेकिन ही वो एक कंट्रीब्यूशन है डिवाल्यूएशन में ता हमने एको हम मांग करती एको पैट्रियट की तरह जितना कोई सुना था जन किसान लोग बाते ता हम मांग करती आज हमने ऐसा ऐसा खाली है ये नहीं बात जो बजट नेचुरल फार्मिंग लेकिन ऐसा ऐसा योजना जो अपना जा जन बाहर के जन चीज बा एग्रीकल्चर इनपुट बाते ओकर पर निर्भर नहीं कर अब जा ता हमने के इकोनॉमी
1: बचत हो जाए मजबूत हुई सच्चे की तो जितना चीज अभी बोले हवा भाई शंभू जी हमने आशा करे थे जा ढेर जना समझ गए लन जा और कई जना समझे लन कोनो रास्ता खोजे लन नहीं जाने लन तो फागी बा है जा परी जे कुछ पूछे के रही जन सैफिया की मेन ऑफिस बातें 433 43 78 433 43 78 न 433 9350 ई कुछ जानकारी सोच जे पूछे की बातें हौजा परी तोहरा सब कुछ मिल जाए जो इन्फॉर्मेशन डेस्क बातें हौजा परी तो आज के चर्चा कार्यक्रम है जे परी समाप्त होला तो श्रीमान संजय शंभू बहुत बहुत धन्यवाद तोहरा सके आवत हफ्ता फिर से हमने मिला जा जी तो आप सब लोगन के बहुत बहुत धन्यवाद सचे टीम दने से नमस्ते प्रणाम।

0: स्टूडियो में आ गए थे, उनसे मिलते हैं, जानते हैं इस घंटे के संक्षिप्त समाचार। नमस्कार।
1: नमस्कार विकास, श्रोताओं को भी नमस्कार। मॉरिशस को येलोफिन ट्यूना मछली के अतिरिक्त 500 टन का कोटा प्राप्त हुआ है। 11 से 15 मई के बीच मालदीव्स में आयोजित इंडियन ओशन ट्यूना कमीशन की 30वीं बैठक के अंतर्गत मॉरिशस को 2027 के लिए येलोफिन ट्यूना की पकड़ के लिए निर्धारित कोटे में 500 टन की वृद्धि प्राप्त हुई है। ये मत्स्य उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है, जिससे रोजगार सृजन, निर्यात, बंदरगाह गतिविधियों और ब्लू इकोनॉमी के विकास को लाभ पहुंचने की उम्मीद है। साथ ही इलाकाई स्तर पर मत्स्य गतिविधियों का संचालन करने वाली संस्थाओं के अंतर्गत मॉरिशस की स्थिति और मजबूत होगी। भू राजनीतिक अनिश्चितताओं और वैश्विक सप्लाई

0: चेन पर मंडरा रहे खतरों को ध्यान में रखते हुए हिंद महासागरीय आयोग सदस्य देशों की ऊर्जा सुरक्षा मजबूत करने के लिए नई रणनीतियों पर विचार कर रहा है। संभावित विकल्पों में से एक है इलाकाई द्वीपों की आवश्यकता वाले महत्वपूर्ण उत्पादों के लिए एक संयुक्त खरीद प्रणाली की स्थापना करना, साथ ही IOC रिन्यूएबल ऊर्जा की तरफ संक्रमण को गति देने के वास्ते जापानी विशेषज्ञता की मांग कर रहा है। मध्य पूर्व में तनाव और वैश्विक तेल परिवहन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हॉर्मुज जलमार्ग को लेकर चल रही चिंताओं के बीच इन विकल्पों पर विचार किया जा रहा है। पिछले शुक्रवार को कुदा ऑथ सेंटर में एक गोष्ठी का आयोजन किया गया। इसके तहत इलाकाई स्तर पर ईंधन की आपूर्ति के साधन मजबूत करने के मुद्दे पर चर्चा की गई। बीच अथॉरिटी का कहना है कि मॉरिशस की सार्वजनिक समंदर तटों पर हर हफ्ते 350 से 400 टन कूड़ा इकट्ठा किया जाता है। ब्लैक रिवर इलाके के लिए चलाई जा रही संरक्षण कार्य योजना को अगले अगस्त महीने तक अंतिम रूप दे दिया जाएगा और इसके बाद उसे संबद्ध अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। परियोजना के सलाहकार और इंडियन ओशन आइलैंड्स फाउंडेशन के संस्थापक थियरी लेबोयटों कहते हैं कि ये अभियान देश के कई अन्य क्षेत्रों तक भी बढ़ाया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में चैंपियंस लीग के फाइनल्स में आर्सेनल के खिलाफ पेरिस सेंट जर्मेन की हुई जीत के बाद फ्रांस के कई इलाकों में हिंसा भड़की है। 780 से ज़्यादा लोगों को तोड़फोड़ मचाने के लिए गिरफ्तार किया गया है और 220 से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं। इस अस्थिरता के बीच राजधानी पेरिस में बस और रेल सेवा काफ़ी हद तक बाधित हुई। ये थी अब तक की खबरें, थोड़ी देर में शोक समाचार। रॉयल रोड रेन्यू मोगल गुडलैंड्स में 74 साल के 74 years old श्री इंदरदेव नातू जो राकेश नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, इनकी मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी आज दिन के एक बजे इनकी पत्नी श्रीमती किस्नावती नातू के मकान रॉयल रोड रेन्यू मोगल गुडलैंड से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बेलमो गुडलैंड्स की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 1 PM। अडोल्फ स्ट्रीट गोम्बा में 44 साल की 44 years old की मिसेस बीबी वाहिदा ममिन कोरिम्बकस, पिताजी नाम करिम्बकस जो वाहिदा नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, इंतकाल कर गई हैं। इनका जनाजा आज दिन के 10 बजे इनके शोहर मोहम्मद रियाद खान करिम्बकस की मकान अडोल्फ स्ट्रीट गोम्बा से उठाकर दफनाने के लिए गोम्बा का कब्रिस्तान ले जाया जा रहा है। क्वीन एलिजाबेथ रोड सिचियामिल थ्रियोले में 82 साल के 82 years old श्री हरिदेव तापसी जो गुरुजी तापसी नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, इनकी मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी आज दिन के ढाई बजे इनके मकान क्वीन एलिजाबेथ रोड से चैमिल थ्रियोले से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए थेमिनियस थ्रियोले की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे 2:30 PM। शोक में डूबे इन परिवारों के साथ हमारी गहरी संवेदना है।
1: NBC Play, NBC Radio.TV, NBC Radio.TV.

दिन के 10 बजकर 6 मिनट हुए हैं। नमस्कार श्रोताओं, एमबीसी रेडियो पर आप सबका अभिवादन है। आप लोग जुड़े हुए हैं रेडियो मॉरिशस के साथ। जी हां श्रोताओं, अब प्रस्तुत करने जा रहे हैं भक्ति धारा कार्यक्रम, और आज सोमवार का दिन है। श्रोताओं, भगवान का स्मरण जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। आप सुन रहे हैं हमारा विशेष भक्ति कार्यक्रम, जहां हर पल भक्ति का आनंद मिलेगा और भोले बाबा जी की कृपा से हर कठिनाई आसान हो जाती है। आज के इस भक्ति प्रोग्राम में तो चलिए लेते हैं गणेश जी का नाम और इस कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं।

10:18 हुए हैं। श्रोताओ, भक्ति वही दीपक है जो अंधकार में भी जीवन को रोशन करता है। प्रभु के मधुर नाम के साथ अपने दिन की शुरुआत करें। बस इसी के साथ हम बढ़ते हैं आगे और सुनते हैं मानस मंथन डॉक्टर वीनू जी अरुण के साथ।

0: मानस मंथन प्रस्तुत कर रही है डॉक्टर वीनु अरुण।
1: रामायण सेंटर की ओर से प्रस्तुत मानस मंथन कार्यक्रम में मैं वीनु अरुण आप सबका सादर वंदन और अभिनंदन करती हूँ। आज रामचरितमानस के बालकांड का दोहा 248 यानी 248 मैं आपकी सेवा में प्रस्तुत करने जा रही हूँ। गुरुजन लाज समाज बढ़ देखि सी अस कुचानी लागि बिलोकन सखिन तन रघुबीर हि उर आनी। गुरुजनों की लाज से और बहुत बड़े समाज को देखकर सीता जी सकुचा गईं। वे राम जी को हृदय में लाकर सखियों की ओर देखने लगीं। प्रसंग आपको याद होगा कि सीता जी ने रंगभूमि में प्रवेश किया है, उस स्थान पर प्रवेश किया है जहाँ धनुर्यज्ञ का आयोजन होने वाला है, जहाँ शिव जी का धनुष रखा है, राजा लोग एकत्रित हैं और उनमें से किसी को उस धनुष को उठाना है और फिर अपनी वीरता सिद्ध करके सीता जी को पत्नी रूप में प्राप्त करना है। सीता जी को उनकी सखियाँ साथ में लेकर के आ रही हैं मधुर गीत गाते हुए, और सीता जी के सौंदर्य का तो तुलसीदास जी ने अनुपम वर्णन करते हुए भी ये कहा कि कोई उनका वर्णन नहीं कर सकता क्योंकि वे दिव्य हैं, वे स्वयंभू हैं। जो इतना दिव्य है, अलौकिक है, उसके सौंदर्य के लिए इस संसार की वस्तुओं से भला तुलना की भी जाए तो कैसे की जाए। और ऐसी सीता जी जब प्रवेश करती हैं यज्ञशाला में और ऊंचे आसन पर आसीन राम जी को देखती हैं तो वे एक टक ही उन्हें निहारती रह जाती हैं। उन्हें लगता है कि वे बस राम जी को देखती ही रहें, देखती ही रहें। लेकिन

एक मर्यादा है और उस मर्यादा का पालन करना सीता जी अपना धर्म समझती हैं, क्योंकि सीता जी भी मर्यादा का ही एक रूप हैं। सीता जी ने जीवन में सदा मर्यादा का पालन किया और हमारे समाज में हर व्यक्ति के लिए कुछ मर्यादा, कुछ नियम बनाए गए हैं, कुछ ऐसे विधान किए गए हैं जिनका पालन करने से ही मनुष्य श्रेष्ठ बनता है और अपने आचरण की छाप दूसरों पर छोड़ पाता है। इतने लोग बैठे हुए हैं, गुरुजन बैठे हैं, पिता बैठे हैं, एक से एक बड़े राजा हैं, बड़े बड़े ऋषि पधारे हुए हैं, और ऐसे में एकाएक सीता जी को लगता है कि गुरुजन लाज समाज बढ़, देखी सी ऐसा कुछ आनी, लागी बिलो किन सखी नतन, रघु पी रही और आनी। कि गुरुजनों की लाज से इतने मेरे बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं, गुरु बैठे हुए हैं, ऋषि बैठे हैं, संत महात्मा बैठे हैं और इतने राजा लोग बैठे हैं, अयोध्या नगर के निवासी बैठे हुए हैं, मेरे बड़े लोग बैठे हैं, मेरे समकक्ष के लोग बैठे हैं, भला कैसे मैं सबके बीच राम जी को निहारती रहूं। जैसे ही ये बात सीता जी को याद आती है, उन्हें लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं अपने आचरण से कुछ गलत कर बैठूं। उनके मन में संकोच आ जाता है और वे तुरंत अपनी दृष्टि वहां से हटाती हैं और क्या करती हैं, राम जी को हृदय में लाकर सखियों की ओर देखने लगी। पहले उन्होंने कुछ पल राम जी को देखा और फिर उन्हें लगा कि नहीं, मैं इस तरह से उन्हें निहारूंगी तो सब समझ जाएंगे कि मैं राम जी पर अनुरक्त हूँ, मैंने राम जी को पति रूप में अपने हृदय में धारण कर रखा है, जो कि अच्छी बात नहीं होगी। मेरे मन की भावना मेरे मन तक ही सीमित रहे, मेरे मन के भाव दूसरों पर अभिव्यक्त ना हो। ये सोच करके सीता जी ने तुरंत वहाँ से दृष्टि हटाई, लेकिन किया क्या, राम जी को हृदय में बिठा लिया। बार बार तुलसीदास जी ने लिखा है कि पहले भी जब पुष्प वाटिका प्रसंग है, वहाँ भी उन्होंने कहा कि सीता जी ने क्या किया, पलकों से, आँखों के प्रवेश द्वार से उन्होंने राम जी को हृदय में बिठा लिया। वही अभी भी कर रही हैं कि इतने प्यार से, इतने प्रेम से उन्होंने राम जी को देखा और फिर आँखें बंद कर लीं, लगा कि उन्हें हृदय के आसन पर विराजमान कर लिया हो, और ऐसा करके फिर वे सखियों की ओर देखने लगी। यानी क्षण मात्र में ही उन्होंने राम जी को देखा, तुरंत उन्हें अपनी मर्यादा याद आई और उन्होंने अपनी दृष्टि वहाँ से हटाई और अपनी सखियों की ओर देखने लगी। राम रूप अरुसिय छवि देखे, नर नारी न परिहरी निमेशे, सोच ही सकल कहत सकुचाही, विधि सन विनय करही मन माही। राम जी का रूप और सीता जी की छवि देखकर स्त्री पुरुषों ने पलक मारना छोड़ दिया, सब एकटक उन्हीं की ओर देखने लगे। एक ओर राम जी का सौंदर्य, एक ओर सीता जी की छवि, दोनों की कोई तुलना नहीं, दोनों परम दिव्य, परम अलौकिक, परम चित्ताकर्षक, सभी उनकी ओर एकटक देखने लगे। और सोच ही सकल कहुत सकुचाही, विधि सन विनय करही मन माही। सब अपने मन में सोचते हैं लेकिन कैसे कहें, संकोच हो रहा है, वे अपने मन ही मन विधाता से एक विनय करते हैं। कहने का अर्थ कि सबके मन में राम जी और सीता जी को देखकर केवल एक ही अभिलाषा होती है कि इन दोनों का विवाह हो जाए तो कितना अच्छा, क्योंकि सीता जी के योग्य राम हैं और राम जी के योग्य सीता हैं। इतने राजा जो यहाँ एकत्रित हैं उनमें कोई भी सीता जी के योग्य नहीं है। इसलिए जितने भी शुभ चिंतक हैं, जितने भी सीता जी को स्नेह करने वाले लोग हैं, राम जी को स्नेह करने वाले लोग हैं, वे सब मन ही मन एक ही बात सोच रहे हैं और फिर वे अपने मन ही मन विधाता से विनय भी करने लगते हैं। पहले ये विचार मन में आया और वह विचार अब विनती के रूप में प्रकट हो रहा है। उनके मन की जो भावना है वो प्रार्थना बन के प्रस्फुटित हो रही है। क्या प्रार्थना है, हर विधि बेग जनक जड़ताई,
मति हमारी असि देही सुहाई, बिनु विचार पनु तज नर नाहू, सीय राम कर करे विवाहु। हे विधाता, जनक की मूढ़ता को शीघ्र हर लीजिए और हमारी ही जैसी सुंदर बुद्धि उन्हें भी दे दीजिए, जिससे बिना ही विचार किए राजा अपना प्रण छोड़कर सीता जी का विवाह राम जी से कर दें। इन दो चौपाइयों में कितनी गूढ़ बातें कही गई हैं। जो शुभ चिंतक लोग हैं, जो राम जी को भी प्रेम करते हैं, जो सीता जी को भी प्रेम करते हैं, जो दोनों की अलौकिक छवि को देखकर मन ही मन प्रसन्न हो रहे हैं, रीझ रहे हैं, उनके मन में एक ही कामना है कि काश सीता जी और राम जी का विवाह हो जाता। लेकिन फिर वे विचार करने लगे, ऐसा कैसे संभव है, ये तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि राजा ने एक प्रण ले रखा है, राजा जनक ने ये निश्चित करके रखा है कि जो शिवजी का धनुष तोड़ेगा उसी से सीता जी का विवाह होगा, और ये जो श्री राम यहाँ आए हैं वे तो अभी बालक की तरह हैं, अभी तो बिल्कुल किशोरावस्था में हैं, इतने कोमलांगी हैं, क्या वे इतना कठोर धनुष उठा पाएंगे? तो सबको लगता है कि जो देखने में राम जी का प्यारा सा रूप है, एकदम कोमल, एकदम लगता है कि उनमें वो पराक्रम ही नहीं है जो अन्य राजाओं में है, क्योंकि अन्य राजाओं की उम्र ज़्यादा है, बड़ा बड़ा उनका शरीर है, और राम जी तो बिल्कुल सुंदर हैं, इसलिए उन्हें लगता है कि भला राम जी इन राजाओं के सामने इस धनुष को कैसे उठा पाएंगे, इतने बड़े बड़े राजा आए हैं, वही धनुष उठा लेंगे, और यदि उठा लिया तो सीता जी का विवाह उनमें से किसी के साथ हो जाएगा, और यदि ऐसा हो गया तो कितना बड़ा अनर्थ हो जाएगा। इसलिए हे विधाता, एक ही विधि है कि किसी तरह राजा की बुद्धि को ही आप पलट दो, और राजा भी राम जी को देख करके अपना प्रण भूल जाएं और कह दें कि नहीं भाई, मैंने जो प्रतिज्ञा की थी मैं उससे हट रहा हूँ, मुझे नहीं पता था कि इतने सुंदर राजकुमार राम यहाँ उपस्थित होंगे और उनकी उपस्थिति में मेरा निर्णय बदल रहा है, मैं तो अब राम जी का विवाह और सीता जी का विवाह करा दूंगा, यानी अपनी पुत्री का विवाह राम से करने का मैंने निश्चित कर लिया है। ऐसा विचार जो शुभ चिंतक हैं वहाँ राम जी और सीता जी के, उनके मन में आ रहा है, और वे भगवान से मन ही मन विनती कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। जग उभल कहीं भाव सब काहू, हट कीन्हे अंतहुं उर दाहू, एहि लालसा मगन सब लोगु, बरु सांवरो जान की जोगु। संसार उन्हें भला कहेगा क्योंकि ये बात सब किसी को अच्छी लगती है, हट करने से अंत में भी हृदय जलेगा, सब लोग इसी लालसा में मग्न हो रहे हैं कि जानकी जी के योग्य वर ये सांवला राजकुमार ही है। सबके मन में तरह तरह के विचार चल रहे हैं, लोग कह रहे हैं, यानी जो शुभचिंतक हैं, जो राजा वहाँ पे प्रतिद्वंद्वी बन के आए हैं, वे ऐसा नहीं सोच रहे हैं, उनके मन में तो यही भावना है कि अरे वाह, इतनी सुंदर सीता जी यदि हमें पत्नी रूप में मिल जाए तो हमारा जीवन धन्य हो उठेगा। उनकी बात नहीं, ऐसे लोग जो राम जी और सीता जी के रूप को देखकर उन्हें चाहते हैं कि वे पति पत्नी बन जाएं, ऐसे लोगों के मन के भावों का यहाँ वर्णन हो रहा है, और वे लोग विधाता से प्रार्थना कर रहे हैं कि यदि राजा जनक ने अपना प्रण बदल दिया, यदि राजा जनक ने ये कह दिया कि मुझे धनुर्यज्ञ नहीं करवाना है, मुझे धनुष नहीं उठवाना है, मैं तो यूं ही राम जी को देख करके अपना निर्णय बदल रहा हूं और सीता का विवाह मैं राम जी से करने जा रहा हूं, तो यदि ये बात राजा जनक ने कह दी तो संसार उनकी प्रशंसा करेगा, उन्हें ज्ञानी, उन्हें बुद्धिमान कहेगा, क्योंकि यही बात उचित है, यही बात सबके मन को भा भी रही है। और यदि राजा जनक ने हट किया, यानी जिस प्रण को उन्होंने कर लिया है उसी पे वे अडिग रहे, अपने प्रण पर वे अडिग रहे, यानी अपने प्रण से यदि वे

डिगे नहीं, यदि उन्होंने अपना हठ नहीं त्यागा तो अंत में सबके हृदय को पीड़ा होगी, सबके हृदय में ये पीड़ा उत्पन्न होगी कि राम और सीता जैसी सुंदर जोड़ी नहीं बन सकी। सब लोग इसी लालसा में मग्न हो रहे हैं कि जानकी जी के योग्य कोई वर है तो ये सांवला राजकुमार है। तो सब अपने मन में इस तरह के विचार कर रहे हैं, विचार

तब बंदी जन जनक बुलाए, बिरदावली कहत चली आए, कह नृप जाई कहु पन मोरा, चले भाट ही हर अशुन थोरा। तब राजा जनक ने बंदी जनों को बुलाया, वे बिरदावली गाते हुए चले आए। राजा ने कहा, जाकर मेरा प्रण सबसे कहो, भाट चले। उनके हृदय में कम आनंद नहीं था। आइए इसे जरा समझें। अब सब लोग उपस्थित हो गए हैं, जितने राजाओं को बुलाया गया था इस आयोजन में भाग लेने के लिए, वे सब राजा एकत्रित हो गए हैं। और सबसे अंत में जो वीआईपी होते हैं वो आते हैं। तो यहाँ सबसे बड़ा वीआईपी कौन था, सबसे प्रमुख अतिथि कौन था? वे थे ऋषि विश्वामित्र। इसलिए ऋषि विश्वामित्र भी आ गए हैं राम और लक्ष्मण को लेकर, और उसके बाद सीता जी भी आ गईं। तो यानी अब पूरा आयोजन बिल्कुल आरंभ होने वाला है। सारी तैयारी हो गई, जिसे जिसे आना था आ गए, जहाँ जहाँ जिसे बैठना था बैठ गए, सब कुछ हो गया। अब केवल धनुर्यज्ञ आरंभ होने वाला है। यानी जैसे हम कहते हैं कि कार्यक्रम आरंभ होने वाला है, कार्यक्रम के पहले बहुत सी तैयारी करनी पड़ती है। हम कोई कार्यक्रम करते हैं तो पहले हॉल को सजाते हैं, लोगों को आमंत्रित करते हैं, सारी व्यवस्था देखते हैं कि क्या क्या चाहिए, पूरी लिस्ट बनती है, चेकलिस्ट बनती है, एक एक चीज़ का इंतज़ाम एक एक लोगों को दिया जाता है कि भाई तुम ये देखो तुम ये देखो। फिर अंत में ये देखा जाता है कि सब ने अपना अपना कर्तव्य पूरा किया या नहीं, सारी तैयारी विधिवत हो गई या नहीं। और फिर वो समय आता है जब कार्यक्रम आरंभ होने वाला है, और उस समय एक एक करके अतिथि आते हैं, जिनको बिठाने का दायित्व दिया गया है, वे जहां उनकी सीट है उसके ऊपर उन्हें बिठाते हैं। और अंत में जो सबसे विशिष्ट अतिथि होते हैं वे आते हैं और उनका स्वागत सत्कार होता है, उन्हें उनका उचित आसन दिया जाता है, और उसके बाद अब कार्यक्रम आरंभ होता है। तो अब कार्यक्रम आरंभ होने जा रहा है। ये अभी तक जो कुछ था वो पृष्ठभूमि थी, वो अभी कार्यक्रम के आरंभ के पहले की जो तैयारियां चल रही थी उनका वर्णन था। और अब कार्यक्रम आरंभ हो रहा है। कैसे आरंभ हो रहा है? तो उस समय ये प्रथा थी कि राजा जनक के बुलाने से सब लोग आए हैं, राजा जनक के पास आए हैं सब लोग। तो जो राजा जनक के भाट हैं, भाट मतलब वो कवि लोग, उन्हें हम कवि कह सकते हैं, यानी ऐसे लोग जिन्हें इस बात के लिए रखा गया है, जिनका ये कर्तव्य है, जिनका ये उत्तरदायित्व है कि वे राजा जनक के वंश का पूरा वर्णन सभी उपस्थित लोगों के समक्ष और विशेष रूप से राजाओं के समक्ष करें। यदि आज के संदर्भ में हम इस बात को समझना चाहें तो कुछ शायद इस तरह समझा जा सकता है कि आज जब हम कार्यक्रम आरंभ करते हैं तो एक एमसी होता है, मास्टर ऑफ सेरेमनी, वो खड़े होकर के कार्यक्रम की थोड़ी भूमिका देता है कि ये कार्यक्रम इस उपलक्ष्य में आयोजित किया गया है और इसमें ये होगा, थोड़ी सी पृष्ठभूमि, थोड़ा सा परिचय कार्यक्रम का देता है। और उसके बाद जहाँ पे ये कार्यक्रम है उसका जो मुखिया होता है वो आकर सबका स्वागत करता है और कुछ और विस्तार से उस कार्यक्रम के बारे में बताया जाता है, या वो संस्था जो कार्य करती है उसकी थोड़ी सी झलक वहाँ पर प्रस्तुत की जाती है। तो आज ये होता है, और ये तो वर्णन हो रहा है राजा के यहाँ का। तो उस समय यही परंपरा थी कि जब इस तरह के आयोजन होते थे, यानी जैसे धनुर्यज्ञ होने वाला है जहाँ पर स्वयंवर होते थे, हम इसे ऐसे समझ सकते हैं कि स्वयंवर है, तो स्वयंवर में जो राजा लोग अलग अलग देशों से आए हैं उन्हें बताया जाएगा कि ये जो लड़की है जिस कन्या का स्वयंवर होने वाला है वो किस वंश की है, उसके वंश का पूरा परिचय दिया जाता है। कम से कम 6 या 7 जनरेशन पीछे का परिचय दिया जाता है कि इस वंश की है, इसके दादा ये थे, इनके पिताजी ये थे, परदादा ये थे, परदादा के भी पिताजी ये थे, इस तरह से पूरा परिचय दिया जाता है। और वो परिचय कौन देता है? जिन्हें इस कार्य के लिए

रखा जाता है, और ऐसे लोगों को उस समय भाट कहा जाता था, बंदी जन कहा जाता था, जो एक तरह से वंदना करते थे, जो राजा की प्रशंसा करते थे कि ये राजा कोई साधारण राजा नहीं है, जो राजा के यश का वर्णन करते थे, राजा की श्रेष्ठता का वर्णन करते थे, राजा के वंश का वर्णन करते थे। तो ऐसे जिन लोगों को ये दायित्व दिया जाता था, ये भूमिका दी जाती थी, ऐसे लोगों को या तो बंदीजन या भाट कहा जाता था। तो राजा जनक ने अब उनको बुलाया, क्योंकि कार्यक्रम आरंभ करना है। पहली कड़ी क्या है कि ये बंदीजन जाकर के सभी राजाओं के समक्ष राजा जनक के वंश की कीर्ति का गान करेंगे। राजा जनक कौन है, उनकी उपलब्धियां क्या हैं, उनका पराक्रम क्या है, उनका यश क्या है, क्यों आप लोगों को बुलाया गया है, क्यों आप राजा जनक से अपना रिश्ता जोड़ना चाहेंगे। क्योंकि यदि राजा जनक कोई साधारण राजा हो तो शायद आप उनके परिवार से अपना संबंध नहीं जोड़ना चाहेंगे, लेकिन वो कितने श्रेष्ठ हैं ये बताने के लिए ये जो बंदी जन हैं वो राजा की विरुदावली यानी उनकी कीर्ति गाते हुए अब चले, क्योंकि राजा जनक ने कहा अब आरंभ करो। और राजा ने उनसे कहा, जाकर मेरा प्रण सबसे कहो। दो बातें कहीं कि एक तो विरुदावली का गान करो जो कि उस समय की परंपरा थी, और दूसरी बात सभी राजाओं से जाकर मेरा प्रण बता दो, ताकि बाद में कोई गलत फहमी ना हो। पहले तो बता दिया गया था, जब निमंत्रण भेजा गया था तब ये बात बता दी गई थी, लेकिन एक बार पुनः स्मरण करा दिया जाए, क्योंकि सीता जी को देखकर सब उनसे विवाह करना चाहेंगे। इसलिए आवश्यक है कि उस प्रण को एक बार पुनः सबको स्मरण कराया जाए कि वही विवाह कर पाएगा जो शिव जी का धनुष उठा पाने में समर्थ हो सकेगा। और भाट चले, उनके हृदय में कम आनंद नहीं था। भाट मतलब वही जो बंदी हैं, बंदी जन हैं, वे अब वहाँ सभा भवन में आकर के चल रहे हैं, क्योंकि उस समय माइक तो नहीं होता था, तो इसलिए इतनी तेज़ आवाज़ में तो नहीं वे गा सकते थे, तो गाते हुए एक पूरा चक्कर लगा रहे हैं वे। बोले बंदी बचन बर सुनहु सकल महिपाल, पन विदेह कर कहाँ ही हम भुजा उठाई विशाल। क्या कहते हैं भाट? तो भाटों ने कहा, हे पृथ्वी का पालन करने वाले सभी राजागण सुनिए, हम अपनी भुजा उठाकर जनक जी का विशाल प्रण कहते हैं। याद दिला रहे हैं ये बंदी जन कि आप सब यहाँ एकत्रित हुए हैं, बड़े बड़े आप राजा महाराजा हैं, आप ही लोग पृथ्वी का पालन करते हैं, क्योंकि भूपाल कहते हैं राजा को। राजा का एक नाम होता है भूपाल, भू मैंने पृथ्वी, पाल मैंने पालन करने वाला। राजा का कर्तव्य है पृथ्वी का पालन करना, यानी पृथ्वी पर जो भी है उसका संरक्षण हो, चाहे वो प्रकृति हो, वे पशु पक्षी हों, वे मनुष्य हों, सबका पालन पोषण करना ठीक प्रकार से। तो इसलिए राजा को भूपति कहा जाता था, भूपाल कहा जाता था। तो और यहाँ पे महिपाल, मही मैंने भी पृथ्वी, पृथ्वी का पालन करने वाले जितने राजा हैं उन सबको भाटों ने कहा कि हम अपनी भुजा उठा करके यानी प्रण कर करके राजा जनक का प्रण आपके सामने रख रहे हैं। भुजा उठा करके मतलब एकदम दृढ़ता पूर्वक अपनी बात आपके सामने रख रहे हैं, और बात क्या है, राजा जनक का प्रण हम दोहरा रहे हैं। और श्रोताओं आइए एक भजन सुने और उसी के साथ आज के कार्यक्रम को विराम दें। धन्यवाद, नमस्कार।

10:50 हुए हैं श्रोताओं, आपने सुना भक्ति धारा कार्यक्रम। जहाँ श्रद्धा है वहाँ शक्ति है, जहाँ भक्ति है वहाँ भगवान का वास है। तो श्रोताओं, आपने साथ दिया, इसके लिए बहुत धन्यवाद। आप सभी को प्रेम भरा नमस्कार। उषा की ओर से शुभ दिन।

0: आदित्य आगे स्टूडियो में उनसे मिलते हैं, जानते हैं इस घंटे के संक्षिप्त समाचार। नमस्कार।
1: नमस्कार विकास, श्रोताओं को भी नमस्कार। भू राजनीतिक अनिश्चितताओं और वैश्विक सप्लाई चेन पर मंडरा रहे खतरों को ध्यान में रखते हुए हिंद महासागरीय आयोग सदस्य देशों की ऊर्जा सुरक्षा मजबूत करने के लिए नई रणनीतियों पर विचार कर रहा है। संभावित विकल्पों में से एक है इलाकाई द्वीपों की आवश्यकता वाले महत्वपूर्ण उत्पादों के लिए एक संयुक्त खरीद प्रणाली की स्थापना करना। साथ ही IOC रिन्यूएबल ऊर्जा की तरफ संक्रमण को गति देने के वास्ते जापानी विशेषज्ञता की मांग कर रहा है। मध्य पूर्व में तनाव और वैश्विक तेल परिवहन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हॉर्मुज जलमार्ग को लेकर चल रही चिंताओं के बीच इन विकल्पों पर विचार किया जा रहा है। पिछले शुक्रवार

0: कुकुदाओं सेंटर में एक गोष्ठी का आयोजन किया गया। इसके तहत इलाकाई स्तर पर ईंधन की आपूर्ति के साधन मजबूत करने के मुद्दे पर भी चर्चा की गई। कुदा आउट सेंटर में आयोजित एक संगोष्ठी के दौरान 20 साल से ज्यादा की उम्र के विकलांग लोगों की देखभाल से जुड़ी डे केयर फैसिलिटीज की चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित किया गया। मौजूद हुए गैर सरकारी संगठनों, देखभाल करने वाले लोगों और अधिकारियों ने ज्यादा समावेशी, मानवीय और आत्मनिर्भरता उन्मुख समाज के हक में प्रस्ताव दिए। मकसद है दिव्यांग लोगों को समाज में बेहतर जगह दिलाना और उन्हें नौकरी की ज्यादा संभावनाएं उपलब्ध कराना। यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी में पिछले हफ्ते स्टूडेंट एंटरप्रेन्योरशिप नेशनल स्टेटस प्रोग्राम का फाइनल लगा। ये पहल तृतीय शिक्षा मंत्रालय की रही। मकसद रहा छात्रों में नवाचार और ठेकेदारी के प्रति दिलचस्पी प्रोत्साहित करना। बड़ी संख्या में छात्रों ने इस प्रथम संस्करण में भाग लिया। 3 बेहतरीन परियोजनाओं को पुरस्कृत किया गया। और अंतर्राष्ट्रीय खबरों में, म्यांमार के एक गांव में कल पेश आए एक भयानक धमाके में कम से कम 55 लोगों की मौत हुई है और दर्जनों अन्य घायल बताए गए हैं। ये गांव चीन की सीमा से सटा एक विवादास्पद इलाका है। मरने वालों में 25 महिलाएं और 30 पुरुष शामिल हैं, जो ज्यादातर खानों में काम करने वाले कर्मचारी हैं। इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त है। थोड़ी देर में शोक समाचार। क्वीन एलिजाबेथ रोड से चैमिल थयोली में 82 साल के 82 years old श्री हरिदेव तापसी जो गुरुजी तापसी नाम से ज्यादा जाने जाते थे, इनकी मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी आज दिन के 2:30 बजे इनके मकान क्वीन एलिजाबेथ रोड से चैमिल थयोली से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए टेमिनिस थयोली की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टू डिया 2:30 PM। शोक में डूबे इस परिवार के साथ हमारी गहरी संवेदना है।
1: शम्मे फरोजा

सदकुल्लाहु लज़ीम। अभी आप समात फरमा रहे थे सूरह अत्तूर की तिलावत। ऐ पाक परवरदिगार, हमें रोज़ाना कुरान शरीफ की तिलावत की तौफीक अता फरमा, और जिस जिस ने इस तिलावत कुरान पाक में हिस्सा लिया उन सबको इसका सवाब दे। आमीन या रब्बुल आलमीन।

0: मौजूद सामीन, इस वक्त स्टूडियो की घड़ी में 11:22 हो चुके हैं। पीर का दिन है, जून की पहली तारीख है और माह ज़िलहज की आज 14 तारीख है। ताखीर ना करते हुए अब आप समात फरमाएंगे मुबल्लिग़े दावत इस्लामी क़ारी अब्दुल माजिद अत्तारी साहब की ज़ुबानी एक बयान, आइए समात फरमाइए।
1: अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन الصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله। अल्लाह पाक के प्यारे और आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का फ़रमान है, अल्लाह पाक का कसरत से ज़िक्र करना और मुझ पर दुरूद शरीफ पढ़ना गुरबत दूर करता है। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। क़ाल अल्लाह तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल करीम أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين। سيزيم سپارا سورة مائدة آيات 27। तर्जमा कुरान कंजुल इरफान। जब दोनों ने एक एक कुर्बानी पेश की तो इनमें से एक की तरफ से कबूल कर ली गई और दूसरे की तरफ से कबूल ना की गई, तो दूसरा बोला मैं ज़रूर तुझे कत्ल कर दूंगा। पहले ने कहा अल्लाह सिर्फ डरने वालों से कबूल फरमाता है। प्यारे प्यारे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और सामईन कराम, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, सुन्नत इब्राहिमी अदा की गई, क़ुरबानी के अय्याम आए और खुश नसीब लोगों ने क़ुरबानी की सआदत हासिल की। प्यारे प्यारे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, क़ुरबानी का जो फ़लसफ़ा, ये हज़रत सैयदुना इब्राहिम अलैहि सलातु वसलाम और उनके साहबजादे हज़रत सैयदुना इस्माईल अलैहि सलातु वसलाम का एक वाक़या है। लेकिन जो मैंने आयत करीमा बयान के शुरू में तिलावत करने की सआदत हासिल की, छठे सिपारे सूरह माईदा की 27वीं आयत में, इसमें हाबिल और काबिल की क़ुरबानी का ज़िक्र हुआ है। ये दोनों हज़रत आदम अलैहि सलाम के बेटे थे। काबिल पहला बदनसीब है जिसने इंसानों की तारीख का सबसे पहला गुनाह किया, यही पहला मुशरिक भी है, पहला कातिल भी है। हज़रत हाबिल जो नेक इंसान थे, इनका और बदनसीब काबिल का किसी बात में झगड़ा था। इस झगड़े का हल हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने ये निकाला कि फरमाया तुम दोनों कुर्बानी करो, जिसकी

कुर्बानी कबूल हो गई वो दुरुस्त होगा, जिसकी कबूल ना हुई वो गलती पर होगा। इस दौर में दस्तूर ये था कि जिसकी कुर्बानी कबूल होती आसमान से एक आग उतर कर इसको खा जाती, जो कबूल ना होती उसे छोड़ देती थी। चुनाचे हज़रत हाबील और बदनसीब काबिल दोनों ने कुर्बानी की। हज़रत हाबील ने अल्लाह पाक की रीज़ा पाने के लिए बड़ी खुश दिली के साथ एक बकरी ज़बह की, और काबिल चूँकि बद बातिन था, इसका दिल पहले ही सिया था, चुनाचे इसने मरे दिल से कुछ गंदुम राह खुदा में दे दी। आसमान से आग उतरी, उसने हज़रत हाबिल की कुर्बानी को खा लिया, मगर काबिल की दी गई गंदुम को यूं ही छोड़ दिया, यानी हज़रत हाबिल की कुर्बानी कबूल हो गई। काबिल जो पहले ही दुश्मनी की आग में जल रहा था, ये देखकर और भी आग बगूला, यानी गुस्से में लाल पीला हो गया। अब तो इसने गुस्से में आकर हज़रत हाबिल रहमतुल्लाहि ताला अलैह को कत्ल ही कर डाला। ये इस ज़मीन पर सबसे पहला कत्ल था। इसके बाद काबिल पहाड़ों पर चला गया और शिर्क में मुबतला हो गया। ये वाकया कुरान करीम में यूं बयान हुआ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वत्लु अलैहिम नबअ इब्नै आदम बिलहक इज़ क़र्रबा क़ुर्बानन फ़तुक़ुब्बिला मिन अहदिहिमा वलम युतक़ब्बल मिनल आख़र क़ाल लअक़्तुलन्नक قال انما يتقبل الله من المتقين। तर्जमा कुरान कंजुल इरफान, और ए हबीब इन्हें आदम के दो बेटों की सच्ची खबर पढ़कर सुनाओ, जब दोनों ने एक एक कुर्बानी पेश की तो इनमें से एक की तरफ से कबूल कर ली गई और दूसरी की तरफ से कबूल ना की गई, तो दूसरा बोला मैं ज़रूर तुझे कत्ल करूँगा। पहले ने कहा अल्लाह डरने वालों से कबूल फरमाता है। प्यारे प्यारे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, इस वाकये में हमारे लिए कई सबक हैं। सबसे पहले तो ये देखिए, हमारे सामने कुर्बानी करने वाले दो शख्स हैं, नंबर एक हज़रत हाबिल, नंबर दो बदनसीब काबिल। लेकिन काबिल की कुर्बानी कबूल नहीं हुई, इसकी कुर्बानी रद्द कर दी गई। पता चला महज कुर्बानी कर लेना काफ़ी नहीं, इसकी कबूलियत की फ़िक्र भी बहुत ज़रूरी है। मुसलमानों के चौथे खलीफा हज़रत अली अल-मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, कूनु बिकबूलिल अमली अशद्द हम्मा मिनकुम बिल अमली, अमल करने से ज़्यादा अमल कबूल होने की फ़िक्र किया करो। हज़रत फ़ुदाला बिन उबैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, अगर मुझे मालूम हो जाए कि मेरा एक ज़र्रा बराबर अमल कबूल हो गया तो ये मुझे दुनिया और जो कुछ दुनिया में है इस सब से ज़्यादा महबूब यानी प्यारा है। प्यारे प्यारे मीठे मीठे इस्लामी भाई और सामईन किराम, वाकई कबूलियत बहुत ज़रूरी है। अगर हमारी एक भी नेकी कबूल हो गई तो इंशाअल्लाहुल करीम इसी सदक़े बख्शिश का सामान हो जाएगा। अगर कबूल ना हुई, हमारी नमाजें, हमारे रोज़े, हमारी कुर्बानियाँ हमारे मुँह पर मार दी गईं, रद्द कर दी गईं, तो यकीनन यकीन मानिए रोज़े क़यामत इंतहाई शर्मिंदगी उठानी पड़ जाएगी। अल्लाह करीम कुरान करीम में फ़रमाता है, कुल हल नुनब्बिउकुम बिल अक्सरीन अअमाला, तर्जमा कुरान कंजुल इरफान, तुम फरमाओ क्या हम तुम्हें बता दें कि सबसे ज़्यादा नक्स अमल करने वाले कौन हैं, यानी नक्स अमल वाले कौन हैं। जो नमाज़ें नहीं पढ़ता वो भी नुकसान में है, जो रोज़े नहीं रखता वो भी नुकसान में है, जो फ़र्ज़ होने के बावजूद हज नहीं करता वो भी नुकसान में है, जो वाजिब कुर्बानी भी अदा नहीं करता वो भी नुकसान में है। मगर यहाँ फरमाया गया क्या सबसे ज़्यादा नुकसान में जो होगा इसके मुताल्लिक खबर ना दी जाए, यानी कोई है जो बेनमाजी रोज़े कज़ा करने वाले गुनाहगार से भी ज़्यादा नुकसान में हैं, वो कौन है? फरमाया अल्लज़ीना ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا, तर्जमा कुरान कंज़ुल इरफान, वो लोग जिनकी सारी कोशिश दुनिया की ज़िंदगी में बर्बाद हो गई, हालांकि वो ये गुमान कर रहे थे कि वो अच्छा काम कर रहे हैं।

अल्लाहु अकबर, वो शख्स जो समझता रहा कि मैं तो बड़ी नेकियां कर रहा हूँ, मुशक्क़तें भी उठाता रहा, नमाज़ें भी पढ़ता रहा, रोज़े भी रखता रहा, हज भी करता रहा, लाखों लाख खर्च करके महंगे से महंगे जानवर खरीद कर कुर्बानियाँ भी करता रहा। इसका गुमान था कि मेरे पास तो बहुत नेकियाँ जमा हो चुकी हैं, मगर जब मैदान क़ियामत में पहुँचेगा तो मालूम होगा कि ये सब नेकियाँ तो बर्बाद हो गईं। इसमें तो दिखलावा भी था,

अब इसे शर्मिंदगी होगी, अब ये हसरत से हाथ मलता रह जाएगा। फरमाए ये है वो शख्स जो सबसे ज्यादा नुकसान में है कि अमल करके भी बख्शिश से महरूम रह गया। प्यारे प्यारे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और सामईन किराम, कबूलियत की फिक्र बहुत ज़रूरी है, वरना जानवर तो क्या अपना गला कटवाना भी अल्लाह पाक की बारगाह में रद्द हो सकता है। एक दिलों को तड़पा देने वाला वाकया सुनिए। साहबी रसूल हज़रत सहल बिन सअद रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, एक मरतबा किसी गजबे का मौका था, गैर मुस्लिमों के साथ लड़ाई चल रही थी। मैंने एक शख्स को देखा, बहुत बहादुरी के साथ लड़ रहा था। जिस गैर मुस्लिम को देखता उस पर झपट पड़ता, जहन्नम रसीद कर देता। इसका जज्बा बहादुरी, वाह, राह खुदा में कुर्बान करने की लगन और जान कुर्बान करने की लगन और मेहनत देखकर सहाबा कराम अली रिदवान को इस पर बहुत रश्क आया। कहने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज जो अजर फला बहादुर कमाएगा कोई इसके बराबर नहीं पहुंच पाएगा। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये सुना तो फरमाया, इन्नहु मिन अहलिन्नार, लेकिन वो तो जहन्नमी है। अल्लाहु अकबर। आप अंदाज़ा कीजिए, सहाबा किराम अली मुर्दवान, जिनका एक एक लम्हा नेकियों में गुजरता था, जब वलियों से बड़े औलिया किराम जिसके अमल पर रश कर रहे हैं, आप सोचिए इसका अमल कैसा होगा। मगर अफसोस, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान हक़ से क्या अदा हुआ, फरमाया वो तो जहन्नमी है। सहाबा किराम अली रिदवान तो हैरान रह गए। कहा, अय्युना मिन अहलिल जन्नती इनकान हादा मिन अहलिन नार, यानी ये राय खुदा में इस तरह बहादुरी से लड़ने वाला भी अगर जहन्नमी है तो फिर हम में से जन्नती हो कौन सकता है। चूँकि ज़बान रिसालत से अदा हो गया था ये जहन्नमी है, सहाबा किराम अली रिदवान के ईमान की तो मिसाल नहीं दी जा सकती। चुनाचे एक सहाबी ने सोचा कि ये शख्स है तो जहन्नमी, मगर ये तो देखो कि ये करता क्या है। चुनाचे वो इस बहादुर के पीछे लग गए। वो गैर मुस्लिमों से लड़ाई कर रहा था, ये जब छुप कर इसके पीछे पीछे थे, एक एक कदम इस पर निगाह रखते रहे। आखिर जब वो जान की बाजी हार गया तो दौड़ते हुए बारगाह रिसालत में हाजिर हुआ, अर्ज़ की, अशहदु अन्नका रसूलुल्लाह, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने जो गैब की खबर इरशाद फरमाई थी वो बिल्कुल सच निकली, लिहाजा मैं गवाही देता हूँ कि आप अल्लाह पाक के सच्चे रसूल हैं। सहाबा किराम अली रिदवान ने पूछा, मामला क्या हुआ। कहा, मैं इस बहादुर के साथ साथ रहा, वो जंग में बड़ी बहादुरी से लड़ता रहा, आखिर इसे ज़ख्म आए, वो अपने ज़ख्मों का दर्द बर्दाश्त ना कर सका और ख़ुदकुशी कर मर गया। ये सुनकर प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बाज़ दफ़ा आदमी लोगों के ख्याल के मुताबिक जन्नतियों वाले अमल कर रहा होता है मगर वो जहन्नमी होता है, और बाज़ दफ़ा लोगों के ख्याल के मुताबिक जहन्नमियों वाले अमल कर रहा होता है मगर वो जन्नती होता है। प्यारे प्यारे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, हमें मालूम हुआ कि हमें अल्लाह तबारक व ताला की रज़ा के लिए अमल करने हैं। हमें इसकी फ़िक्र करनी है कि अमल हमारा कबूल हुआ या नहीं। अल्लाह पाक कुरान मजीद में फरमाता है, इन्नमा यतकब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तकीन। तर्जमा कुरान कंजुल इरफान, अल्लाह सिर्फ़ डरने वालों से कबूल फरमाता है। पता चला कुर्बानी को कबूलियत के लायक बनाने के लिए तकवा इख्तियार करना ज़रूरी है। कोई भी काम हो, कुर्बानी हो या कोई भी नेक काम हो, उसमें तकवा, प्यारे प्यारे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अल्लाह तबारक व ताला कुरान करीम में फरमाता है, लन यनालल्लाह लुहूमुहा, अल्लाह के यहाँ हरगिज़ ना इनके गोश पहुँचेंगे, यानी वो चीज़ जो कबूलियत का मेयार नहीं है। इसके लिए तो हम इतने सारे एहतमाम करते हैं, अब वो चीज़ जो कबूलियत का मेयार है जिसके मुतालिक फरमाया गया, वलाकिन यनालुहु तक्वा मिनकुम, अलबत्ता तुम्हारी तरफ से परहेजगारी उसकी बारगाह तक पहुँचती है, यानी तकवा, इसके मुतालिक हम क्या एहतमाम करते हैं। प्यारे प्यारे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, हमें इसकी तरफ तवज्जो देनी है कि कबूलियत की राह में जो रुकावटें हैं, जो बातें, उनकी तरफ तवज्जो करें, हमारी कुर्बानी और दीगर नेक काम कबूल हो जाएं। इसके लिए उन रुकावटों से बचना बहुत ज़रूरी है। चंद रुकावटें सुनिए। कुरान करीम में मुनाफिकों से मुतालिक इरशाद हुआ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वमा मनअहुम अन तुक्बल मिनहुम नफकातुहुम इल्ला अन्नहुम कफरू بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا

0: इल्ला वहुम कुसाला वहुम कुसाला वला युन्फिकून इल्ला वहुम कारिहून। तर्जमा कुरान कंजुल इरफान। और इनके सदकात कबूल किए जाने से ये बात मानिए है कि इन्होंने अल्लाह और उसके रसूल के साथ कुफ्र किया, और वो नमाज की तरफ सुस्ती व काहिली से ही आते हैं और नागवारी से ही माल खर्च करते हैं। यानी मुनाफिकों के सदकात राय खुदा में खर्च की गई रकम कुछ भी कबूल नहीं है, सब मर्दूद है। क्यों? तीन वजह। नंबर एक, ये अल्लाह व रसूल पर ईमान नहीं रखते। नंबर दो, नमाजों में सुस्ती करते हैं। नंबर तीन, जो भी राय खुदा में खर्च करते हैं खुश दिली से नहीं करते। प्यारे प्यारे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, इन तीनों चीज़ों की तरफ हमें तवज्जो करनी है। हमें जो भी काम करना है अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाली वसल्लम की रज़ा के लिए करना है। खुलासा कलाम यह है कि अल्लाह पाक के फ़ज़ल से हमने क़ुरबानी की, क़ुरबानी की सआदत हासिल की, तो इसके साथ साथ क़ुरबानी को कबूलियत के लायक बनाने की भी भरपूर कोशिश फरमाइए। इसके लिए हमने चंद काम करने हैं। तकवा अपनाना है, यानी गुनाहों से बचना है। रियाकारी, रिश्वत, झूठ, गाने सुनकर लज्जत उठाने, दूसरों को धोखा देने जैसे बुरे कामों से भी बचना है। नमाजों में सुस्ती नहीं करनी और दीगर नेक आमाल भी खुश दिली से करने हैं। अल्लाह पाक हमें अमल की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन आमीन। बिजाहिन नबी अमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम।
1: अभी आप समात फरमा रहे थे मुबल्लिगे दावत इस्लामी क़ारी अब्दुल माजिद अत्तारी साहब की ज़ुबानी एक बहुत ही नसीहतों भरा बयान। उम्मीद करते हैं कि इस बयान से आपकी दीनी मालूमात में ज़रूर इजाफा होगा। मौजूद सामीन, आप अपने पैगामात हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप या नॉर्मल मैसेजेस के ज़रिए भेज सकते हैं। 5251700005, जी हाँ, 5251700005 के ज़रिए आप अपने पैगामात हमें भेज सकते हैं। आइए समात फरमाइए एक ऐलान। जुमेरात 4 जून, जी हाँ, जुमेरात 4 जून सुबह 10 बजे बैतुन्नूर सिटी मौशाल पोर्ट लुइस में आलिमा शमीमा सुब्राची की सरपरस्ती में एक नूरानी महफिल का एहतमाम किया जा रहा है, जिसमें ज़िक्र और दुआ शामिल है। आप तमाम ख़वातीन को शिरकत की दावत है।

मुअज़्ज़ज़ सामईन, हमें हमेशा की तरह बहुत सारे पैगामात मौसूल हो रहे हैं। आइए बढ़ते हैं आपके पैगामात की तरफ। और ये ता से सबीना गुजबाली किदागन खुदा बकस फैमिलीज़ की तरफ से वालिद फारूक गुजबाली के लिए दुआगू हैं कि अल्लाह पाक वालिद साहब को सेहत के साथ लंबी उम्र अता फरमाए। इसके अलावा जी हाँ, इसके अलावा दुआए शिफा की गुजारिश की गई है फैज़ल बुलाकी के लिए, जिनका मक्के में ऑपरेशन है। जी हाँ, हज के बाद, हज अदा करने के बाद जिनका मक्के में ऑपरेशन है, उनके लिए दुआए शिफा की गुजारिश की गई है। ऐ पाक परवरदिगार फैज़ल बुलाकी को सेहत के साथ ज़िंदगी अता फरमाना, आमीन। और हमें एक और पैगाम

लबों पर उसके कभी कोई शिकायत नहीं होती, माँ जैसी नेमत इस दुनिया में कोई और नहीं होती। खुदा ने ऐसे बरकत रखी है उसके वजूद में कि उसकी दुआ के बिना कोई इबादत नहीं होती।

मौज़ सामीन, इस कलाम की फरमाइश हमसे की थी रोज़ीदा नूर बख्श ने। रोज़ीदा नूर बख्श तमाम सुनने वालों और ख़ास तौर पर MBC की पूरी उर्दू टीम को ईद उल अधा की मुबारकबाद भी पेश कर रही हैं। इसी के साथ थोड़ी ही देर में ये मजलिस इख्तिताम पज़ीर हो जाएगी। आप तमाम सामीन ने हमारा साथ दिया, हम आपके बेहद शुक्रगुजार हैं। अल्लाह ने चाहा तो फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा और अपनी दुआओं में सैयदा सुबाई को भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।

0: 819 किलोहर्ट्ज, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: समय थे उसे बपुरना पूना भी
2: मौजिला गुजरात नो रंग रंगारंग एमबीसी रेडियो पर गुजराती गीतों नो प्रोग्राम रंगारंग रंगारंग रंगा रंगा।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: आपकी पसंद। घड़ी में ला लीजिए समय, दिन के ठीक 2:30 बजे हैं। ये मॉरिशस ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन का रेडियो मॉरिशस प्रसारण है। मीडियम वाट्स 19 किलोहर्ट्ज़ पर से हमारा ये संगीतमय सफर आपकी पसंद का कार्यक्रम जारी हो रहा है। और जहाँ कहीं से भी आप हमारे साथ जुड़े हैं, आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मज़े में होंगे और आज के इस प्यार भरे कार्यक्रम के साथ दिल से जुड़ चुके होंगे। तो चलिए, 4028085 नंबर है रेडियो मॉरिशस का, जिस पर आप अपने पसंदीदा गीत की फरमाइश कर सकते हैं। मैं हूँ रत्ना, आपका साथ दूंगी शाम के 4 बजे तक। और बेशक 5251705 इस नंबर पर भी आप अपने मैसेज के द्वारा अपने गीतों की फरमाइश भेज सकते हैं। तो आइए आज के इस दिलचस्प कार्यक्रम की और भी शान बढ़ाते हैं मधुर गीतों के साथ। और आज के इस कार्यक्रम का पहला गीत वादे इरादे फिल्म से लिया हुआ गीत है, SP बालसुब्रमण्यम की आवाज़ में।

0: की पसंद।
1: भाई अगर गाने सुनकर मन दीवाना हो भी जाए तो इसमें कोई हर्ज नहीं, दीवानगी ही तो हमें जिंदा रखती है। और चलिए इसी के साथ प्यार भरे गीतों का ये सफर जारी रखते हैं। यहाँ पर अनीता जी त्रियोली से जुड़ चुकी हैं, उनकी प्यारी बेटी अंजू, दामाद है वेद, बेटा सचिन, बहू है पूजा, साथ है नाती, और आपके नाती है कियांश, और आपकी नातिन है सिया। और प्यार भरे इस गीत को हम सजाने जा रहे हैं जिस देश में गंगा बहती है, फिल्म से लिया हुआ गीत मुकेश साहब की आवाज़ में, सभी सुनने वालों के नाम, आपके सभी परिवार के लिए।

0: की पसंद।
1: बिल्कुल दिल में सच्चाई रखिए, जिंदगी को सच्चाई के साथ आगे बढ़ाइए। दिखावट की दुनिया में हमेशा दुख झेलने पड़ते हैं, वैसे हम आपका दिल खुश कर रहे हैं इन गीतों के साथ। और यहाँ पर 2:42, अगला गाना जो है फिल्म ब्लैक कैट से लिया हुआ बहुत ही प्यारा सा गीत, और इस गीत की फरमाइश कर रही हैं रेहाना जी नॉर्थगदाम से। अपनी प्यारी सहेलियों को कभी नहीं भूलती माला फाउदा और सुरेखा जी, और आज सैंपिय से आयुब भाई और साइदा जी का भी नाम जोड़ती हैं, कहती हैं हमारे प्रोग्राम्स को वे बेहद पसंद करते हैं। तो चलिए आशा करते हैं आयुब भाई आज के इस कार्यक्रम के गीतों को सुनकर आपका दिल भी बहुत खुश होगा, और बस यूं ही प्यार से ये नाता जोड़े रखें लता जी की प्यारी सी आवाज़ में। फिल्म ब्लैक कैट का ये गाना आप सभी के लिए।

0: आपकी पसंद।
1: भाई दगा तो हम देंगे नहीं, कोशिश तो यही जारी रहेगी 4 बजे तक कि आप सभी के फरमाइशी गीतों को हम पूरा कर पाएं। और यहाँ पर चलिए अगला गीत जो है बहुत ही ख़ास गीत है, और आज कमला जी का जन्मदिन है, कमला महादेव, जो एक समय पर हमारे सभी ऑडियंसेस का दिल लुभाती थी। एक ज़माने में उनकी आवाज़ के भी लोग बड़े ही दीवाने थे, और हमारे लिए तो वे एक बहुत ही बड़ी गुरु माँ समान है, बिल्कुल एक मेंटोर की तरह है। तो चलिए कमला जी, अगर आप हमें सुन रही हैं तो आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको जन्मदिन की बहुत सारी बधाइयाँ, और ख़ास कर ये बधाई आ रही है आपकी चहेती श्यामा रघुनंदन जी की ओर से। और श्यामा जी हमारे साथ इस वक्त जुड़ी हुई हैं, और उन्होंने एक बहुत ही प्यारा सा गीत उनके लिए पसंद किया है प्यार करेंगे, बिल्कुल जिनसे दिल का रिश्ता जुड़ चुका होता है। कहते हैं ना कि वो रिश्ते कभी कमज़ोर नहीं होते, चाहे बातें हो ना हो, रिश्ते हमेशा प्यार से संजोए जाते हैं। और इसी के साथ ये गाना हमारे रेडियो मॉरिशस की टीम की ओर से आपके नाम हम करेंगे ख़ास श्यामा जी के तौर श्यामा जी की ओर से इस तोहफे के रूप में। और दिल से आपको हम यही कहेंगे कि आप जहाँ रहें हमेशा स्वस्थ रहें, खुश रहें, और बिल्कुल हमारे दिल में सदा बसी रहें। ये गाना दिल से आपके लिए है।

0: आपकी पसंद।
1: दोस्ती यूं ही बनी रहे। और इसी के साथ चलिए यहाँ पर त्रियोली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं सूरज सजादा और उनके प्यारे बेटे निशाल, और अगले गीत की फरमाइश वे करते हैं फिल्म जुर्म से लिया हुआ गाना। मोहम्मद अजीज और आशा जी की प्यारी सी आवाज़ में रखा हुआ ये गीत हम करेंगे उनके लिए। और साथ ही साथ यहाँ पर ज्योति जी हमारे साथ हमेशा साथ देती हैं यूनियन पार्क से, और अगले गीत को वे डेडिकेट करना चाहती हैं प्रीति, मयूर, आदर्श, वेदना, विमला, विवेक और अविष्ठा के लिए। तो बस यूं ही दिल से साथ दीजिएगा इस अगले गीत को। आइए साथ मिलकर इन्जॉय करते हैं इसी गीत को। हम डेडिकेट करना

चाहेंगे सुनीता जी के लिए, जो इस वक्त घोंघोप से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। उनकी प्यारी बहनें विमला, अमृता और वीना जी भी साथ दे रही हैं। तो आइए इस गीत को एंजॉय करते हैं।

चलिए यही गाना हम डेडिकेट करना चाहेंगे विद्या जी, जो इस वक्त यूनियन पार्क से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। आज उनके प्यारे जीजा संदीप रामनारायण का जन्मदिन है, जो रहते हैं वाकवा। उनकी प्यारी पत्नी है सती, बेटा है अभी, बहू है रोशनी, बेटी विदना, और सभी रामनारायण और नामा परिवार की ओर से उनको ढेर सारी बधाइयाँ। वैसे आपको याद दिला दें, ये गाना हमें जोड़ेगा सुपहर के 3 बजे के समाचारों के साथ। कार्यक्रम को जारी रखते हैं समाचारों के बाद।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: घड़ी मिला लीजिए, समय सुपहर के ठीक 3 बजे है। आइए जुड़ते हैं 3 बजे के समाचारों के साथ।

0: डॉक्टर परी, सभी को मेरा नमस्कार। विश्व स्तरीय डिग्री आजकल एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, लेकिन इसका वास्तविक मूल्य उन देशों पर निर्भर है जहां स्नातकों को रहने और काम करने का अधिकार है। ये जानकारी शिक्षा पर आधारित है ने 2026 की रिपोर्ट में सामने आई है। ये इंडेक्स उन 15 देशों को स्थान देता है जो न केवल उत्कृष्ट शिक्षा बल्कि कैरियर के असर और अंतर्राष्ट्रीय गतिशीलता भी प्रदान करते हैं। स्विट्जरलैंड इस सूची में प्रथम स्थान पर है और उसके बाद सिंगापुर आता है। मॉरिशस को इलाकाई मेडिकल हब बनाने की महत्वाकांक्षा, अब स्वास्थ्य तकनीक क्षेत्र में नए निवेश निवेशों के माध्यम से साकार हो रही हैं। मेडिवेशन लिमिटेड मुका स्मार्ट सिटी में मेडिकल डिवाइस बनाने वाली एक फैक्ट्री स्थापित करने की योजना बना रहा है। इस परियोजना को प्रीमियम इन्वेस्टर सर्टिफिकेट प्राप्त है और ये अंततः 1 बिलियन से अधिक रुपये के निवेश का प्रतिनिधित्व करेगी। युवकों में तंबाकू और निकोटाइन का सेवन, विश्व तंबाकू रहित दिवस के अवसर पर स्वास्थ्य मंत्रालय ने आज एक जागरूकता अभियान का आयोजन किया। इसका उद्देश्य रहा तंबाकू से जुड़ी खतरों के प्रति रोकथाम और जागरूकता को मजबूत करना। विदेश में म्यांमार के एक गांव में पेश आए एक भयानक धमाके में कम से कम 55 लोगों की मौत। ये गांव चीन की सीमा से सटा एक विवादास्पद इलाका में मरने वालों में 25 महिलाएं और 30 पुरुष शामिल हैं। तो इन्हीं खबरों के साथ है समाचार समाप्त हुए। कुछ ही समय में शोक समाचार। नंबर 22, होवलेन उकुले क्यूपिप में 80 साल के 80 ईयर्स ओल्ड श्री करण देव आलिया, जिन्हें लोग करण देव नाम से अधिक जानते थे, की मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी आज दिन के 1:30 बजे, इनकी अर्थी कल मंगलवार को दिन के 1:30 बजे इनकी पत्नी लीला देवी आलियाओ के मकान नंबर 22 होवलेन उकुले क्यूपिप से उठाकर बिगाहा कृष्णशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमोरो एट 1:30 PM। शोकग्रस्त परिवारों के प्रति हमारी सहानुभूति है।
1: 819 किलोहर्ट्ज ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
2: आपकी पसंद।
3: घड़ी मिला लीजिए, समय सुपहर के ठीक 3:03 हुए हैं और ये मॉरिशस ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन का रेडियो मॉरिशस प्रसारण है। बिल्कुल अभी से लेकर 4 बजे तक हम बिल्कुल जुड़े हैं आपका साथ देने के लिए आप ही के पसंदीदा कार्यक्रम में, और इस सफ़र को जारी रखते हैं बेहतरीन नए पुराने गीतों के साथ सजाया हुआ ये सफ़र जो आप ही के पसंदीदा गीतों को आप हम तक पहुँचा रहे हैं टेलीफोन और मैसेजेस के द्वारा। बहुत बहुत धन्यवाद। इस अगले गीत की फरमाइश जो आई है ये है फिल्म नमस्ते लंदन, और इस फिल्म की फरमाइश कर रही हैं कमला दीनू जो इस वक्त हमारा साथ दे रही हैं मोहताबा से। उनकी प्यारी पोती आरोही सभी दीनू और रामधनी परिवार, खास उनकी सखी, खास उनकी दोस्त है सीता बेगोब, और साथ दे रहे हैं रियांश, उनकी प्यारी बेटी दिव्या, और सभी सुनने वालों के नाम राहत फतेह अली खान की आवाज़ में रखा हुआ।

अनजान राहें। इस गीत को बहुत ही सुनने का मन रखती हैं हमारे साथ जुड़ी हुई बुजवेजिया से नासिम और उनकी प्यारी बहन है नुएलफों से शाइला। उनके लिए वे बहुत दुआएं भेजती हैं, बहुत प्यार। और मोहम्मद रफी साहब की आवाज़ में रखा हुआ ये गीत उनके नाम हम करना चाहेंगे, तो ज़रूर आप भी हमारा साथ दीजिएगा। दिलचस्प गीतों का ये कारवां आगे बढ़ाते हैं इस समय 3:11।

0: लेके आ।
1: कई बार जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ी कर देती है जहाँ ना दिमाग साथ देता है ना दिल, पर कहते हैं ना उसी टाइम हमें सारा कुछ समय पर छोड़ देना है। एनीवेज चलिए अगले गीत के साथ बढ़ते हैं आगे। एन इवनिंग इन पेरिस, वैसे अभी तो हम हैं मॉरिशस में, पर इस गीत को एंजॉय करते हैं। मोहम्मद रफी साहब की आवाज़ में रखा हुआ ये गाना जाता है गीता जी के लिए, जो पोफे ऐसा दे रही है उनके प्यारे पति रोहित, आदित्य, आरफ, तानिश और जानवी के नाम उनके तीन बहू, तीन बेटे, दो बहुओं के नाम।

मन भर लो, मर जाओगे प्यार कर लो। कल का सपना किसने देखा, इन राहों से आज गुजर लो। अपने दिल का दामन भर लो, मर जाओगे प्यार कर लो। कल का सपना किसने देखा, इन राहों से आज गुजर लो। ऐसा मौका फिर कहाँ मिलेगा हमारे जैसा दिल का।

0: ऐसा मौका फिर कहाँ मिलेगा, हमारे जैसा दिल कहाँ मिलेगा। आओ तुमको दिखलाता हूँ पेरिस की एक रंगी शाम, देखो देखो देखो देखो देखो एनिमिंग इन पेरिस।
1: और ऐसे लाजवाब गीतों का सिलेक्शन जारी है 4 बजे तक। चलिए अगले गीत की फरमाइश लेते हैं, और ये है फिल्म उड़न खटोला से लिया हुआ हाफिज जी, जो इस वक्त लावेनिया सैपिये से हमारा साथ दे रही हैं। और ये गाना है मोहम्मद रफ़ी, और साथियों की आवाज़ में इस गीत की फरमाइश वे करती हैं अपने शोहर की याद।

दिल वाले कभी ना हारे, विश्वानी दुबन जी के इस पसंद पर गीत हम चलाने जा रहे हैं। उनकी प्यारी बहनें हैं इंदिरा और शारदा, नीला और प्रतिभा उनकी सखियां, साथ है शोभा जी और गीता गजाधर, आवाज है राजेश्वरी और कुमार शानू की।

पर शायद खुदा को कुछ और ही मंजूर। और इसी के साथ 3:30 बजने को है और अगले गीत को हम चलाने जा रहे हैं अनीता जी के पसंद पर। काटरपोन से भी हमारा साथ दे रही हैं और किशोर कुमार साहब की आवाज़ में रखा हुआ ये गाना एक ऐसी फिल्म से लिया हुआ गीत है जो रिलीज़ नहीं हुई थी और इस फिल्म का नाम है रामू तो दीवाना है। किशोर कुमार की बहुत ही प्यारी सी आवाज़ में रखा हुआ ये गाना हम आपके नाम करना चाहेंगे।

इस प्यारे से अनसुने गीत के बाद आइए अब बढ़ते हैं आगे और ये अगला गीत सुनते हैं फिल्म सहरा से लिया हुआ गीत मोहम्मद रफ़ी और लता जी की प्यारी सी आवाज़ में। और इस गीत की फरमाइश कर रही हैं रेहाना फेनिक्स से।

दुनिया के बदलते रिश्ते और इस गीत को हम आगे बढ़ा रहे हैं किशोर कुमार, मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर की आवाज़ में, बंधु परिवार के लिए जो इस वक्त त्रियोली से जुड़ा हुआ है।

फिल्म है शरारत और शरारती आवाज किशोर कुमार साहब की बहुत ही सूट करती है। 1959 के दौर का ये गाना जाता है कुलेन जी के लिए जो इस वक्त हमारा साथ दे रहे हैं अनवल फौज से और उनके सभी दोस्तों के नाम करते हैं फिल्म शरारत।

0: बुककीपर।
1: भाई इतने लाजवाब सिलेक्शन को आप ढूंढ कर लाते हैं हमारे लिए और हमारा दिल भी खुश हो जाता है आपकी पसंद कार्यक्रम में आपके लिए इतने मजेदार गाने चलाकर। चलिए अगला गाना जो है बहुत ही पुराना केएल साइगल साहब की आवाज में रखा हुआ ये गाना जाता है शीला जी के लिए जो देपीने से इस वक्त हमारा साथ दे रही हैं। वैसे शीला जी ये गाना है फिल्म दुश्मन का।

आवाज की दुनिया के दोस्तों, मैं ज़रा देर से पहुंचा, इसके लिए मुझे अफसोस है, लेकिन आज आप लोगों को एक बिल्कुल नया गाना सुनाता हूं। रेडी?

पुराने गीतों की ओर से चलिए अब रुख करते हैं इस गीत की ओर। किशोर कुमार साहब की आवाज में रखा हुआ ये गीत है हरीश जी के लिए, जो बबासन से इस वक्त हमारा साथ दे रहे हैं।

0: किसी को खुश करके भी उनके दिल को छुआ जा सकता है, किसी के लिए गाने चला कर भी उनको खुश किया जा सकता है, किनसे, किसी से बातें करके, किसी को मैसेज करके, किसी को प्यार भरी बातें कह कर भी किसी के दिल को छुआ जा सकता है। और चलिए इसी के साथ 5 मिनट रह गए हैं 4 बजने के लिए, वैसे आपको याद दिलाते चले, ठीक 4 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम क्षितिज, और इस कार्यक्रम के प्रस्तुतिकरण करेंगे डॉक्टर शशि दुकन,
1: आपकी पसंद।
0: और इस कार्यक्रम के अंत तक हम पहुंचे हैं, लेकिन आप फिक्र ना करें, जितने भी लोगों ने साथ दिया है सभी के नामों को हम शामिल करते हैं। वाकवा से सुदेवी जी हमेशा साथ देती है, ललिता कुशल का नाम हमेशा जोड़ती हैं, साथ है भाई आत्माराम, दीदी सुनीता, शोभा जो है मालेंगा से, अनुषा, किरण, केशनी, कृषय, प्रनीता, राम रतन परिवार, और इस वक्त साथ दे रहे हैं नसरीन, आप हमारा साथ दे रही हैं नसरीन वाकवा से, थैंक यू सो मच, और बस यूं ही साथ दीजिएगा। आशा जी आप भी कॉटेज से साथ दे रही हैं ममा कुमारी के साथ, आपकी प्यारी दीदी आरती जी जो हैं, राज और शुभम और ऋषभ आपके दो नेफ्यू साथ हैं, चित्रा जी जो मॉडल बेस से साथ दे रही हैं, और विजय बंधन क्लाविट से, और आखिरी गाना होगा फिल्म कन्यादान का, ये गाना हम चलाएंगे रोजबेल की साकुन के नाम, साथ है उनके दो नाती एवा और शैन, नाती पोती, और इसी के साथ चलिए यही गाना फिल्म कन्यादान का मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ में रखा हुआ गीत हम करेंगे आपके नाम। आशा करते हैं आप सभी ने हमारा प्यार से साथ दिया, बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत धन्यवाद, और बिल्कुल क्षमा चाहते हैं, सभी की फरमाइशों को पूरा करना हमारे लिए कुछ मुश्किल हो जाता है, पर कोशिश हमारी यही रहती है कि हम सभी को मौका दें। तो चलिए इसी के साथ इस गीत को यहाँ पर हम समाप्त करते हैं, और भूलिएगा नहीं 4 बजे आप जुड़ पाएंगे कार्यक्रम क्षितिज के साथ, जिसे प्रस्तुत करेंगे डॉक्टर शशि दुकन। हमारी और आपकी मुलाकात पुनः होगी शाम के 5:30 बजे बचपन ऐसा कार्यक्रम में, तो ज़रूर साथ दीजिएगा हमारा 5:30 बजे से 6 बजे के बीच। इसी के साथ रत्ना को दीजिए अनुमति, नमस्कार, शुभ संध्या।
2: हजारों रंग के नजारे बन गए, लिखे जो खत तुझे।

0: On the hour, every hour. Radio Marches.
1: क्षितिज एक सार्थक यात्रा नई क्षितिज की ओर, जिसमें आप सभी का हार्दिक स्वागत है।

0: श्रोताओं को हमारा हार्दिक सप्रेम नमस्कार। क्षितिज कार्यक्रम की एक और कड़ी लिए हम उपस्थित हैं, जिसमें अपने समस्त श्रोताओं का हार्दिक अभिवादन करते हैं। श्रोताओं, अपने आपको बताते चलें कि 11 फरवरी को विश्व हिंदी सचिवालय ने अपना 18वां स्थापना दिवस मनाया। इस तहत एक दिवसीय भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस तहत अनेक विदेशों से हिंदी वक्ता, हिंदी प्रेमी जो थे इस कार्यक्रम में जो हैं वो उन्होंने अपनी उपस्थिति दी। इस तहत हमारे साथ एक और मेहमान हैं जिनका आज हम साक्षात्कार आप लोगों के साथ करवा रहे हैं। आप इंग्लैंड से डॉक्टर ऐश्वर्य कुमार जी हैं। आपने 1991 से मास्टर ऑफ फिलॉसफी दिल्ली यूनिवर्सिटी में वे कार्यरत रहे। 1988 में मास्टर ऑफ आर्ट्स दिल्ली यूनिवर्सिटी में किया और 1986 में बैचलर ऑफ आर्ट्स दिल्ली यूनिवर्सिटी से आप अपने कार्य जो है उनकी सेवाएं प्रदान करते रहे। यानी कि एक लंबा कार्य अनुभव आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाविद्यालयों में अध्यापन कार्य से जुड़ा रहा और आजकल आप वर्तमान में आप कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय इंग्लैंड में जो है हिंदी भाषा का अध्यापन करा रहे हैं। सर, सबसे पहले मैं आपका स्टूडियो में स्वागत करती हूँ। स्वीकार करें हमारा सप्रेम नमस्कार। और हिंदी प्रकाशन में तो आपका काफ़ी लंबा अनुभव है। अनेक आपकी पुस्तकें जो हैं वो प्रकाशित हो चुकी हैं हिंदी को लेकर, उसकी लिस्ट बहुत लंबी है। मैं चाहूँगी कि आपसे इस कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा अपने श्रोताओं के लिए जिस उद्देश्य से आप यहाँ पर आए उसके बारे में थोड़ी चर्चा की जाए। इंग्लैंड में हिंदी का अध्यापन करना कोई आसान कार्य नहीं है और इस तहत आप जो थे, ये जो 18वां विश्व स्थापना दिवस मनाया गया, इसमें आपने जो शिरकत की वो एक वक्ता के रूप में की और छायावादी जो उसमें साहित्य था या मध्यकालीन जो साहित्य था उसको लेकर, या अपने देश इंग्लैंड में आप किन कठिनाइयों का सामना करते हैं भाषा को लेकर, इन सब से या इसके अलावा जो भी आप इस स्थापना दिवस में जुड़े उसके उद्देश्य के बारे में आप हमें बताएं।
1: धन्यवाद इस साक्षात्कार के लिए और यहाँ आमंत्रित करने के लिए। मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। आपने जो प्रश्न पूछे हैं उसमें एक तरह से कई प्रश्न जुड़े हुए हैं, तो मैं चाहूँगा कि एक एक करके शायद उन प्रश्नों का उत्तर दूँ।
0: ज़रूर।
1: जो एक आपने सही कहा कि यहाँ पर मेरा जो उद्देश्य था आना, वो विश्व हिंदी सचिवालय के द्वारा जो स्थापना दिवस मनाया गया उसमें छायावादी जो कवि हैं उनको पढ़ने पढ़ाने को लेकर किस तरह की कठिनाइयां होती हैं उस पर कुछ चर्चा करें।
0: ज़रूर।
1: और हमने यही सोचकर, जो हमें कठिनाइयां होती हैं, मैंने सोचा कि मैं अपनी कठिनाइयों को यहाँ के विद्यार्थियों और अध्यापकों के साथ साझा करूँगा और जो यहाँ के जो अध्यापक हैं या जो विद्यार्थी हैं वो कुछ बातें हमें बताएंगे अपनी कठिनाइयों के बारे में। तो वो सिलसिला चला और हम सभी ने इस तरह के अपनी अपनी बातें रखी। जो हम कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में पढ़ाते हैं वो एक तो स्नातक जो अंडर ग्रेजुएट डिग्री है उसको पढ़ाते हैं और वहाँ पर हिंदी के साथ साथ वहाँ पर

0: विद्यार्थी को कोई और एक भाषा पढ़नी पड़ती है तो
1: कंपलसरी।
0: हाँ, तो अक्सर जो है विद्यार्थी या तो अरबी भाषा पढ़ते हैं और उसके साथ फिर हिंदी पढ़ते हैं, फारसी भाषा पढ़ते हैं उसके साथ हिंदी पढ़ते हैं।
1: अच्छा।
0: इस तरह से हिंदी की पढ़ाई होती है स्नातक स्तर पे।
1: अच्छा।
0: लेकिन स्नातकोत्तर स्तर पर जो पोस्ट ग्रेजुएट लेवल है उसमें हमने कई तरह के जो है नए प्रयोग किए हैं, जिसमें कि जो विद्यार्थी जो एक साल का एमफिल करते हैं और शोध कर रहे हैं उनको भी भाषा पढ़ना अनिवार्य है।
1: अच्छा।
0: और ये भाषा जो वो सीखते हैं उसके साथ साथ उनको इसके प्रश्न पत्र भी जो है लिखने पड़ते हैं। तो ये एक तरह से जो है उनके जो असेसमेंट है उसका ही हिस्सा है। तो उसमें हम हिंदी भी पढ़ाते हैं, उर्दू भी पढ़ाते हैं, दोनों भाषाओं को पढ़ाते हैं। और वहाँ पर हिंदी के प्रति जो है विद्यार्थियों का काफ़ी आकर्षण है, हिंदी पढ़ने वालों की संख्या काफ़ी बड़ी हो जाती है, तो वो भी एक अलग तरह का अनुभव है। तो ये विश्वविद्यालय के स्तर पर ऐसा होता है। ये ज़रूर है कि इसको पढ़ने वाले जो विद्यार्थी होते हैं वो अधिकांशतः जो है वो ब्रिटिश होते हैं या फिर यूरोप से होते हैं, और आजकल कुछ विद्यार्थी अमेरिका से भी आते हैं, या कुछ विद्यार्थी कम संख्या में सही लेकिन भारत से भी आते हैं।
1: मैं बस यही डॉक्टर अश्वरज जी आपसे पूछना चाहती थी कि देखें, जब जो हिंदी भारत से आते हैं कम संख्या में और जो अन्य देशों से आते हैं, तो उनको हिंदी माध्यम में डायरेक्टली सीधे सीधे हिंदी पढ़ाना क्या आपके लिए सहज होता है? कैसे आप उस कठिनाई का सामना करते हैं?
0: हाँ, ये बिल्कुल सही प्रश्न है कि ये सहज नहीं होता। और हम अपनी मुश्किल को कम करने के लिए करते यही हैं कि हम पहचान करने की कोशिश करते हैं कि उनकी भाषा का स्तर क्या है, और पहले एक दो हफ्ते के कक्षाओं के बाद हम उनको जो है अलग अलग कक्षाओं में विभाजित कर देते हैं, और उनके स्तर के अनुसार यदि आपकी हिंदी का स्तर काफ़ी ठीक ठाक है तो हम आपको जो है एक तरह से एक अलग क्लास में रखते हैं। लेकिन अगर आप बिल्कुल जो है एक तरह से शुरुआती स्तर पे लगता है कि हैं तो हम आपको जो है एक बिगिनर्स क्लास में रख देते हैं। तो ऐसे अलग अलग जो स्तर बनाकर हम पढ़ाते हैं उनको, और उससे फिर उनको सुविधा होती है और वो करीब एक साल के अंदर अंदर काफ़ी कुछ भाषा सीख जाते हैं।
1: अच्छा।
0: और वो ये महसूस करते हैं कि इस कार्यक्रम का ये जो एमफिल प्रोग्राम है ये बहुत अच्छा है, क्योंकि इस तरह का प्रोग्राम पूरे यूनाइटेड किंगडम में नहीं है, जहाँ पर कि आप जो है अलग अलग विषयों में शोध करते हैं और भाषा भी सीखते हैं, ये स्थिति नहीं है।
1: अब देखें, मॉरिशस में ही यहाँ पर कैम्ब्रिज का जो है, और इसी वजह से कैम्ब्रिज के होने की वजह से जो है यहाँ पर पाठ्यक्रमों में भी हमारे छायावाद कवि हैं और मध्यकालीन कवि हैं जिनको लेकर हमारी चर्चाएं वहाँ पर हुई, और इस तरह से यहाँ के लोग जो है यहाँ पर हिंदी जो का है उसका स्तर काफ़ी अच्छा है। आपने कैसा अनुभव किया इस कार्यशाला में, जो अनुभव प्राप्त किया उसके बारे में थोड़ा चर्चा करें।
0: संयोग से मुझे ये अवसर मिला है कि मैं जो कैम्ब्रिज स्कूलों में जो कैम्ब्रिज परीक्षा का जो पाठ्यक्रम पढ़ाया जाता है और उसकी जो परीक्षाएं होती हैं, मैं उस प्रक्रिया में भी जुड़ा रहा हूं, और मुझे अच्छी तरीके से मालूम है कि जो मॉरिशस के विद्यार्थी हैं उनकी हिंदी का स्तर क्या है।
1: अच्छा। हाँ, क्योंकि आपके तो हाथ से गुजरता होगा।
0: जी जी, तो वो दिलचस्प होता है देखने वाला। उसमें दो तीन तरह की बातें कही जा सकती हैं कि जो अच्छे विद्यार्थी होते हैं उनकी भाषा का स्तर स्पष्ट नजर आता है कि वो काफ़ी हिंदी को पढ़ रहे हैं उत्साह के साथ, लेकिन तब भी मैं कहूँगा ऐसे विद्यार्थियों की संख्या कम नज़र आती है। जबकि ऐसे विद्यार्थी जो कि काफ़ी हिंदी लिख रहे हैं, कभी कभी बड़ी कठिन हिंदी भी लिख रहे हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि बस एक उसको उन्होंने याद करके लिखा है। तो मुझे लगता है कि वहाँ पर हिंदी को थोड़ा सा रोचक बनाने की आवश्यकता है,
1: और
0: ताकि वो जो है खुद उसमें जो है रुचि लेकर लिखें। अगर दिलचस्पी के साथ उसको लिखेंगे तो मुझे लगता है कि उनकी जो अभिव्यक्ति है
1: वो नजर आएगी
0: और भी उसमें
1: झलक के। हाँ, आपने सही कहा। मैं आपसे सिर्फ इतना जानना चाहूंगी कि जैसे आपने कहा कि यहाँ के बच्चे जो हैं उनका स्तर भी आपको देखने को मिला, और जो कार्यशाला हुई उसमें भी प्रस्तुतियाँ जो हैं स्कूल के छात्रों द्वारा नृत्य नाटिका के माध्यम से, गीतों के माध्यम से, कविताओं के माध्यम से, और भारत से जो

0: बच्चे थे, उन्होंने प्रदर्शनी के माध्यम से जो है इन कवियों की कविताओं को झलकाया।
1: बिल्कुल।
0: और आपने कहा कि जो कुछ आप यहाँ से उम्मीद कर रहे थे, क्या कुछ हद तक आपने यहाँ से कुछ पाया?
1: जी, मुझे यही लगा कि जो उन्होंने इन्हीं छायावादी कवियों को अलग अलग विधाओं के माध्यम से उसकी अभिव्यक्ति की, वो बहुत सुंदर थी। मुझे लगा कि इस तरह के कार्यक्रम जो है शायद ज्यादा होने चाहिए। जरूरी है कि वो जो है उन चीज़ों को गाकर भी सुने, प्रदर्शनी में चीज़ों को बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ देखें, बहुत ज़रूरी है वो तस्वीरें देखें, बहुत ज़रूरी है कि जो विधा के अलग अलग रूप हैं वो उनके सामने आएं, उनका सामना बार बार इन चीज़ों से हो, ताकि वो जो है उनके मस्तिष्क में, मन में जो है वो बैठ जाए और उनको ये जो है एक सहज रूप में हिंदी की अभिव्यक्ति जो है वो हो,
0: करने को सहजता प्रदान हो।
1: हाँ, और वो एक उनका मन जो है वो फिर ज्यादा करेगा हिंदी को बोलने का हिंदी को पढ़ने का।
0: क्योंकि हमारे यहाँ भी समस्या ये है कि बच्चे, जैसे आपने कहा, इम्तहान के लिए वो जो है उस हिंदी को टारगेट करते हैं। हाँ। लेकिन वो जो आपने कहा असली अभिव्यक्ति जो होती है वो कहीं देखने में जो है कहीं उसका अभाव नजर आता है। हाँ। तो वो वही बात आपने जो कही कि उसको जो है अगर वो रुचि लेकर या उसके गहनता से पढ़ेंगे तो वो बात अलग आती है। क्योंकि देखिए लेखन में वो साफ नजर आती है कि बच्चे ने पढ़कर लिखा है या अपनी अभिव्यक्ति को रखा है, ये भाव तो जो एग्जामिनर होता है वो चेक कर लेता है, उसको पता चल जाता है। इशारा हो रहा है, मैं आपसे बातें तो बहुत करना चाहूंगी लेकिन समय जो है उसका अभाव है। मैं आप चाहूंगी कि आप अंत में हमारे श्रोताओं के साथ यहाँ को लेकर जो कम समय में आप आए, क्या आपने अनुभव किया, थोड़े कम शब्दों में उसको अभिव्यक्त करें।
1: मॉरिशस आने का ये मेरा पहला अवसर था, तो मैं बहुत खुश हुआ यहाँ आकर यहाँ के लोगों से मिलकर, और मेरा जो अनुभव है वो बहुत ही अच्छा रहा, बहुत ही जो है उत्साहवर्धक ये अनुभव कहूँगा, और इससे मैं बहुत चीज़ें सीख कर जा रहा हूँ यहाँ के लोगों से, यहाँ के लोगों से बातचीत करने के बाद। तो कुल मिलाकर मैं कहूँगा कि ये पूरा ही जो अनुभव था ये ज़्यादा समृद्ध करने वाला था और मुझको ज़्यादा जो है नई दृष्टि देने वाला था, और आशा करता हूँ कि जब मैं अगली बार आऊँगा तो यहाँ के लोगों के साथ और ज़्यादा घुल मिलकर उनसे बातें कर पाऊँगा।
0: आपकी इच्छा ज़रूर पूर्ण होगी, ईश्वर ज़रूर पूर्ण करेंगे, क्योंकि हम भी चाहेंगे कि आप इंग्लैंड से हैं और वहाँ के छात्रों को पढ़ाई करते हैं तो वो आप ज़्यादा हमारे से साझा कर सकें, ताकि यहाँ के लोग जो कैम्ब्रिज के स्तर पर अपने आप को तैयार करते हैं उनको भी किसी न किसी तरह की मदद मिले। तो आपको हम तहे दिल से धन्यवाद करना चाहेंगे। और श्रोताओं, यहाँ पर क्षितिज कार्यक्रम का समय पूरा हो रहा है, आपने हमारे लिए समय निकाला सर, इसके लिए आपके हम तहे दिल से आभार करते हैं, धन्यवाद करते हैं। और श्रोताओं, तकनीकी सहयोगी यूसुफ को भी तहे दिल से धन्यवाद करना चाहेंगे। अपने एक और कार्यक्रम तक के लिए हम आपसे इजाजत चाहेंगे। नमस्कार।
1: नमस्कार।
2: क्षितिज एक सार्थक यात्रा नए क्षितिज की ओर, जिसमें आप सभी का हार्दिक स्वागत है।

0: बचपन ऐसा मीठा मीठा प्यारा प्यारा, बचपन ऐसा मीठा मीठा प्यारा प्यारा। एमबीसी रेडियो आपके साथ।
1: चलिए छोटे बच्चों, इस वक्त घड़ी में बिल्कुल 5:30 बज चुके हैं और रेडियो मॉरिशस के लेयर पर आ पहुंची हूँ मैं आपका साथ देने के लिए। आज है मंडे की शाम यानी सोमवार, और इस मजेदार दिन के साथ सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब हम स्कूल से लौट कर आते हैं, कॉलेज से लौट कर आते हैं, तो मंडे सबसे ज्यादा बोरिंग और सबसे ज्यादा भारी भरकम दिन लगता है ना? तो चलिए आपको रिलैक्स करेंगे बहुत ही मजेदार गीतों के साथ, और मैं समझती हूँ इस वक्त आप बिल्कुल अपने ट्यूशन से भी घर की ओर बढ़ रहे होंगे या फिर घर पहुंच चुके होंगे। तो चलिए इस आधे घंटे के सफर में हम करेंगे मजेदार बातें और आपके लिए चलाएंगे बहुत ही मजेदार गाने। तो आशा यही करते हैं कि आप भी हमारा साथ जरूर देंगे और बताएंगे हमें कि आज का दिन आपके लिए कैसा बीता। चलिए पहले तो हम आपके लिए बहुत ही मज़ेदार गाना लेकर आए हैं, और ये जो गाना है, इस फिल्म में नज़र आए थे आमिर खान तारे ज़मीन पर। बिल्कुल उन्होंने इस फिल्म में एक टीचर का रोल किया था, और भाई ऐसे टीचर अगर हमें मिल जाएं तो ज़िंदगी बहुत ही प्यारी बहुत ही आसान लगे, है ना? तो चलिए आज के इस कार्यक्रम में बहुत ही मज़ेदार बातें होंगी, मज़ेदार गाने होंगे, मज़ेदार हमारे दोस्त हमारे साथ ज़रूर जुड़ेंगे, बस यही आशा करते हैं। और शान की आवाज़ में रखा ये पहला गाना आपके नाम करते हैं।

ऐसा इस कार्यक्रम में मैं हूँ रत्ना, आपके साथ जुड़ चुकी हूँ और हमारे ऐसे कई सारे दोस्त हैं जो इस वक्त बिल्कुल थके हारे स्कूल से बिल्कुल घर लौट चुके हैं और मंडे की शाम ना हम किसी से बात करना चाहते हैं, ना किसी की बात सुनना चाहते हैं, ना कोई हमसे कुछ कह दे, इसीलिए बस हम अपने आप को कमरे में बंद कर देते हैं ना। अरे भाई ऐसा थोड़ी होता है, सभी थक कर घर आते हैं, पर थकावट दूर करने का सबसे बढ़िया तरीका है बातें करना और पढ़ाई की दुनिया से बाहर निकलना। पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, पूरा दिन हम पढ़ाई करते हैं और घर जाके जब मम्मी पापा कहते हैं भाई बैठ जाओ रिवीजन करने के लिए, ये तो और भी ज्यादा परेशान करने वाला, प्रॉब्लम वाला समय हो जाता है ना। पर चलिए हम आपको एक बहुत ही अच्छी बात बताते हैं कि पढ़ाई करना अच्छी बात है, लेकिन सच में देखा जाए तो अगर आप पूरा दिन पढ़ाई करोगे तो दिमाग तो थकेगा ही, और थके से दिमाग में कुछ भी नहीं बैठता, इसीलिए उसे खाली करना भी बहुत ज़रूरी है। और खाली हम तब कर सकते हैं जब हम अपने बहनों के साथ, भाइयों के साथ, या फिर अपने मम्मी पापा के साथ, या फिर किसी भी ऐसे प्रियजन के साथ हम बात करें, थोड़ा रिलैक्स करें, चिल करें। और बेशक बढ़िया बढ़िया गाना अगर आपको सुनने का मन करता है तो आप गाने सुने और उससे भी अच्छी बात कहें। अगर आपको किसी भी म्यूजिक में शौक है, किसी भी तरह का गिटार बजाइए, या फिर आपके घर में कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट है उसे आप बजाइए, बिलीव मी आप पूरी तरह से चिल हो जाएंगे। और चलिए इस यहाँ पर हमने भी बहुत अच्छे अच्छे गाने आपके लिए चुने हैं, और गाना जो है ना वो एक तरह की थेरेपी है। जैसे कि गाना बजते ही आपने तो देखा होगा कि आजकल के जो यंगस्टर्स हैं, आजकल के जो युवा पीढ़ी है, भाई ऐसे ऐसे एल्बम के गाने सुनना पसंद करते हैं, पर हम क्या करें, हम तो यहाँ पर आपके लिए हिंदी गाने ही बजा सकते हैं। पर आप फिक्र ना करें, ये हिंदी गाने भी बहुत ही लाजवाब हैं। और आप जानते हैं हमने किसी से पूछा था कि आप कैसे टीचर्स चाहते हैं, तो आजकल की जो यंग जनरेशन है उनका ये कहना है, उनका ये मान

मानना है कि भाई हमारे जो टीचर्स हो ना वो बहुत ही फ्रेंडली हों। कई बार कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाने के कारण भी बच्चों का जो मन है पढ़ाई में नहीं लग पाता। बच्चे कहते हैं कि अगर टीचर्स हमारी थोड़ी सी प्रॉब्लम्स को समझें तो हम अपने आप को बहुत ही सुरक्षित एनवायरनमेंट में प्राप्त करेंगे, अपने आप को पाएंगे कि बहुत ही फ्रेंडली, बहुत ही वार्म सा एक माहौल है स्कूल का। और बिल्कुल कई बार हम बिल्कुल समझते हैं कि आप लोगों के साथ थोड़ा पेशेंस रखना तो बहुत ज़रूरी है, तब जाकर आपकी जो ग्रैस्पिंग पावर है वो बढ़ेगी और आपको हमेशा एनकरेज करना भी हमारा काम है। तो बिल्कुल जो हमारे टीचर्स हैं, हम भी यही कहेंगे कि टीचर्स का तो, वैसे तो टीचर्स बहुत ही ज़्यादा इन सारे स्किल्स में बहुत ही ज़्यादा निपुण होते हैं, बहुत ज़्यादा स्किल्ड होते हैं। स्टूडेंट्स के साथ घुल मिल कर वे एक तरह का ऐसा माहौल तैयार करते हैं। पर डेफिनेटली कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है। कई बार कुछ बच्चे हैं जो अपने आप को व्यक्त नहीं कर पाते, तो हम तो यही कोशिश करेंगे कि हमारे जितने भी टीचर्स हैं वो इन बच्चों के साथ कम्युनिकेटिव मोड पर रहें हमेशा। और चलिए, बिल्कुल आपके भीतर की बहुत सारी ऐसी बातें हैं और क्रिएटिविटी है जिसे बाहर लाना बहुत ज़रूरी है। पर जब एग्ज़ाम का टाइम नज़दीक हो तो आपको भी अपनी तरह से पूरी मेहनत करनी है, क्योंकि आपने साल भर जब मेहनत की होती है और जब एग्ज़ाम का पीरियड आता है या फिर आपने पूरे टर्म में जो मेहनत की होती है उसका निचोड़ होता है आपके एग्ज़ामिनेशंस। और एग्ज़ामिनेशंस एक ऐसा पीरियड है जहां पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, तनाव बढ़ता है। तो चलिए, इस तनाव के मौसम में भी, तनाव के समय में भी थोड़ा बहुत टाइम, लेजर टाइम निकालना बहुत ज़रूरी है। आप चाहें तो थोड़ा स्पोर्ट्स खेल लें, बैडमिंटन खेल लें, अपने डॉगीज़ या अपने पेट्स के साथ थोड़ा सा समय बिताएं। और ऐसा लेजर टाइम निकालने के बाद ही तो आपका मन फ्रेश होगा, तब जाकर आप अपने पूरे होश व हवास में आप अपने पढ़ाई को फिर से चैनलाइज कर पाओगे, फिर से ले पाओगे। सो गाइस, आज के प्रोग्राम में चलिए जमे रहो, बहुत ही मज़ेदार ये गाना आपके नाम।

जी हाँ, 6 बजे तक हम हैं आपका साथ देने के लिए। और आज हम बात कर रहे हैं उन सभी बच्चों के बिहाफ पर जो अपनी टीचर्स से कई बार बहुत नाराज़ हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा गुस्से हो जाते हैं। और कुछ बच्चे तो ये भी कहते हैं कि हमारी टीचर्स तो हमें कभी समझती नहीं। अरे भाई, ऐसा नहीं है, टीचर्स आपकी बहुत आपको समझती हैं। पर कई बार कहते हैं ना कि टीचर्स को अगर स्ट्रिक्ट बनना पड़ता है कई बार, तब जाकर समझ में आता है। पर वैसे देखा जाए तो कई सारे टीचर्स इतने ज़्यादा अच्छे होते हैं कि सच में एक ऐसा माहौल बना देते हैं, और जहाँ पर ऐसा माहौल क्रिएट हो जाता है वहाँ पर बच्चे अपने आप पढ़ाई में बहुत ज़्यादा मन लगाते हैं। और कुछ बच्चों के लिए कुछ टीचर्स उनके हीरो होते हैं, उनके रोल मॉडल होते हैं। बिल्कुल, क्यों? क्योंकि वे लोग उनको समझते हैं, वे लोग उनके साथ समय बिताते हैं और पढ़ाई को वे बहुत ही मज़ेदार रूप से उनको प्रेजेंट करते हैं। भाई कहते हैं ना, सिलेबस कंप्लीट करना ये बहुत ज़रूरी बात है, पर सिलेबस को कंप्लीट करने के साथ साथ इसके अलावा बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिन पर ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। और टीचर्स जो हैं वो बिल्कुल एक तरह से देखा जाए तो एक लाइट की तरह है जो अपने शिष्यों का मार्गदर्शन करती हैं, और जो एजुकेशन है वो पूरी तरह से उनके दिमाग पर इतना अच्छी तरह से गहरा प्रभाव डालता है जिसके कारण ये जो बच्चे हैं वो पढ़ाई में अपनी रुचि पूरी तरह से दिखा पाते हैं। और हमेशा जो टीचर्स होते हैं वे कई बार ऐसा भी देखा गया है कि हर एक इंसान की अपनी कोई प्रॉब्लम होती है, पर्सनल प्रॉब्लम होती है, पर यहाँ पर बच्चों के साथ घुल मिल कर उन प्रॉब्लम्स का सलूशन निकालना है। कई बार कहते हैं ना कि ना केवल टीचर्स पर स्टूडेंट्स भी रोल एक्सचेंज करते हैं। हम कई बार अपने स्टूडेंट्स से भी बहुत कुछ सीखते हैं, और जब ये स्टूडेंट्स हमारे बड़ी बन जाते हैं, हमारे दोस्त बन जाते हैं, तो भाई इससे ज़्यादा मज़ेदार बात और क्या हो सकती है। कई सारे बच्चों का ऐसा भी मानना है कि टीचर्स भाई ऐसे होने चाहिए जिसके कारण हम अपने सब्जेक्ट से प्यार करने लगे। सच में देखा गया है कि बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं जो बच्चों को कुछ इस प्रकार की स्ट्रैटेजीज यूज़ करके बच्चों को ऐसा पढ़ाते हैं जिसके कारण बच्चों की जो रुचि है वो सब्जेक्ट के प्रति और बढ़ जाती है। तो भाई, पॉइंट टू बी नोटेड। हमारे जितने भी बडीज हैं, हमारे जितने भी दोस्त हैं, जितने भी यंग बच्चे हैं या यंग एडल्ट्स हैं, हम कह सकते हैं कि उनका जो उनकी जो आइडियाज़ हैं, उनका जो विज़न है वो बहुत ही क्लियर है, बहुत ही ब्रॉड है, बहुत ही आगे तक वो लोग सोचते हैं, दूरदर्शी है, हम ये कह सकते हैं। तो बिल्कुल भाई, आप के साथ रहकर हमें भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो चलिए, ये प्यारा सा गाना आपके नाम हम करेंगे, और ये है फ्रॉम द मूवी चिल्लर पार्टी।

दिवाली के चट्टे बट्टे हैं और इसी के साथ आज के इस कार्यक्रम को यहीं पर फुल स्टॉप लगाने का टाइम हो चुका है। तो बस टाइम टू से गुड बाय। और आज के इस कार्यक्रम में आपने हमारा हिस्सा दिया, बहुत बहुत थैंक यू। चलिए जाते जाते बस यही कहेंगे कि अगर आपको लाइफ में बेहतर बनना है तो बिल क्लिंटन की तरह करें। ऑफकोर्स उन्होंने 9 चीजों पर बहुत ही ज्यादा काम किया। रोज अपनी किताब पढ़ो, जो स्कूल में पढ़ाया है उससे रिवाइज करो, ऑफकोर्स एक्सरसाइज करो, जिम करो, पैसे बचाओ, क्योंकि आजकल हम कहते हैं ना कि हम बहुत ज्यादा पैसे यूज करते हैं और बेफिजूल की खर्ची करते रहते हैं। नए नए स्किल्स सीखो, समय

बर्बाद मत करो, क्योंकि मोबाइल पर रील्स देखकर हम अपने समय को बहुत ज्यादा वेस्ट कर देते हैं। काम की लिस्ट बनाओ कि जो काम आपको करना है उसे आप फॉलो करो, अपना एक टाइम टेबल बनाओ, अच्छी संगति रखो, अच्छे दोस्त बनाओ। अच्छे दोस्त का मतलब ये होता है कि जो आपके अंदर कुछ अच्छा ला सके, आपको अच्छी दिशा दिखा सके, अच्छी बातें बता सके, और बिल्कुल हो सके तो अपने मम्मी पापा के साथ टाइम स्पेंड करो, अपने सिबलिंग्स के साथ, अपने भाई बहनों के साथ टाइम स्पेंड करो। उनसे अच्छा दोस्त और कोई हो नहीं सकता। और जो भी करना है जल्दी करना है, उसकी शुरुआत आज से ही करना है। तो चलिए आज के इस कार्यक्रम में आखिरी गीत आप सभी के नाम, और आज के इस कार्यक्रम को यहीं पर फुल स्टॉप लगाएंगे। फिर मिलेंगे अगले मंडे को बचपन ऐसा प्रोग्राम में। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार, शुभ संध्या आप सभी को।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: शाम के 6 बजे हैं। नमस्कार आप सभी को, समाचारों में आप सभी का हम स्वागत करते हैं। सबसे पहले जानते हैं आज की सुर्खियां। देश में खाद्य सामानों को सुरक्षित रखने की तैयारी अब और तेज हो रही है। एग्रीकल्चरल मार्केटिंग बोर्ड बेलरीव में एक बड़े भंडारण

0: न परियोजना पर काम शुरू करने जा रहा है। करीब 375 मिलियन रुपए की इस योजना के तहत आधुनिक कोल्ड स्टोर और कृषि उत्पादों को तैयार करने वाली एक इकाई बनाई जाएगी। मॉरिशस में स्वास्थ्य टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में एक बड़ा निवेश। मेडिवेशन कंपनी मोका स्मार्ट सिटी में मेडिकल उपकरण बनाने के लिए एक नई फैक्ट्री स्थापित करेगी। 1 बिलियन रुपए से अधिक की इस परियोजना को प्रीमियम इन्वेस्टर सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ है। इससे नौकरियां पैदा होंगी और स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में मॉरिशस की स्थिति को मजबूती मिलेगी। म्यांमार के उत्तरी हिस्से में चीन सीमा के पास एक गांव भीषण धमाके से तबाह हो गया। हादसे में कम से कम 55 लोगों की मौत। धमाका खनन में इस्तेमाल होने वाले विस्फोटक पदार्थ के गोदाम में हुआ है। और विश्व दूध दिवस आज दुनिया भर में मनाया जा रहा है। सेहत, पोषण और किसानों की आजीविका में दूध के महत्व को उजागर करने के लिए ये दिन खास है। कई देशों में इस क्षेत्र से जुड़े किसानों, पशुपालकों और महिलाओं के योगदान को भी सम्मान दिया जा रहा है। देश में खाद्य सामानों को सुरक्षित रखने की तैयारी अब और तेज हो रही है। एग्रीकल्चरल मार्केटिंग बोर्ड बैरिव में एक बड़े भंडारण परियोजना पर काम शुरू करने जा रहा है। करीब 375 मिलियन रुपए की इस योजना में आधुनिक कोल्ड स्टोर और कृषि उत्पादों को तैयार करने वाली एक इकाई बनाई जाएगी। ये परियोजना नेशनल होलसेल मार्केट के पीछे विकसित होगी। यहां 8000 टन तक खाद्य सामान रखने की व्यवस्था होगी। इससे सामान को लंबे समय तक सुरक्षित रखने में मदद मिलेगी और दामों में बढ़ोतरी या आपूर्ति की कमी जैसी स्थिति से निपटना आसान होगा। माधवी जागरनाथ, रजनीकर।
1: मुकई स्थित एग्रीकल्चरल मार्केटिंग बोर्ड के 20 गो रूम्स में से एक में है। यहाँ पर भंडारण की क्षमता के संचालन से संबंधित कार्य किए जाते हैं और साथ में स्थानीय कृषि उत्पाद संबंधी कार्य भी, ऐसा मौसम और मंडी की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। इसकी तादाद कई मिलियन टन तक पहुँच सकती है। एग्रीकल्चरल मार्केटिंग बोर्ड के जनरल मैनेजर नवीन देवाल सिंह ने कहा, 8 मिलियन टन प्याज, आलू, गाजर मिलते हैं स्थानीय कृषकों की ओर से। इन्हें कोल्ड रूम में आगे रखा जाता है बिक्री से पहले। खराब मौसम और विश्व संकटों के चलते सरकार ने स्थानीय कृषि पदार्थों की भंडारण क्षमता को 2 गुना ज्यादा बढ़ाने का फैसला लिया है। इसके लिए आधुनिक रेफ्रिजरेटर भंडार घर बनाए जाएंगे बेलगीव में कोई 10 बीघा जमीन पर नेशनल होलसेल मार्केट के पीछे। नवीन दयापाल सिंह ने आगे बताया, हम कोल्ड रूम के अतिरिक्त भंडारण क्षमता बढ़ाना चाहते हैं ताकि जो उत्पादन बढ़ाना चाहते हैं उसका भंडारण कर सके। स्थानीय सब्जियों एवं फलों के लिए एग्रीकल्चरल मार्केटिंग बोर्ड की एक अन्य महत्वाकांक्षी परियोजना है एग्रो प्रोसेसिंग परियोजना। बेलगीव में ही जहाँ सब्जियों को ट्रांसफर कर सके, जो मौसम के हिसाब से प्राप्त हो, नौकरी भी पैदा होंगी। बहुत जल्द इस परियोजना के लिए एक कंसल्टेंट को चुना जाएगा। मॉरिशस की कृषि संप्रभुता और खाद्य सुरक्षा की राष्ट्रीय स्ट्रैटेजी के अंतर्गत ये परियोजना चलाई जा रही है। नवीन दयापाल सिंह ने आगे कहा, इससे उपभोक्ताओं को अच्छे दामों में फल एवं सब्जियां प्राप्त हो सकेंगी स्थिर दामों में, क्योंकि आयात पर निर्भर नहीं होंगे। इस तरह इस आधुनिकतम भंडारण परियोजना का उद्देश्य है स्थानीय उत्पादकता को गतिशील बनाना, कृषि खाद्य सेक्टर को एक मजबूत एवं समावेशी मॉडल में परिवर्तित करना।
0: मॉरिशस में स्वास्थ्य तकनीक के क्षेत्र में एक बड़ा निवेश होने जा रहा है। मेडिवेशन कंपनी मोका स्मार्ट सिटी में मेडिकल उपकरण बनाने के लिए एक नई फैक्ट्री स्थापित करेगी। 1 बिलियन रुपए से अधिक की इस परियोजना को प्रीमियम इन्वेस्टर सर्टिफिकेट भी मिला है। स्थानीय और अफ्रीकी बाजार के लिए बनने वाली ये इकाई कई कुशल नौकरियों के अवसर प्रदान करेगी और स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में मॉरिशस की स्थिति को और मजबूत बनाएगी। कारोबारी क्षेत्र में पारदर्शी और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा के लिए कंपटीशन कमीशन ने एक खास मौका दिया है। पेशेवर संगठनों और सहकारी समितियों से कहा गया है कि अगर उनके काम में ऐसी कोई प्रथा रही है जिससे प्रतिस्पर्धा प्रभावित होती है तो वे खुद आगे आकर इसकी जानकारी दें। ऐसा करने पर उन्हें सजा से छूट मिल सकती है। ये विशेष योजना 25 मई से 25 नवंबर 2000

0: 26 तक जारी रहेगी। कुणाल गोजी, करुणा लालू।
1: कार्टेल बनाने या टेंडरों में हेरफेर करने वाली कंपनियां कुछ मामलों में दंड से छूट प्राप्त कर सकती हैं। इसके लिए उन्हें स्वेच्छा से उन गतिविधियों का खुलासा करना होगा जो कंपटीशन कमीशन के नियमों के अनुरूप नहीं है। इस प्रोग्राम तक पहुंच होने के लिए कड़े नियमों और शर्तों का पालन करना होगा। कंपटीशन कमीशन के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ने कहा, हमारी भूमिका केवल उल्लंघन के लिए सजा देना नहीं अपितु कानून को बेहतर रूप से समझने में भी मदद करना है और सुप्रशासन को प्रोत्साहित करना, सभी संगठनों सहकारियों को आंतरिक ऑडिट करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे ताकि ये देख सके कि कंपटीशन एक्ट का उन्होंने उल्लंघन किया हो। आयोग के अनुसार इस कार्यक्रम का उद्देश्य बाजारों को अधिक प्रतिस्पर्धी बनाना है। प्रतिस्पर्धा विरोधी गतिविधियों के लिए किसी कंपनी पर उसके वार्षिक कारोबार का 10% तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
0: और कुछ समय पहले हम इसकी चर्चा कर रहे थे, मॉरिशस में स्वास्थ्य तकनीक के क्षेत्र में एक बड़ा निवेश। मेडिवेशन कंपनी मोका स्मार्ट सिटी में मेडिकल उपकरण बनाने के लिए एक नई फैक्ट्री स्थापित कर रही है। 1 बिलियन रुपए से अधिक की इस परियोजना को प्रीमियम इन्वेस्टर सर्टिफिकेट भी मिला है। शहजाद जुमन की रिपोर्ट पर सुनते हैं रजनी बिकर को।
2: पर्यटन, वित्तीय सेवाओं और टेक्नोलॉजी के बाद मॉरिशस एक और उच्च संभावना वाले क्षेत्र में अपनी उपस्थिति मजबूत कर रहा है, वो है मेडिकल टेक्नोलॉजी का क्षेत्र। मेडिवेशंस लिमिटेड के चिकित्सा उपकरण निर्माण कारखाने की परियोजना को हाल ही में इकोनॉमिक डेवलपमेंट बोर्ड से प्रीमियम इन्वेस्टर सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ है। ये नया कारखाना, जिसे मोका स्मार्ट सिटी में स्थापित किया जाएगा, विशेष रूप से अस्पतालों, ऑपरेशन थिएटरों, ICU और स्वास्थ्य क्षेत्र के विशिष्ट विभागों के लिए उपकरणों का उत्पादन करेगा। मेडिवेशंस लिमिटेड के CEO जाक ब्लियो ने कहा,
3: मैन्युफैक्चरिंग मेडिकल डिवाइसेस इन मॉरिशस।
2: इस परियोजना का मकसद है मॉरिशस में चिकित्सा वस्तुएं तैयार करना, स्थानीय मंडी और इलाकाई मंडी के लिए, साथ में अफ्रीकी देशों की ओर निर्यात के लिए भी। निर्माण के पहले चरण से संबंधित कार्य 2027 में निर्धारित, अभी प्लान के आखिरी चरणों पर कार्य कर रही है, जरूरी अनुमति हासिल कर रही है। इस पहले चरण के लिए 200 से 250 मिलियन रुपए तक की रकम की जरूरत। जब तीसरे या चौथे स्तर तक जाएंगे तब ज्यादा अहम मूल ढांचों की आवश्यकता होगी। फिर भी पहले चरण की तुलना में 2 से 3 गुना ज्यादा ये रहेंगे। एक ऐसी परियोजना है जिसे चरणों में लागू किया जाएगा, लेकिन लंबी अवधि में ये न केवल एक हाई वैल्यू एडेड औद्योगिक गतिविधि को विकसित करने में मदद करेगी, बल्कि वैश्विक स्तर पर तेजी से बढ़ते इस क्षेत्र में मॉरिशस की स्थिति को और मजबूत भी करेगी। उन्होंने आगे कहा, इस परियोजना का एक महत्वपूर्ण भाग है अधिकारियों का सहयोग मिल रहा है। ये योग्यताओं के ट्रांसफर से भी संबंधित हैं, साथ में स्थानीय स्तर पर नौकरियां भी पैदा होंगी, इंजीनियर, टेक्नीशियन, कामगार, इलेक्ट्रिशियन आदि, साथ में मार्केटिंग, बिक्री और अकाउंटिंग के क्षेत्रों में भी। एक बार पूरी तरह चालू हो जाने के बाद इस कारखाने का लक्ष्य स्थानीय बाजार के साथ साथ निर्यात मंडियों को भी आपूर्ति करना है, जिससे मॉरिशस के उद्योग के लिए विकास का एक नया रास्ता खुलेगा।
0: पूर्व वित्त मंत्री रेंगनाथन पदयाची को आज सेंट्रल क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट द्वारा पूछताछ के लिए बुलाया गया। उनसे उन बयानों के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा गया जिनमें कहा गया था कि बैंक ऑफ मॉरिशस ने 2025 में 83 बिलियन रुपए छाप कर सरकार को ट्रांसफर किए थे। अपने वकील रऊफ गुलबुल के साथ पहुंचे रेंगनाथन पदयाची ने कहा कि वे केवल अपनी राय व्यक्त कर रहे थे। लैंड बैरक्स में 3 घंटे से अधिक समय पूछताछ के बाद वे वहां से निकले। हालांकि इस जांच के सिलसिले में उन्हें दोबारा भी पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। और तलब है कि बैंक ऑफ मॉरिशस ने 16 मई को इन बयानों के खिलाफ CCID में शिकायत दर्ज कराई थी। बैंक ने इन आरोपों को गंभीर, निराधार और दुर्भावनापूर्ण बताया था। ये मामला राष्ट्रीय सभा में भी एक संसदीय प्रश्न के माध्यम से उठाया गया था। सुप्रीम कोर्ट में कातिरा सापीले के खिलाफ दर्ज हत्या के प्रयास का मामला

0: अब बदल दिया गया है। डीपीपी की सिफारिश के बाद आरोपी पर अब पहले से योजना बनाकर मारपीट और गंभीर चोट पहुंचाने का आरोप लगाया जाएगा। मामला बाद में इंटरमीडिएट कोर्ट में सुना जाएगा। आरोपी पर सवा साल 2019 में एक विवाद के बाद एक व्यक्ति पर हमला करने का आरोप है। जिडो बुद्धा मामले में फोरेंसिक साइंस लैबोरेटरी ने जांच को एक नया मोड़ दिया है। रिपोर्ट के अनुसार जिडो बुद्धा के खून और पेशाब में नमूनों में किसी भी नशीले या अवैध पदार्थ के कोई निशान नहीं मिले हैं। ये निष्कर्ष मुख्य आरोपी माइल रोज के उस बयान के विपरीत है जिसमें उसने दावा किया था कि जिडो बुद्धा नियमित रूप से नशा करता था। उधर पीड़ित परिवार ने भी एक पत्र के जरिए कहा है कि जिडो बुद्धा एक प्रतिभाशाली कलाकार था और FSL की रिपोर्ट ने उनके विश्वास को और मजबूत किया है।
1: 15 मई को लानिकोलिया में मृत पाए गए जिडो बुद्धा के मामले में एक नई बात सामने आई है। फोरेंसिक साइंस लैबोरेटरी की रिपोर्ट के अनुसार उसके खून में अथवा पेशाब में ड्रग्स अथवा अवैध पदार्थ का कोई निशान नहीं पाया गया है। ये नतीजा इस मामले के दो में से एक संदिग्ध माइल रोज के प्रारंभिक बयान से मेल नहीं खाता, जिसने पूछताछ के दौरान ये कहा था कि जिडो बुद्धा नियमित रूप से ड्रग्स लेता था। मृतक के परिजनों ने इस आरोप का विरोध किया था। ये उल्लेखनीय है कि दोनों ही 21 वर्षीय माइल रोज और लुइस माइल लाखीबॉब को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है। माइल रोज ने जांचकर्ताओं से स्वीकार किया था कि उसने एक लेस के साथ जिडो बुद्धा का गला घोंटा था। जांच के अनुसार लुइस माइल लाखीबॉब ने शव को ठिकाने लगाने में उसकी मदद की थी।
0: भारत के नेशनल डिफेंस कॉलेज का एक उच्च स्तरीय डेलीगेशन इन दिनों मॉरिशस के दौरे पर है। इस अध्ययन यात्रा का उद्देश्य अलग अलग देशों के विकास मॉडल, प्रशासनिक व्यवस्था और राष्ट्रीय चुनौतियों को करीब से समझना है। इसी कड़ी में डेलीगेशन ने आज एबन में आवास और भूमि मंत्री शकील मोहम्मद से मुलाकात की, जहाँ कई अहम विषयों पर बात की गई। युवाओं में तंबाकू, निकोटाइन और इलेक्ट्रिक सिगरेट का बढ़ता इस्तेमाल स्वास्थ्य के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक जागरूकता कार्यशाला आयोजित की। इसका उद्देश्य था खासकर युवाओं को तंबाकू और निकोटाइन की लत से होने वाले नुकसान के प्रति जागरूक करना और बचाव के संदेश को मजबूत बनाना। कोयल सीतल रचनी बिकर।
1: तंबाकू और निकोटिन के खतरों पर आगाह करते हुए नौजवानों के समक्ष निरोध को बढ़ावा देने के मकसद से ये कार्यशाला लगाई गई। प्रस्तुत जानकारियों के मुताबिक तंबाकू मृत्यु का एक प्रमुख कारण है जिसे रोका जा सकता है। प्रति साल इसकी वजह से 8 मिलियन लोगों की मौत होती है। WHO के प्रतिनिधि ने कहा, मॉरिशस तंबाकू नियंत्रण के क्षेत्र में विश्व के अग्रणी देशों में से एक है, फिर भी पिछले साल लगभग 1400 लोगों की मौत तंबाकू सेवन और तंबाकू से जुड़ी बीमारियों के कारण हुई। मॉरिशस में अधिकारियों का कहना है कि समय के साथ साथ सिगरेट सेवन को घटाने के वास्ते कई कदम लागू किए गए। इनमें पार्किंग में स्वास्थ्य चेतावनियां शामिल हैं। इस बीच निकोटिन के नए उत्पाद के उभरने से सतर्कता बढ़ती जा रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय के जूनियर मंत्री अनिष्टा बाबूराम ने कहा, निरोध को लेकर युवाओं पर जोर दे रहे हैं ताकि वे सिगरेट और वेपिंग से दूर रहें। वेपिंग मॉरिशस में गैर कानूनी है लेकिन युवाओं के बीच ये प्रचलित है। ये कार्यशाला कई ठोस कदमों के साथ खत्म होगी जिसका मकसद तंबाकू खोरी के खिलाफ संघर्ष को मजबूत करना है।
0: साहित्य, कला और मानवता के प्रतीक रविंद्रनाथ टैगोर को उनके 165वें जन्मवर्ष पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। रविंद्रनाथ टैगोर संस्थान में आयोजित समारोह में इस वर्ष का टैगोर मेमोरियल लेक्चर राष्ट्रपति धर्म गोकुल ने प्रस्तुत किया। युवाओं की रचनात्मकता

0: भी खास आकर्षण रही, जहां देश भर के माध्यमिक स्कूलों से आई करीब 200 छात्रों ने पेंटिंग प्रतियोगिता में भाग लिया। रंगों और चित्रों के माध्यम से उन्होंने अपनी कल्पना, सोच और कला प्रतिभा को अभिव्यक्त किया। समारोह में विजेताओं को सम्मानित भी किया गया। विधिमा सिबुरन।
1: कवि, दार्शनिक और साहित्य का नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले एशियाई रविंद्रनाथ टैगोर शिक्षा, रचनात्मकता और मानवतावाद के अपने दृष्टिकोण से पीढ़ियों को प्रेरित करते आ रहे हैं। टैगोर मेमोरियल लेक्चर के 98वें संस्करण के संदर्भ में रविंद्रनाथ टैगोर संस्थान ने द परफेक्ट पर्ल ऑफ द डीप ओशन विषय पर आयोजित एक ड्रॉइंग और पेंटिंग प्रतियोगिता के विजेताओं को सम्मानित करने के लिए एक पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया।
2: ओहेलिया
1: कहती हैं, मेरे अध्यापकों ने मुझे इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया। मैं समुद्र पसंद करती हूँ। कैम्ब्रिज प्रोजेक्ट में मैं इस पर काम कर रही हूँ, इसलिए मैं अधिक प्रेरित हुई हूँ।
2: Pour moi, la période c'est moi. Mes sentiments dans une société où tout est standardisé, tout le monde essaie d'être pareil, on se met dans des petites boîtes.
1: एलिशेवा ने कहा, मैं खुद मोती हूँ, मैं अपने आप को सीमित नहीं रखती, मैं इस पेंटिंग के माध्यम से अपने आप को ढूंढने की कोशिश कर रही
2: हूँ।
1: इस वर्ष टैगोर मेमोरियल लेक्चर गणराज्य के राष्ट्रपति धर्म गोकुल द्वारा दिया गया, जिन्होंने आज की दुनिया में टैगोर के विचारों की प्रासंगिकता पर विशेष जोर दिया।
3: La vie et la contribution de Rabindranath Tagore, essentiellement comment nous refaire une réflexion nous-mêmes. Deuxièmement, mon aussi cause la philosophie de l'éducation de Rabindranath Tagore.
1: मैंने रविंद्रनाथ टैगोर के जीवन और योगदान पर बात की कि कैसे हमें अपने आप पर चिंतन करना चाहिए। दूसरी बात, मैंने शैक्षिक आध्यात्मिकता पर बात की जो बच्चों की जरूरतों पर आधारित है। और तीसरी बात, टैगोर की अवधारणा ये है कि विश्व एक बड़ा परिवार है और हमारे बीच सॉलिडारिटी, साझा और शांति होनी चाहिए। ये दिखने में आसान विचार हैं, लेकिन जबरदस्त संदेश हैं। हमारी युवा पीढ़ी को ऐसे संदेश अपनाने चाहिए और अपनी जिंदगी में ढालने चाहिए।

0: शिक्षा, संस्कृति और कलात्मक अभिव्यक्ति के माध्यम से इन आयोजनों का उद्देश्य रविंद्रनाथ टैगोर के मूल्यों को बनाए रखना और मॉरिशस की युवा पीढ़ी को अपनी रचनात्मकता, सीखने के प्रति रुचि तथा सांस्कृतिक विरासत के प्रति अपने लगाव को विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करना है।
1: और कुछ समय पहले हम इसकी चर्चा कर रहे थे, भारत के नेशनल डिफेंस कॉलेज का एक उच्च स्तरीय डेलीगेशन इन दिनों मॉरिशस के दौरे पर हैं। इसी कड़ी में डेलीगेशन ने आज एबन में आवास और भूमि मंत्री शकील मोहम्मद से मुलाकात की। करुणा लालू।
2: मॉरिशस उन 16 देशों में शामिल हैं जिसे नई दिल्ली के नेशनल डिफेंस कॉलेज के एक अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन प्रोग्राम के संदर्भ में चुना गया। इस पहल का मकसद दुनिया के विभिन्न इलाकों के नागरिक और सैनिक उच्चाधिकारियों को विकास, शासन और सहयोग की चुनौतियों की बेहतर समझ प्रदान करना है। इसी संदर्भ में नेशनल डिफेंस कॉलेज के कमांडर एयर मार्शल मनीष कुमार गुप्ता के नेतृत्व में भारतीय डिफेंस फोर्स के 15 उच्चाधिकारियों का एक प्रतिनिधिमंडल वर्तमान में मॉरिशस में है। भारत में 11 महीने के एक प्रोग्राम में भाग ले रहे हैं जिसके दौरान राष्ट्रीय सुरक्षा और रणनीति का अध्ययन कर रहे हैं। सैद्धांतिक भाग पूरा होने पर 16 देशों में जाएंगे। इनमें मॉरिशस शामिल हैं जहाँ की संस्कृति और हमारे द्विपक्षीय संबंधों का अध्ययन कर भारतीय सरकार को सुधार के मार्ग का प्रस्ताव करेंगे।
3: एंड टू सजेस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हाउ वी कैन इम्प्रूव ऑन दैट, सो दैट इज द मेन फोकस ऑफ आवर टूर ओवर हियर।
2: इस डेलीगेशन का स्वागत भूमि एवं आवास मंत्री शकील मोहम्मद ने किया। कई विकास बिंदुओं पर चर्चा की गई जिनमें भारत के समर्थन से मॉरिशस सरकार द्वारा साकार की जाने वाली परियोजनाएं भी शामिल
4: रही।

0: construction de maisons.
1: पर्यावरण क्लाइमेट चेंज मंत्रालय की नीति, मकान निर्माण को लेकर नीति, डिजिटल स्ट्रेटेजी आदि पर सवाल किए गए, यह ये प्रमाणित करता है कि दुनिया में मॉरिशस की एक अहम जगह है। ये डेलीगेशन 6 जून तक मॉरिशस में रहेगा। कई मुलाकातें निर्धारित हैं, खासकर पुलिस कमिश्नर और विभिन्न मंत्रालयों के साथ, जिनमें विदेश मंत्रालय भी शामिल हैं।
2: विदेश में म्यांमार के उत्तरी हिस्से में चीन सीमा के पास एक गांव भीषण धमाके से तबाह हो गया है। हादसे में कम 55 लोगों की मौत। धमाका खनन में इस्तेमाल होने वाले विस्फोटक पदार्थ के गोदाम में हुआ है। कई घर मलबे में बदल गया है। दूध हर घर की सुबह का स्वाद है, बच्चों की सेहत का सहारा है और गांव की अर्थव्यवस्था की सफेद धारा भी। आज विश्व दूध दिवस पर दुनिया दूध के पोषण और क्षेत्र से जुड़े किसानों पशुपालकों के योगदान को याद कर रही है। भारत में ये कहानी और भी खास है, जहां श्वेत क्रांति ने दूध की कमी से जूझते देश को दुनिया के सबसे बड़े दूध उत्पादकों में खड़ा कर दिया है।

और अब चलिए जानते हैं स्थानीय मौसम का हाल। पूर्व की ओर से आ रहे बादलों का असर हमारे स्थानीय मौसम पर पड़ेगा आज रात को। अगले 24 घंटों के लिए पूर्वानुमान रात को तथा कल सुबह बादल घिरे रहेंगे। देश के पूर्व तथा ऊंचाइयों पर रह रहकर वर्षा होगी और ऊंचाइयों पर कोहरा भी छाया रहेगा। कल बादल कुछ घिरे रहेंगे। हवा पूर्व उत्तर पूर्व की ओर से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी। दक्षिणी पश्चिमी लगूनों में 2 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी। तापमान सेंट्रल प्लेटों पर न्यूनतम तापमान 16 से 18, अधिकतम तापमान 22 से 25, शहरी इलाकों पर न्यूनतम तापमान 20 से 22, अधिकतम 27 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। सूर्योदय कल सुबह 6:38 पर होगा।

0: 6:23 हुए हैं। देश विदेश तथा मौसम के हाल के साथ ही ये बुलेटिन यहाँ पर समाप्त हो चला। हम तकनीकी सहायक शिव को धन्यवाद देते हैं, साथ में पूरा समाचार विभाग को भी। कुछ ही समय में हम बढ़ेंगे शोक समाचारों की ओर।
1: News on NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.

Avenue Guy Rosemont, Trèfle Rose Hill में, Avenue Guy Rosemont, Trèfle Rose Hill में 78 साल के 78 years old, श्री गणेश वेंकटाचलम, श्री गणेश वेंकटाचलम जिन्हें लोग विष्णु नाम से भी जानते थे, की मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी कल सुबह 10 बजे इनकी बहन रोजा वैथिलिंगम के मकान एवेन्यू ग्यू रोजमों ट्रेफल रोज हिल से उठाकर सैम आउट है कि श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। फ्यूनरल टुमरो एट 10 AM। शास्त्री रोड बुआ पियोले त्यागोज में, शास्त्री रोड बुआ पियोले त्यागोज में 56 साल की 56 years old श्रीमती प्रबीता चौधरी, श्रीमती प्रबीता चौधरी पैदाशी नाम तिरबोहन और जिन्हें लोग सुनीता नाम से भी जानते थे की मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी कल सुबह 10 बजे इनके मकान शास्त्री रोड बुआपियोले त्यागोज से उठाकर सिपाही भीले की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमोरो एट 10 AM। और नंबर 22 होवलेन ओकुले क्यूपिप में 80 साल

Aliki, 80 years older, Shri Karandev Aliya. श्री करणदेव आलिया, जिन्हें लोग करणदेव नाम से अधिक जानते थे, की मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी कल दिन के डेढ़ बजे इनकी पत्नी लीला देवी आलिया के मकान नंबर 22 रवलेन उकुले क्यूपिप से उठाकर बिगाहा की श्मशान भूमि ले जाएगी। क्रिमेशन टुमोरो एट 1:30 PM। शोकग्रस्त परिवारों के प्रति हमारी सहानुभूति है।

कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए।

听众朋友，今天的客家话好歌送给你的节目差不多接近尾声，我要跟大家人告别了，和我们出下次同一节目时间再见。

0: रेडियो मॉरिशस
1: 800 किलो हर्ट्ज पर ये है रेडियो मॉरिशस।
0: रेडियो मॉरिशस,
1: रेडियो मॉरिशस।
2: இசையருவி புவனேஸ்வரியோடு

0: रेडियो मॉरिशस
1: 800 किलो हर्ट्ज़ पर ये है रेडियो मॉरिशस।
0: रेडियो मॉरिशस,
1: रेडियो मॉरिशस।
2: बजले प्रभु का नाम रेडियो मॉरिशस के लहरों पर। समस्त सुनने वालों को हमारा सादर प्रणाम। कार्यक्रम है भजले प्रभु का नाम। श्रोताओं, आपका हार्दिक अभिवादन करते हैं इस कार्यक्रम में। कहते हैं भगवान पर विश्वास करना वह दीपक है जो जीवन के अंधकार में भी आशा की रोशनी फैलाता है। तो चलिए श्रोताओं, इसी शुभ विचार के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत हम करने जा रहे हैं। सबसे पहले भगवान गणेश जी को हम याद करेंगे।

श्रोताओं, सोमवार का दिन है। सोमवार का दिन समर्पित है भगवान शिव को। कहते हैं महादेव का नाम होठों पर और उनका आशीर्वाद जीवन में हो तो हर दिन मंगलमय बन जाता है।

भजले प्रभु का नाम जारी है आपके मनपसंद रेडियो चैनल पे। श्रोताओं, जब जीवन की राह कठिन लगे तो ओम नमः शिवाय का जाप मन को नई ऊर्जा देता है। महादेव की भक्ति में खोया मन संसार की चिंताओं से ऊपर उठ जाता है।

श्रोताओं, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कार्यक्रम को हम जारी रख रही है। शिव का स्मरण केवल पूजा नहीं बल्कि जीवन को सरल और सार्थक बनाने का मार्ग है। भोलेनाथ के दर पर आने वाला कभी खाली नहीं लौटता, उसे शांति, शक्ति या मार्गदर्शन अवश्य मिलता है।

श्रोताओं, महादेव का आशीर्वाद उस छांव की तरह है जो हर कठिन धूप में सुकून देता है। तो चलिए इसे शुभ विचार के साथ कार्यक्रम का समापन हम करेंगे। साथ निभाने के लिए धन्यवाद। हमारे तकनीकी सहायक अंजू को हम धन्यवाद देंगे। आप सभी को हम कहेंगे

आऊज़ु बिल्लाही मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो नहायत मेहरबान और बड़ा रहम वाला है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाही व बरकातुहू। मौज़ सामीन, उम्मीद है आप बफ़ज़ल खुदा खैर आफियत से होंगे। इस वक्त आप समात फरमा रहे हैं हमारी उर्दू नशरियात महफिल शब रेडियो मॉरिशस के ज़रिए सैयदा सुबाई के साथ। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में उन्होंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कौन सा सदक़ा अफजल है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो सदक़ा अफजल तरीन सदक़ा है जो गरीब आदमी अपनी कमाई में से करे और पहले उन पर ख़र्च करे जिसका वो ज़िम्मेदार हो, यानी अपने बीवी बच्चों पर। बहवाला सुनन अबी दाऊद।

आइए एक और हदीस समात फरमाइए। हजरत अनस रदी अल्लाह ताला अन से रिवायत है कि रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो मुसलमान बंदा कोई दरख्त लगाए या खेती करे तो उस दरख्त या उस खेती में से जो फल या जो दाना कोई इंसान या कोई परिंदा या कोई चौपाया खाएगा, वो उस दरख्त या खेती वाले बंदे के लिए सदका और अजर सवाब का जरिया होगा। बहवाला सही बुखारी शरीफ।

इसी के साथ थोड़ी ही देर में ये मजलिस इख्तिताम पज़ीर हो जाएगी। मिसेज अंजू ने टेक्निक में हमारा साथ दिया, हम इनके बेहद शुक्रगुजार हैं। अल्लाह ने चाहा तो फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा और अपनी दुआओं में सैयदा सुबाई को भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।

0: RM3 Radio.
1: जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ।

0: भोजपुरी के धमाल, भोजपुरी तड़का, आज की रात किरण संगे।
1: आज की रात जून महीना के पहला रात है। जून महीना मतलब कि इबरिस के बीचों बीच चला रहे सा छवा महीना चला था, और यही उम्मीद के साथ कि ये जो पिछला पाँच महीना गुजरल बहुत अच्छा रहा, ये छवा महीना आप सबको खातिर बहुत शुभ रही, ऐसा शुभकामना के साथ आज के ये महीना के शुरुआत कर रहे थे। जहाँ भोजपुरी तड़का में आप फ़ोन करा और आपके फरमाइश पर, आपके पसंद के गीत पर ये प्लेलिस्ट के हम फिर से तैयार करब। शुरू करी जा आपके मनपसंद भोजपुरी बॉयज़, भोजपुरी बाजा बाजे बॉयज़ के सबसे मशहूर गीत चल गोरी के साथ।

रात के ठीक 9:09 होलबा और आज भोजपुरी तड़का में हम किरण आप सब कोई के बहुत दिल से स्वागत करत है। हमार प्यार भरा नमस्ते स्वीकार करा और आज के जो अगला गीत चली वो आप सब के नाम जेकर आज जन्मदिन बा और जेकर घर में खुशहाली के माहौल छैले बा। बहुत दिन के बाद हमार ई प्रोग्राम में बसंत सुपोल के आवाज़ में एगो जन्मदिन के गीत चली और उनकर आवाज़ के साथ ई जन्मदिन के गीत बहुत अच्छा लगेला सुने के। बहुत एगो शुभ एगो सकब जा बोले ऐसा माहौल छा जाला जो सच में बुझाला कि एगो खुशहाली बा, अपनापन बा, एगो रिश्तेदार के साथ एगो खास मौका मनावल जाता। तो चला बसंत सुपोल के आवाज़ में ये जन्मदिन के गीत एकर मांग कर ले हवन श्रीमती मीराबाई दर्मिया। और दर्मिया जी बोलत हवन कि आज उनकर पति के जन्मदिन बा आशदेव दर्मिया। बेटी दामाद के साथ साथ खुद मीराबाई जी के ओर से जन्मदिन के बहुत बहुत शुभकामना और पूरा दर्मिया और पायडिया परिवार के ओर से ये शुभकामना। साथ में मीराबाई बोलत हवन कि उनकर जो छोटकी ननद बा अमिता देवरा इनकर काल जन्मदिन बा। त लगे हाथ अमिता जी आपके भी आपके भौजी के ओर से जन्मदिन के बहुत बहुत शुभकामना। और वैसे तो आज के बाद आज बिफे है हमने के मुलाकात फिर से भोजपुरी तड़का में आवत बिफे के हुई। तो अभी से आवत बिफे ले पहला से सकब्जा बोले धरला 8 जून तक जितना कोई के जन्मदिन बा। आज असल में सोमवार है हमने के फिर से मुलाकात आवत बिफे के हुई। तो अभी से बिफे के 4 तारीख के जेकर भी जन्मदिन बा आप सब कोई के जन्मदिन के बहुत बहुत शुभकामना। और चला प्यार के साथ ये अगला गीत सुनी जा।

रात के 9:17 होल बा और आप लोग के फ़ोन कॉल्स खातिर बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग के प्यार, आप लोग के स्नेह, आप लोग के आशीर्वाद खातिर बहुत बहुत धन्यवाद। ये बखत जब काम करबा और ऐसा शब्द सुनना मिले के जोन के उम्मीद नहीं रहेला,

तक काम करे के जो हौसला रहेला वो और भी बढ़ जाला। और ये बखत हमने के सुनत हवन, ढेर कोई सुनत हवा जा, लेकिन फ़ोन करलन वाकवा से भाई अब्बू। और भाई अब्बू सुने चाहत हवन एगो एगो खास गीत जोन वो हमेशा सुनते रहेलन। और वो गीत आप सब कोई जाने ला जा, छोर के मोरिस्वा। और ये गीत थोड़ा देर में अभी चली, लेकिन फिलहाल गिरीश रूपचंद के आवाज़ में चलाओ अब जा। चार दिन के खुशी, मतलब कि झुमा नाचा गाओ, चार दिन के जिंदगी बा फिर अंधेरी रात बा। ये गीत सुने चाहत हवन तियागोश के शांति जी। और शांति जी हमेशा की तरह अपन मराठी परिवार जे लोग दागोचिया से हवन जा उ लोग के नाम ये गीत करत हवन। और ख़ास तौर पर अपन दागोचिया के उनकर भगिना ओम के नाम। और शांति जी बहुत प्यार से बोलत हवन कि ये गीत वो हमार नाम करत हवन, हमार पूरा परिवार के नाम करत हवन। बहुत बहुत धन्यवाद शांति जी। और हमार परिवार के सदस्य आप ही लोग हवजा जे लोग ये बखत हमार साथ देवत हवजा अभी से 11 बजे तक ये साथ रही। और जब भी हम यहाँ रहिला आप सब कोई के प्यार, आप सब कोई के जो शुभकामना बा, आपके फ़ोन कॉल्स ढेर कोई आप लोग में से खाली फ़ोन करेला जा दुशब्द बोले खातिर, थोड़ा सुन बातचीत करे खातिर। और यही अपनापन एगो संबंध के और जस्ती गहरा बनावेला। तो आप सब कोई जे हमर परिवार हो जा, आप लोग के नाम ये अगला गीत गिरीश रूपचंद के आवाज़ में जेकर मांग कर ले हवन शांति जी ते अगूश से।

0: और थोड़ा घड़ी आगे छोर के मोरिस्वा आतिश भगीरथी के आवाज में गीत के चर्चा कर ले रही। ये गीत सबसे मशहूर गीत में से एगो है, हमने के भोजपुरी गायक लोग के गीत में से, और जितना कोई ई बखत मॉरिशस के बाहर सुनत हवा जा ई प्रोग्राम, या फिर बाहर से अभी मॉरिशस में हवा जा और सुनत हवा, और अपन देश के जोन सुंदरता बा, अपन देश के जोन गर्माहट, जोन प्यार, जोन स्नेह, जोन सुगंध बा, ओकर आनंद उठावत हवा, तो ई गीत आपके नाम। और ई गीत के फरमाइश एकर मांग कर ले हवन भाई अब्बू वाकवा से, भाई अब्बू जे बहुत प्यार बहुत मोहब्बत के साथ हमेशा बतियालन फ़ोन करेलन। और भाई अब्बू के साथ साथ आप जितना कोई भी फ़ोन करेला जहाँ आपके आवाज़ से वो खुशी झलकेला, जब आप लोग दो शब्द बतियाला जा अपन जो दिन रह कैसे बीतल, और रेडियो पर अपन गीत सुन के मनपसंद गीत सुन के आपके कैसे लगेला, अपन परिवार और अपन नाम सुन के कैसे बुझाला, ये सब बातचीत करके आप लोग से हमके भी उतना ही खुशी होवेला। तो चला ये गीत अबू अफेज असलम अयाज जयर जहीरा रईस कलाचोटी और आपी और उनकर पत्नी के नाम और आप सब कोई के नाम जे लोग मॉरिशस से बाहर आते जाते रहे ला जा।
1: Center 95.5, North South 95.6, East West 98.2.
2: You are listening your RM3 Manoranjan Radio. Manoranjan Radio.
3: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.
4: जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ। भोजपुरी तड़का किरण संगे

0: जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ।
1: RM3 रेडियो रेडियो रेडियो
0: भोजपुरी तड़का किरण संगे।
2: अगला जन गीत चली वो है धरिला चरनिया त्योहार सुनीता ननकू के आवाज में। आप सब कोई के नाम जे ई बखत ये गीत सुने चाहता हुआ और फरमाइश था आलबा शिला जी के ओर से जे फ्रांस से चलाल हवन मॉरिशस और मॉरिशस में अपन पति सुरेन के साथ हवन और भोजपुरी तड़का जोन हमेशा वो विदेश से सुनत रहलन आज वो मॉरिशस में सुनत हवन और ये उनकर मनपसंद गीत में से एक हा। तो शिला जी अपन पति के साथ सुरेन ये गीत अपन सब परिवार के सदस्य के नाम करत हवन और सब कोई के नमस्ते बोलत हवन।

काल माँ के दिन रह और माँ खातिर शुभकामना अभी ले आवता। ये जोन गीत चलाता मेधा रिसोल के आवाज़ में और नीलेश रापू जी के मधुर वाणी में। ये गीत के सुने के इच्छा रखत हवन वाशिरी से कल्याणी जी। और कल्याणी जी ये गीत ख़ास तौर पर अपन माँ के नाम करत हवन जिनकर आज जन्मदिन बा, लेकिन उनकर माँ के स्वर्गवास बहुत बरिस आगे हो गल बा। आप प्रार्थना करत हवा कि आपके माँ के आत्मा हमेशा शांत रही और आपके संगे संगे आपके माताजी के जो चार गो लड़का बा, चार गो बेटा, चार गो बेटी, आठ गो लड़का, सबके ओर से स्वर्गवासीय माँ के बहुत बहुत शुभकामना। उनकर आत्मा हमेशा शांति से रही और वाशेरी के कल्याणी जी आपके नाम आपके पसंद के ही गीत।

0: जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ।
1: RM3 रेडियो रेडियो रेडियो
0: भोजपुरी तड़का किरण संगे।
2: रात के 10 बजे होला बा, 10 बजे में 3 मिनट कमती बा और आप लोग हमार साथ देवत हवा रात के 9 बजे से और एक घंटा के इस सफर अभी जारी बा। अगला जन गीत चलता वो विनोद सिंह दत्त के आवाज़ में संगत कर जान के पानी पिया छान के। विनोद सिंह दत्त के आवाज़ के ढेर शौकीन हवा जा और शांति सुकारी जी ये गीत अपन सब लड़का लोग के नाम करत हवन हमेशा के तरह। उनकर जितना बेटा बेटी बा, दामाद बा और जितना उकर नाती पोता हवन सा सबके नाम। और फिर सुयक के श्रीमती जी भी विनोद सिंह दत्त के आवाज़ में गीत सुने चाहत हवन। और श्रीमती जी पूरा मोहेश और चंद्रमुनि परिवार के नाम ये गीत करत हवन। उधर बेलिया से आत्माराम जी भी विनोद सिंह दत्त के आवाज़ सुने के इच्छा रखत हवन। इसलू परिवार के नाम ये गीत आत्माराम जी करत हवन और उनकर चार गो बहिन और इमें हवन ललिता, सुदेवी, छोटी और प्रभावती। तो चला आप

0: जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ।
1: RM3 रेडियो रेडियो रेडियो
0: भोजपुरी तड़का किरण संगे

सुना नुयान के आवाज में गावल गीत अभी आप सुनत हवा अभिदानंद बीजन और चंद्रदेव सुपोल के आवाज में। और ई गीत सुने चाहत हवन अभिदानंद बीजन के आवाज में फौजीसाख से उमा जी। त उमा जी, आप जे हमनी के सुनत हवा ई बखत, आपके पूरा परिवार के नाम और आपके सब सगे संबंधी के नाम, जितना कोई ई बखत ई प्रोग्राम सुनत हवा जा और अभिदानंद बीजन के फैन हवा जा, आप सब कोई के नाम ई सुंदर गीत।

इजन अगला गीत चली ज्ञान मोहिपतलाल के आवाज में बदरिया घिर घिर आए। ये गीत हमेशा की तरह सुने चाहत हवन बाशरी से धनी जी। धनी जी आपके नाम आपके मन पसंद गीत।

0: जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ।
1: सेंटर 95.5, नॉर्थ साउथ 95.6, ईस्ट वेस्ट 98.2।
2: यू आर लिसनिंग योर RM3 मनोरंजन रेडियो। मनोरंजन रेडियो।
3: Your kind of music, all day, all night, right here on your 109 station.
0: Bhojpuri Tadka, Kiran Sanghi.

पिया परदेस महल भल सुन। पूर्णिमा फकीरा के आवाज़ में ये गीत खुद पूर्णिमा जी ये गीत के फरमाइश कर लथवन अपन बेटी दामाद, ख़ास तौर पर उनकर दामाद विशाल जी उनकर संगे अभी हवन, और अपन सब बेटी सब जिले पूनम पिंकी प्रवीणी पूजा बेटा प्रवेश बहु कुष्मा उदिन समधिन सरोज और पूरा फकीरा परिवार के नाम पूर्णिमा जी ये गीत कर रथवन।

38 मिनट हो गल बा और अभी तक आप लोग साथ देवत हवा जा बहुत बहुत धन्यवाद एगो जिन अगला गीत चली संतोष महादेव की आवाज़ में ये गीत खास तौर पर पितों के अमृता गणेश जी के नाम अमृता जी ये गीत पूरा गणेश परिवार के नाम करत हवन साथ में सोनिया परी और उनकर बेचा और बहू के नाम और यही गीत के साथ

0: लेकिन ये कार्यक्रम अभी चली 11 बजे तक। आज के रात पूर्णिमा के चांद खिलल बा, आपके ये रात्रि बहुत शुभ रही, ऐसा शुभकामना के साथ हम आपसे आज्ञा चाहब। आज लेंदी के रात है, लेंदी के दिन अच्छा से बीतल, ये पूरा सप्ताह आपके अच्छा से बीती, ये हमार शुभकामना है। आपके नींद भी अच्छा आए और कल सुबह एगो नवा दिन, नवा ऊर्जा, एगो नवा मौका के साथ फिर से आप लोग उठ बजा और फिर हमने के मुलाकात फजर के हुई 8:50 पर हमारी धरोहर कार्यक्रम पर, और नहीं तो फिर मिलब जा ई प्रोग्राम के अंतर्गत आवत बीफे के 4 तारीख के। तब तक अपन ख्याल रखा, शुभ रात्रि और आप सब कोई के नमस्ते और बहुत बहुत शुभकामना।
1: RM3 Radio.
2: जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ। भोजपुरी तड़का किरण संगे।

0: सुनहरे पल, सुनहरे पल रेडियो मॉरिशस के साथ।
1: कुछ आवाजें, कुछ धुने और कुछ गीत वक्त के साथ और भी खूबसूरत हो जाते हैं। आज की इस हसीन रात में सुनहरे पल लेकर आया है पुराने बॉलीवुड के एवरग्रीन मेलोडीज जो हर जनरेशन के दिल को छू जाते हैं। दोस्त, जहां भी हो, घर पर हो, सफर में हो या तन्हा रात के साथ, रेडियो मॉरिशस पर बनिए रहे अपना म्यूजिकल कंपेनियन। बिल्कुल, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। नमस्कार और गिनीशा का प्यार भरा प्रणाम। स्वागत है आप सभी लोगों का इस खूबसूरत सी सफर में, जहाँ पे आपकी यादों को फिर से हम चीरने वाले हैं आज इन योर सुनहरे पर।

0: रात की खामोशी में जब पुराने गीत बजते हैं तो यादें खुद ब खुद मुस्कुराने लगते हैं दोस्त। सुनहरे पल में हम लेकर आए हैं ओल्ड बॉलीवुड का वो जादू जहां म्यूजिक में था सिंप्लिसिटी, इमोशंस और सच्चा प्यार। तो जुड़िए रहिए हमारे साथ और महसूस कीजिए उन सुनहरे लम्हों को जो आज आज भी दिल के बहुत ही करीब है।
1: न झटको जुल्फ से

0: सुनहरे पल, सुनहरे पल रेडियो मॉरिशस के साथ।
1: रात के सुकून भरे मौसम में दिल को दीजिए पुराने बॉलीवुड मेलोडीज का प्यारा सा एहसास। सुनहरे पल में बजेंगे वही गीत जो कभी पुराने नहीं होते हैं, जो सिर्फ और ज्यादा खास बन जाते हैं टाइम के साथ। तो चलिए जी, ये अगला नगमा खासकर हमारे म्यूजिक लवर्स के नाम।

0: सुनहरे पल, सुनहरे पल रेडियो मॉरिशस के साथ।
1: कुछ गीत सिर्फ म्यूजिक नहीं होते हैं दोस्त, वो हमारी यादें, हमारे जज्बात और हमारी कहानियां बन जाते हैं। इसी खूबसूरत एहसास के साथ जुड़िए रहे सुनहरे पल में। जी हाँ, सिर्फ और सिर्फ रेडियो मॉरिशस पर। गिनिशा का साथ देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया जी। ये प्यारा सा नगमा हमारे दिल से आपके दिल तक।

कैसा लग रहा है आप सभी लोगों को ये खूबसूरत गानों का सिलेक्शन जो हम पेश कर रहे हैं इन योर सुनहरे पल, पुराने गाने पुराने यादें, व्हाट अ ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन। आई एम सॉरी अगर आपकी आंखें थोड़ी सी नम हो गई, क्या करें, यादें ही कुछ ऐसे हैं दोस्त। और गाने जब ऐसे बजते हैं ना ऑन सुनहरे पल, तो अपने आप आँख जो है ना, हमारे आँखें जो हैं नम हो जाते हैं, लेकिन होंठों पर मुस्कुराहट आ ही जाते हैं। तो चलिए फिलहाल के लिए आप मुस्कुराइए और ये अगला नगमा एंजॉय कर लीजिए।

0: सुनहरे पल, सुनहरे पल रेडियो मॉरिशस के साथ।
1: अरे जी, अभी तो शुरू किया था आपका ये खूबसूरत सफर आपके और हमारे बीच में, सुनहरे पल। सुनहरे पल एक ऐसा सफर है जो रात को रोज 11 बजे से लेकर 12 बजे तक हम आपको लेके जाते हैं डाउन मेमोरी लेन। लेकिन फिलहाल के लिए गिनिशा को आप इजाजत दीजिए। बिल्कुल जी, हम वादा करते हैं टू कम बैक एक और खूबसूरत शो के साथ। अभी के लिए शुभ रात्रि, शब्बा खैर।

कभी कभी मेरे दिल में सवाल आता है कि अगर दुनिया में सरदार ना होते तो क्या होता। सॉरी यार, दुनिया बेकार बिना सन ऑफ सरदार।

कुछ मैं बदल गया हूँ, कुछ दिल बदल गया है। कुछ मैं बदल गया हूँ, कुछ दिल बदल गया है। मेरा वजूद

आखिर मेरा जुनून मेरे काम आ गया, आखिर मेरा जुनून मेरे काम आ गया, उनके लबों पे आज मेरा नाम आ गया।